आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 6 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। लीजिए अब सुनिए विष्णु प्रसाद पांडे के स्वर में की गंगा स्तुति। हे देवी गंगे, आप देवताओं की ईश्वरी हैं, तीनों लोकों को पार लगाने वाली, चंचल तरंगों वाली, भगवान शिव के मस्तक पर विहार करने वाली माँ, तुझे नमन है।

प्रभु श्री राम तो अपने हैं, वे सदा से अपने भक्तों के प्रिय हैं। उन्हीं में ये संपूर्ण सृष्टि समाहित है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रकाश किरण।
1: समाधर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध जैनाचार्य आचार्य कुंदकुंद ने कहा है, कोहुपत्तिस्सपुनो बहिरंगम यदि हवेदि सखादम अणकुणदि किंच विकोहो तस्सखमा होदि धम्मोति। तात्पर्य है कि क्रोध की उत्पत्ति का बाहरी पर्याप्त कारण होते हुए भी क्रोध का भाव मन में उठे ही नहीं, ऐसी मानसिक शांति वाला व्यक्ति ही महान धार्मिक गुण क्षमा का धारक कहा जा सकता है। महाभारत के प्रसिद्ध चरित नायक, चरित पात्र तथा महान कुशल नीतिज्ञ महात्मा विदुर जी ने क्षमा के महात्म्य पर टिप्पणी करते हुए कहा है, क्षमा गुणो यशक्तानाम शक्तानाम भूषणम क्षमा शांति खड़गो करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः एको धर्म परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा। अर्थात क्षमा जहाँ दुर्बल व्यक्तियों के लिए आवश्यक व उपयोगी गुण है, वहाँ वह समर्थ व शक्तिशाली लोगों का सुंदर आभूषण भी है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है, उसका कोई दुर्जन बिगाड़ ही क्या सकता है। प्राचीन भारत के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने भी क्षमा के विषय में सुंदर विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं, क्षमा तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न च तृष्णा परो व्याधिः न च धर्मो दयापरः। अर्थात जैसे तृष्णा के समान कोई व्याधि या बीमारी नहीं होती, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और संतोष के समान कोई सुख नहीं होता, वैसे ही क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में शांति व क्षमा पर जोर देते हुए कहा था,

0: सनातनो। तात्पर्य है, यह एक सनातन धर्म अर्थात अटल नियम है कि वैर से वैर की समाप्ति नहीं की जा सकती। वैर से तो वैर की परंपरा बढ़ेगी ही। शत्रुता या वैर को समाप्त करने का यही उपाय है कि वैरी या शत्रु के प्रति अपने मन से शत्रुता के दुर्भाव को ही हटा दिया जाए। क्षमा गुण रूपी वृक्ष का पौधा निरभिमानता व सहनशीलता की भूमि में ही पनप सकता है, इसलिए महाभारत में कहा गया है, अतिवादांस्तिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात आकृष्टः कुशलं वदेत्। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि कोई कुछ बुरा भला कहे तो उस पर क्रोध करने की बजाय सहनशीलता का ही प्रदर्शन करे, किसी भी परिस्थिति में अभिमान को प्रकट न करे, और कोई ऐसी बात कह भी दे जिस पर क्रोध आना स्वाभाविक हो तो कहने वाले को प्रिय व हितकारी वचन ही कहे। वस्तुतः क्षमा तो सत्पुरुषों का एक स्वाभाविक गुण है, इसीलिए महाभारत में कहा गया है, अक्षमाया क्षमायाश्च प्रियाणि हा प्रियाणि च क्षमते सम्मतः साधु साध्ववाप्नोति सत्यवाक्। अर्थात वही व्यक्ति सत्पुरुषों की श्रेणी में परिगणित होता है और सत्य का साधक कहलाने का अधिकारी होता है जो न सहने लायक व्यवहारों में अप्रिय वचनों को सुनकर भी क्षमाशील रहता है और पूर्ण रूप से अविचलित रहता है।
1: प्रकाश किरण में आप सुन रहे थे महाभारत में वर्णित क्षमा का महत्व। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। गायक स्वर है अनूप जलोटा का, संगीत निर्देशक है सतीश भाटिया।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूँ? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। गायक स्वर था अनूप जलोटा का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुकोट।
1: करेला कमानी काजे लेहरा पानी कसन होतो रहे तो करेला चो कमानी काजे थामना बीती ओलिया लेहरा पानी नंगत रहे से। करेला चो बूटा मंचो ए गुना है कि ये डीरा कमानी किसी मन ने अधिक शीत सहन करतो बीती होए से। मांतर वर्षा अधिक होलो ने उपजन

0: उल्टा तो नांगर ने जोतुन देतो राय और एक हफ्ता काजे बेड़ा के खुला छाडून देतो राय। इचोले तीन चार हार लगड़ा मारून बेड़ा के सम बनाउन तीन तीन फीट जो फरक ने एक फीट लम और दुई फीट ओसार खोदरा बनान सफाए खोदरा मन ने 500 ग्राम वर्मी कम्पोस्ट आरु 50 ग्राम कापर सल्फेट पाउडर आरु 200 ग्राम लाखड़ी मिसाउन खोदरा मन के ढाकुन देतो राय और बेड़ा ने पानी छपान देतो राय। पानी दखालो पांच छह दिन पाछे करेला बीचा खोदरा मन ने मंडाते जातो राय। बीचा मंडातो काजे गोटो खोदरा ने चार ले पांच ठन बीचा मंडातो राय। करेला चो नंगत किसी मन बले होय से तो एक बले सुना। पहला है कोयम्बटूर लौंग, दूसरा है कल्याणपुर बारहमासी, असने तीसर किसी माय हिसार सिलेक्शन, असने चौथा है अर्का हरित, असने पांचवा किसी माय पूसा विशेष। दादा दीदी मन काई बले कमानी कर लो ने हुनके हाम के नगद दखा रखा बले करुक लागे से तो हम जानो कि करेला ने पानी आरु मिंजानी कसन करतो रहा। दादा दीदी मन करेला चो कमानी ने पानी चो खूबे प्रभाव दखा दे से ऐका जी समय समय ने पानी देते रहतो रहा। करेला कमानी घाम आरु बरसा दोनों समय ने करतो हो से। दादा दीदी मन जे चो लागून ये फसल ने लाटा बुटा बले झपके जोटून जाए से तो समय समय ने ये फसल ने निंजानी करते रहतो राय। असने नगद बेड़ा के जतना तिरलो ने फसल थाने फर फूल खूबे नगद ऐसे। करला कमानी काजे नगद कुदरती खत बले बनाउक सकास। ते कुदरती खत बनातो काजे दादा दीदी मन बीचा मंडालो तीन सप्ताह पाछे बूटा ने तीन चार ठन पाना दखा दिलो बेरा 2000 लीटर बायोगैस स्लरी नहले 2000 लीटर संजीवक खत नहले फिर 40 किलो गोबर खत ले बनलो जीवामृत खत के एक एकड़ हिसाब धरून बेड़ा ने देउन दियास। करला कमानी काजे नंगत कुदरती खत बले दादा दीदी तुम्ही मन बनावकला सकास। बीचा मंडालो तीन सप्ताह पाछे बूटा ने तीन चार ठन पाना दखा दिलो ने 2000 लीटर बायोगैस स्लरी नाहले 2000 लीटर संजीवक खत नाहले फिर 40 किलो गोबर खत ले बनलो जीवामृत खत के एक एकड़ हिसाब धरून बेड़ा ने देउन दियास। और दूसर हार बले फूल तो बेरा फिर ए कुदरती खत फसल थाने लगान दियास। असने ची पहिल फर टूटा तो मूर होलो बेरा 200 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट ने 50 किलोग्राम लाकड़ी मिसाउन फसल थाने छिचुन देतो राय। इचुले फसल चो उपजन अधिक ले अधिक मिरे दे। दगादा दीदी मन फसल के सुरक्षा करतो काजे रक्षा करतो काजे एक चो बले गोटो गोट होय से तो करेला कमानी ने असने तो कीड़ा चो कोप कम होय से मांतर नगद फसल धरतो काजे समय समय ने कुदरती कीट रक्षक चो छिड़काव फसल ने करते रहतो राय। रोग राई और कीड़े दादा दीदी मन करेला फसल ने रेड बीटल नाव चो गोटोक सुंडी कीट होए से जे नवा नवा बूटा मन के खूबे नुकसान अमर हुआ है। एक ही मरला तो काजे 5 लीटर कीट रक्षक के 40 लीटर पानी ने मिशन हफ्ता ने दुई दिन छिचुन देतो राय। ए रोग के मरला तो काजे पतंजलि निम्बादी कीट रक्षक खूबे नगद रहे से। दादा दीदी मन करेला कमानी थाने रोग मन बले होए से और ये गोटोक रोग आए पाउडरी मिल्ड्यू रोग। ए रोग करेला ने एरी साइफी सिकोरी सीएटम चो कारण ने होय से। ये रोग कवक चो कारण ने होय से। ये रोग के मरला तो काजे 5 लीटर टरका मही पानी ने 2 लीटर गौमूत्र बलोने गाय चो पिसाब और 40 लीटर पानी मिसाउन ये घोल चो छिड़काव करते रहतो राय। सर लगा तीन हफ्ता ये ओखत के छिचते रहलो ने ए रोग ले करेला फसल के बचाव के लाए सका से। असने गोटोक और रोग होय से करेला थाने ये आए एंथ्रे क्वनोज रोग। करेला कमानी ने ये रोग सबले ज्यादा दखा दे से। ये रोग ले बूटा मन चो पाना ने करिया छापा हुन जाए से। ये रोग के मरला तो काजे एकड़ हिसाब ने 10 लीटर गौमूत्र ने 4 किलोग्राम आड़ू चो पाना और 4 किलोग्राम नीम पाना संगे 2 किलोग्राम लसुन के उखरौन भाती ये चो पानी के ठंडा करून 40 लीटर पानी संगे मिसाउन भाती फसल ने छिड़काव कर ले फसल ले ये रोग के एकदम नगद होकला सके।
1: आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी बेड़ा खड़ा चुकोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भागीरथी और साथियों का बजाया बोहरैया माता पाड़।

हुलहुली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भागीरथी और साथियों का बजाया बोहरैया मादा पाड़। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज सुबह 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मन की बात का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद सुनिएगा आज सुबह 11:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम मन की बात का हलवी में अनुवाद आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे, और गोंडी में अनुवाद सुनिएगा रात 9।

बजे, जिन्हें हम अपने केंद्र से प्रसारित करेंगे। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज सुबह 7:05 पर 10 मिनट पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, और शाम 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। आज सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हल्वी समाचार बुलेटिन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज सुबह 7:45 पर। विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी आप सुन सकते हैं आज सुबह 8:30 पर। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी का प्रसारण किया जाएगा आज सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म होगी किशन कन्हैया। आज सुबह 10:00 सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति होगी तृप्ति परिडा की और संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। दोपहर 12:00 रुसरुसा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोक गाथा चंद्रकांत राजा का भाग 4। गायिका होगी शांति और साथी। शहरी महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकते हैं आज दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर सुनिएगा कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगुट का पुनः प्रसारण। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुन सकते हैं आज दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा हल्बी में कार्यक्रम कला और कलाकार। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युववाणी। गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा आज शाम 6:30 पर। कार्यक्रम बस्तर के स्वर में आज आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। समय होगा आज शाम 7:00 का, और शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आम चुकाओ। आज रात 8:30 पर सुनिएगा हल्बी में कार्यक्रम पिलामन काजे कोट, और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम दोना में हल्बी जगार गीत। कलाकार होंगे सुकालू राम पांडे और साथी। श्रोताओं, दोपहर 3:00 से FM बैंड पर हम विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का यही जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं।
2: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
3: पवन के ठंडे झोंके के साथ
2: हिलोरे लेगी
3: आकाश की वाणी।
2: आकाशवाणी
4: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
2: या फोन करें 222150 या 222400,
3: 222150 या 222400।
5: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
6: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
5: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
7: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
8: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
9: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी के पूर्व उपनिदेशक कार्यक्रम श्री लखनलाल भौर्य से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: आवाज का ये सफर ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ 8 जून 1936 को, जो अपने 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। 9 दशकों की इस लंबी सृजन यात्रा में आकाशवाणी से कितने ही नाम जुड़े, कुछ मशहूर हुए, कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो गए, मगर आकाशवाणी के लिए समर्पित ऐसे कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं के अलावा कुछ ऐसे भी नाम रहे हैं जिनके कांधों पर केंद्र की संपूर्ण जिम्मेदारियां भी रही हैं। देश की वाणी आकाशवाणी में आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से। आप हैं सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आकाशवाणी के पूर्व उप निदेशक कार्यक्रम श्री लखनलाल भौर्य। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीपक जी, और नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
0: भौर्य साहब, आपका नाम आकाशवाणी बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर के श्रोता विगत कई वर्षों तक सुनते रहे हैं। अगर आकाशवाणी से आपकी यात्रा की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत किस सन में कहां से हुई थी?
1: मैं 10 जून 1991 आकाशवाणी सूरतगढ़ राजस्थान से जुड़ा
0: जी,
1: और उस समय शुरुआती जो पोस्टिंग है कार्यक्रम अधिशासी के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा डायरेक्ट भर्ती अभियान में हुआ था, और करीबन वहां पर 2-3 साल बिताया, और आकाशवाणी सूरतगढ़ में जो कार्य अनुभव प्रारंभिक दौर में हुआ वो मेरे लिए एक आधार बना और आगे वही काम आया।
0: भौर्य साहब, उसके बाद फिर सूरतगढ़ के बाद आपकी शख्सियत का कारवां कौन से आकाशवाणी केंद्र तक पहुंचा?
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ के बाद 1993 में आया आकाशवाणी बिलासपुर
0: जी,
1: और वो आकाशवाणी बिलासपुर में लगभग 14 साल वहाँ पर कार्यकाल रहा, और 14 साल में हमने सभी तरह के कार्यक्रमों, चाहे वो स्टूडियो के अंदर हो चाहे बाहर हो, बाह्य ध्वन्यांकन के आधार पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम वहाँ 14 साल के अंतर्गत किया। और उसके बाद 2007 में आकाशवाणी अंबिकापुर स्थानांतरित होकर के गया, और आकाशवाणी अंबिकापुर में लगभग 11 साल, और आकाशवाणी अंबिकापुर का थोड़ा से अलग ही लोक संगीत और अलग आदिवासी संगीत का माहौल रहा, तो वहाँ अलग तरीके से जानने समझने सुनने का अवसर मिला। लोगों के बीच जाता था, लोक कलाकारों को जोड़ने का काफ़ी वहाँ पर प्रयास भी किया। बहुत से ऐसे कलाकार थे जो कहते थे कि आप आए हैं, आप अपने स्थानीय स्तर के हैं, तो ऐसे सुनने में लगता था कि अरे बड़े अच्छी बात है, मैं आप ही लोगों के लिए आया हूँ। तो ऐसे तरह से वहाँ आकाशवाणी अंबिकापुर में 11 साल का कार्यकाल रहा।
0: मौर्य साहब, आकाशवाणी बिलासपुर, अंबिकापुर और उसके बाद फिर रायपुर, इन तीन केंद्रों में आपके जीवन के बहुत लंबे समय को आपने गुजारा है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो जिस वक्त, जैसा कि 1997 के आसपास आपने बताया कि आप आकाशवाणी बिलासपुर गए, हाँ, तो उस वक्त तो बिलासपुर केंद्र की शुरुआत हुई थी ना?
1: हाँ, 1991 में
0: जी,
1: जितने LRS केंद्र खुले थे लगभग 10-12, उसमें आकाशवाणी बिलासपुर भी रहा
0: जी,
1: और आकाशवाणी बिलासपुर जो स्थानीय केंद्र है वो पूरे भारत में 12वें जो केंद्रों में से एक रहा, और वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम शुरू किया गया जो सही मायने में कहा गया कि वो प्राइमरी जो केंद्र होते हैं उससे अलग भिन्न कार्यक्रम हो, लेकिन बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते थे लगभग बड़े स्तरीय होते थे। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और वहाँ पर मतदान, मतगणना और क्रिकेट मैच वगैरह भी, हम एक क्रिकेट मैच वहाँ कोरबा से किए
0: जी,
1: जो पाकिस्तान और भारत के जो रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं उनका बढ़िया कार्यक्रम सजीव प्रसारण, श्रोताओं ने आनंद भी लिया सजीव प्रसारण का, जो हमको भी बड़ा अलग अनुभव भी रहा।
0: भौर्य साहब, आप क्योंकि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं
1: जी, हाँ,
0: और पहली पोस्टिंग तो आपने बताया कि राजस्थान में आपकी हुई थी,
1: सूरतगढ़, हाँ, हाँ,
0: तो राजस्थान से जब आप अपने अंचल में छत्तीसगढ़ में आ गए, उस समय तो हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे जब आप बिलासपुर आए, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की माटी की जो सौंधी खुशबू है वो तो आकाशवाणी अंबिकापुर, रायपुर और बिलासपुर इन तीनों केंद्रों से उस वक्त भी आती थी। तो छत्तीसगढ़ी संगीत को लेकर बिलासपुर में किस तरह का कार्य आपने किया?
1: बहुत बढ़िया आपका ये सवाल। मैं वहाँ जब रहता जरूर था सूरतगढ़ में, लेकिन जब चूंकि यहाँ मैं बहुत पहले से जुड़ा था, आकाशवाणी रायपुर आता जाता था, नाटकों से जुड़ा था, तो आना जाना हुआ था होता था जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज के भी विद्यार्थी था, तो आना जाना आकाशवाणी रायपुर में होता था, तो गीत संगीत वगैरह सुनता था। लेकिन जब सूरतगढ़ में था तो यहाँ के आकाशवाणी का अनुभव होने लगा। मैं अगर जाता तो यहाँ पर जो लोक संगीत है और दूसरे संगीत, कला, साहित्य जो मैं समझता हूँ, जानता हूँ, उसमें मैं कितना सहयोग कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं आया आकाशवाणी बिलासपुर तो लगा कि मैं अपना मायके आ गया हूँ।
0: जी,
1: और आदमी जब अपना मायके आता है और मायके का अनुभव करता है तो एक निसंकोच, मतलब उसमें एक भाव आता है कि ये तो मेरा जाना पहचाना है, ये लोग अपने हैं और यहाँ पर जो मैं करूँगा मुझे सहयोग मिलेगा। और ये होता भी गया। बिलासपुर के जो बहुत से गांव सुने होंगे, पंडरिया, मस्तूरी, मुंगेली
0: जी,
1: और उधर कोरबा भी बिलासपुर के अंतर्गत आता था, ये सब क्षेत्र जो है कलाकारों का गढ़ रहा।
0: बोरिया साहब, जब कोई आकाशवाणी केंद्र नया शुरू होता है तो उसकी शुरुआत के साथ साथ प्रसारण की विभिन्न विधाओं से जुड़े लोगों को वहां आमंत्रित करना, एकत्रित करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि एक नई शुरुआत उस अंचल में हो रही होती है। तो बिलासपुर की शुरुआत के बाद में अलग अलग विषयों के टॉकर्स भी आपने
1: होने के कारण, क्योंकि रायपुर और बिलासपुर अभी तो नजदीक महसूस करते हैं लेकिन उस दरमियान दूर मह पर आ गया होता है और जानने समझने और सीखने के उस स्तर में आता है। तो हम आप कह रहे हैं वार्ताकार भी मिलते थे, कवि भी मिलते थे और कलाकार
0: के कार्यक्रम आपने करवाए, और खासकर संगीत की अगर हम बात करें तो
1: जैसे आकाशवाणी का एक बड़ा आधार है, ग्रामीण जो जो लिख के लाते थे उसको देखता था, पढ़ता था, तो मैं वो टोक भी देता था ये ऐसा गीत नहीं है। छत्तीसगढ़ी लोक गीत के आसपास होने की वजह से वहाँ के कर्मा, ददरिया और तो लगातार आते थे और कहते थे कि हमको सर बाहर भेजिए और हम जाना चाहते हैं, तो उनको हमको बताना पड़ता था कि आप बी हाई होंगे, ए ग्रेड होंगे तो तभी आपको मौका मिलेगा। तो परीक्षा भी देते थे, पास होते चले गए तो इनको हम मौका भी देते गए। और जब मौका मिलता गया तो लोग आगे बढ़ते गए। बहुत से ऐसे कलाकार वहाँ हुए हैं, अभी भी हैं, जो भोपाल, दिल्ली और बड़े मंचों पर प्रस्तुति दे रहे हैं और बहुत से अवसरों पे आकाशवाणी के द्वारा भी लोक संगीत संध्या में उनको अवसर देते हैं मंच के माध्यम से। और वहाँ के जो लोक संगीत है पूरे, मैं तो भारत कहूँ क्या कहूँ, पूरे विश्व में अलग किस्म का है, क्योंकि वाद्य यंत्र वहाँ पर जो विविधता लिए हुए हैं वो वाद्य यंत्र अद्भुत होता है। जो मांदर में और एक सिंगोटी बाजा जो कहते हैं, निशान बाजा जो कहते हैं, उसमें अलग किस्म के उपकरण लगा के जो बजाते हैं और डांस करते हैं, तो उनका जो रिदम बनता है वो बहुत आकर्षक और दर्शनीय होता है मंचों पर। और गाते हैं तो अच्छा ही लगता है, सुर उनका बहुत बढ़िया होता है।
0: बोरिया साहब, अंबिकापुर से फिर आपकी शख्सियत का कारवां आकाशवाणी रायपुर में आया, और रायपुर में रहते हुए आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते?
1: यहाँ पर चूंकि जैसे आया बहुत से कार्यक्रम तो स्थापित रहा और आकाशवाणी से चूंकि हमेशा जुड़ा रहा, चाहे श्रोता के रूप में हो और एक पदेन उसका के रूप में कार्य जिम्मेदारी की बात हो, तो दोनों दृष्टिकोण से आकाशवाणी रायपुर शुरू से जैसे मैं होश संभाला और समझने लगा कि आकाशवाणी से बहुत से कार्यक्रम होते हैं, तो आकाशवाणी रायपुर को मैं शुरू से सुनता रहा हूँ और बहुत से कार्यक्रम यहाँ स्थापित कार्यक्रम रहा है। और मैं तो आया ही हूँ आकाशवाणी रायपुर सुन करके। आकाशवाणी के युवानी कार्यक्रम में रोजगार सूचना जो देते थे

0: तो उस रोजगार सूचना में रोजगार संबंधी जानकारी देते थे, तो वही सुन के मैंने आवेदन दिल्ली से यूपीएससी से संघ लोक सेवा आयोग से मंगवाया, भरा और भराने के बाद परीक्षा दिया और यहाँ आ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया। तो इस तरह से आकाशवाणी रायपुर में बहुत से कार्यक्रम स्थापित रहा। जब मध्य प्रदेश में रहा तो सवाल जनसाधारण के जवाब मुख्यमंत्री के जैसे कार्यक्रम, तो
1: जी
0: उसमें भी हमारे गांव से एकजुट होकर के मैं सहयोग करता था, तो चिट्ठी पत्र भेजते थे, चाहे भोपाल हो यहाँ शायद भेजते थे, यहाँ से वहाँ भेजते थे, तो वो भी मेरे को ध्यान में आ रहा है। तो ऐसा आकाशवाणी रायपुर का काफी श्रोता रहा हूँ और यहाँ जुड़ करके अलग पता चला है। तो यहाँ जैसे आया तो बहुत से कार्यक्रम तो पहले से चल ही रहा था, कुछ कुछ हमने आप सबके सहयोग से, पंकज जी भी यहाँ पर जब रहे तो भी कार्यक्रम से जुड़ करके बहुत से ऐसे, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो और विज्ञान संबंधी हो, साहित्यिक हो, तो उसको हमने एक नए रूप में, अभी भी स्वास्थ्य जानकारी के डॉक्टर्स वगैरह का होता है, तो वो हमने आगे बढ़ाया। और लगभग लगभग मेरे को लगता है साल 2 साल ये चल रहा है, अभी भी जारी है,
1: लगातार चल रहा है
0: लगातार चल रहा है।
1: डॉक्टर की सलाह।
0: तो डॉक्टर की सलाह, और मुझे विशेष रूप से इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अभाव रहा है,
1: जी
0: और ग्रामीण अंचल में सब तरह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होने से लोग जागरूक भी होते हैं स्वास्थ्य के बारे में, और अपने ही स्तर पे जितना क्या किया जा सकता है कर भी सकते हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया मिलजुल करके, चौपाल कार्यक्रम जो उस समय आया, जिसके अंतर्गत फिर बाद में किसान वाणी का भी रूप दिया गया कि, और चौपाल के अंतर्गत ही किसान वाणी को शुरू किया गया। तो किसान वाणी में बहुत से क्षेत्रों में जहां जहां नहीं जा पा रहे थे वहां भी मैं भी जाने लगा। कोरोना काल में भी किसान वाणी चौपाल देख रहे थे, मैं कहा जाएंगे और किसानों को इसमें जोड़े रखें, क्योंकि इस समय कोरोना काल में किसानी तो बंद होना नहीं है, तो
1: जी
0: किसानी को इसमें जोड़ करके उनको श्रोताओं को बता सकते हैं। तो ये भी हमने किया, और जितने कृषि महाविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उस दरमियान गए, तो ये भी एक अलग किस्म का था। जो कार्य उस दरमियान नहीं होने थे, मतलब हो सकते थे, वो भी जाके हमने किया।
1: भौरिया साहब, हमने सुना है कि आप खुद भी एक कलाकार हैं।
0: हाँ, मैं शुरू से मंची कलाकार रहा,
1: जी
0: और प्राइमरी स्कूल से नाटकों के माध्यम से जुड़ा, मंची कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमको एक नट नटी टाइप का, जोकर टाइप का उपयोग करते थे, तो उसमें भाग लेता था। उस तरह से प्राइमरी स्कूल, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, और कॉलेज में गया तो फिर भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़ गया,
1: अच्छा
0: तो बड़े मंच मुझे मिला। तो कुछ कुछ हम गाना गाते थे,
1: अच्छा
0: हाँ, तो बहुत से अवसरों पे गाना मुझे कभी कभी याद भी आ
1: कोई
0: जाता
1: गाना
0: है।
1: याद होगा आपको,
0: हाँ,
1: बताइए।
0: वो है, चल खल्लारी जाबो संगी मोर, चल खल्लारी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिलके खल्लारी जाबो, चल खल्लारी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिलके खल्लारी जाबो, उहा लेबो मुर्रा यौ खाबो उत्ता धुर्रा, उहा लेबो मुर्रा यौ खाबो उत्ता धुर्रा, चल खल्लारी जाबो, चल खल्लारी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिलके खल्लारी
1: क्या
0: जाबो,
1: बात है, क्या
0: ऐसा
1: बात
0: जो
1: है।
0: है।
1: तो
0: हाँ
1: भौरिया साहब, आप क्योंकि कॉलेज के समय, स्कूल के समय
0: हाँ
1: गाते भी थे, नाटक भी किया
0: हाँ
1: करते थे,
0: नाटक
1: तो
0: भी करते थे।
1: आकाशवाणी में आने के बाद किसी रेडियो नाटक में भी काम किया क्या आपने?
0: रेडियो नाटक में सूरतगढ़ में किया था,
1: अच्छा,
0: पीहर के नौकर उसमें।
1: हाँ,
0: हाँ, अब
1: जी
0: इधर आता गया, चूंकि बिलासपुर में नाटकों का ऐसा रहा नहीं, नाटक निर्देशन वगैरह भी नहीं रहा, और अंबिकापुर में गया तो वहां हुआ, लेकिन
1: जी
0: अब खुद ही ऐसा, और खुद ही ले लें तो ऐसा कुछ आपत्ति ना हो, ये दूसरे के मौका को या अपना, ऐसा करके मेरे में थोड़ा एक झिझक भी आया, मैं महसूस भी करने लगा आपत्ति ना हो जाए, तो ऐसे ऐसे करके। तो वहां सूरतगढ़ में पीहर के नौकर वगैरह एक दो ऐसे नाटकों में 2.5-3 साल में जुड़ा रहा।
1: भौरिया साहब, सेवानिवृत्ति के बाद अभी आपका समय कैसा कट रहा है?
0: दीपक जी, बहुत अच्छा कट रहा है, क्या है, नौकरी में एक टाइम टेबल में आना, टाइम टेबल में काम करना, टाइम टेबल तक रहना, मतलब समय में प्रतिबंधन रहा है और जरूरी है। कार्य के दौरान बहुत से कार्य होते हैं जिसको संपादित करना है, तो समय में करना है, समय में रहना है। तो उसके बाद देखा स्वतंत्र हो गया हूँ तो बढ़िया, मेरा दिनचर्या मेरे मुताबिक होता है, ज़्यादा मैं अंतर नहीं किया हूँ। सवेरे उठ जाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ, फिर मेरा थोड़ा सा योगासन भी होता है और सामने सड़क वगैरह है अपने कॉलोनी में, उसमें भी दो चार राउंड लेके उसमें घूमते रहता हूँ। बहुत से घरेलू कार्य मैं अपने से करता हूँ।
1: तो भौरिया साहब, हमारी हाँ। शुभकामनाएं आपके साथ हैं
0: हाँ, हाँ।
1: कि आपके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई दे रही है ये यूं ही बरकरार रहे, आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। इस कार्यक्रम के लिए आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। रिजी सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।

जुहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर आए हलभीने समाचार बुलेटिन संगे मैं हितप्रीता ठाकुर। पहल आजीचो मूर खबर मन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजमन के आपलो एग्री क्लाइमेटिक हालात उपलब्ध संसाधन मन और उठाने करतो कमानी चो भरोस आधार ने कृषि रोड मैप सज करतो काजी बल्ला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू छत्तीसगढ़ संगे 12 ठन राजमन की 10,021 करोड़ रुपया ले अधिक चो राशि जारी करतो पुलिस से। अदा राज्य जिला पंचायत मन के बले देतोर होए दे गौड़ खनिज निधि ने हिस्सा। राज्य ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मन ने मिला रलो ठान मन ने प्रवेश पाओ तो काजे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होली मूर। अदाय खबर मन सरसरा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चो अध्यक्षता ने नई दिल्ली ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन चो उदिम करतोर होली। सम्मेलन ने केंद्रीय कृषि मंत्री बल्ला की अदाय जमाए राजमन के आपलो एग्री क्लाइमेटिक हालात उपलब्ध संसाधन मन और उठाने करतो कमानी मन ऊपर चो संभावना मन चो हिसाब ने कृषि रोड मैप सच करतो राय। केंद्र सरकार वैज्ञानिक संस्थान और मंत्रालय चो जमाए दल राजमन संगे चे ये उआट ने काम करतो काजे तैयार आसे। हुनमन बल्ला की चाउर उपजन ने भारत विश्व ने सबले ऊपरे ठान ने अमरुन गेली से। सम्मेलन ने केंद्रीय मंत्री वैज्ञानिक मन के बल्ला की काश्तकार मंचो मांग हिसाब ने हुसने लागून तेज व्यवहारिक और जसन बल्ले हुसन शोध करत। हुनमन राजमन के गुहार करला की हुनमन खेत बचाओ अभियान उवाटने कास्तकार मन की संतुलित उर्वरक बल्लो ने खत भात उपयोग करतो काजे सहरानी गोट सांगत। हुनमन बल्ला की 1 ले 30 जून तक चलतो बीती ये अभियान ने जनप्रतिनिधि वैज्ञानिक अधिकारी और कास्तकार मिसुन बेड़ा हिसाब ने चेतातो काम मन करे सत। सम्मेलन ने राज्य चो कृषि मंत्री रामविचार नेताम्बले शामिल होला। एमओका ने श्री रामविचार नेताम्बल्ला की राज्य सरकार नवा अंजोर विजन 2047 काजे राज्य लमसम 40 लाख झान कास्तकार परिवार मन चो बाढ़ती काजे आर्थिक उत्थान बल्ले बाढ़ती काजे काम करे से। केंद्रीय मंत्री मंडल गेलो 27 मई के सार्वजनिक वितरण प्रणाली उवाट लागून राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस के जारी राखतो मंजूरी दिली से। ये योजना काजे केंद्र सरकार 25,530 करोड़ रुपया मंजूर कर ली से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सांगला की एचोले राज्यमन के खाद्यान्न परिवहन उचित मूल्य दुकान मन के चलातो और पीडीएस चो आधुनिकीकरण ने सहायता मिले दे। हुताय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्ला की ये निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तकनीकी आधारित अधिक पारदर्शी जवाबदेही और नागरिक केंद्रित बनातो बाटने महत्वपूर्ण ढांका आसन होए दे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागून छत्तीसगढ़ संगे 12 ठान राजमन के 10,021 करोड़ रुपया ले अधिक चो धन राशि जारी करतोर होली से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये फैसला चो स्वागत करून बल्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो दखा रखा ने हर गरीब को पक्का घर चो संकल्प रोष ने संपूर्ण होए से। हुनमन बल्ला की ये सहायता ले छत्तीसगढ़ चो हजारों गांवरिया परिवार मन के पक्का घर चो सपन पूर्ण होए दे। मुख्यमंत्री बल्ला की राज्य सरकार जमाए पात्र हितग्राही परिवार मन तक योजना चो लाभ समय हिसाब ने आरु पारदर्शी उवाटले अमरातो काजे कट कर ली से। छत्तीसगढ़ सरकार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के मजबूत बनातो काजे जिला पंचायत मन के बले गौड़ खनिज निधि ने बाटा देतो निर्णय धर ली से। ए राशि चो उपयोग स्कूल अस्पताल सामुदायिक भवन सड़क और दूसर विकास भारती काम मन ने करतोर होए दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्ला की एचोले पंचायत मन के आर्थिक मजबूती और ग्रामीण विकास के रोष मिरे दे। पद्मश्री सम्मान ले सजर डॉक्टर सुनीता गोड़बोले और डॉक्टर रामचंद्र गोड़बोले गेलो 29 मई के रायपुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संगे सौजन्य भेंट करला। मुख्यमंत्री जी गोड़बोले बायले मुनिस के शुभकामना देउन बल्ला की हुनमन के पद्मश्री सम्मान मिरतो सोजे व्यक्तिगत उपलब्धि नोहाय। पहाड़ले जमाए राज खास लागून बस्तर जनजातीय समाज और बस्तर ने रतो लोग मन का जे मान चो गोठाय। मुख्यमंत्री बल्ला की माओवाद चो कठिन समस्या ने बली गोड़बोले बायले मुनिस सेवा चो बाट के नी छाणला और मानवता के सबले पूरे राखून जनजातीय समाज चो मंजी सरलगा बूता करते रला। श्री साय बल्ला की गोंडी और हल्बी जसन ठाने बलतो बोली भाषा ने गोट गोठियाउन एमन के मन के धरतो आरु लोक चो विश्वास पावतो भले ये गोड़ चो प्रमाण आए कि हुनमन लोक चो मंजी आपन बिरान आरु आपन चो लोग असन रहून नगत नाता गोता बनाउन सेवा करला। ए मौका मुख्यमंत्री गोड़बोले जोड़ी के बस्तर चो विकास बाढ़ती काजे राज्य सरकार बाटले कर लो कोशित मन आरु कार्य योजना चो भले जानकारी मन दिला।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्ला कि छत्तीसगढ़ पर्यटन चो परगन ने नवा चिन्ह बनाए दी। रायपुर ने होलो बीती गुटक बसका ने हुनमन बल्ला कि राज्य चो प्राकृतिक सुंदरता घूमर रान आरु आदिवासी रीत रुसुम के संसार चो पूरे आंतर होए दे। श्री साय बल्ला कि पर्यटन के उद्योग चो मान मिरे दे, निवेश चो संभावना बाढ़ ली से आरु जुआन मन काजे रोजगार चो नवा मौका निकरू नए दे। बसका ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड राज ने 500 करोड़ रुपया ले अधिक निवेश भलो ने पैसा लगा तो

राज्य सरकार नगरीय निकाय मंच उबारती का जे आदर्श शहर समृद्धि योजना मूर करतो घोषणा कर ली से पहल चरण ने 32 ठा नगर निकाय मन के बाचतोर होली से इमन ने बस्तर सरगुजा अरु रायपुर संभाग चो 6-6 ठान अरु बिलासपुर संभाग चो 9 ठान अरु दुर्ग संभाग चो 5 ठान निकाय शामिल आसे। ये योजना लागून सड़क पानीपूर्ति ड्रेनेज पार्क परिवहन अरु स्मार्ट ट्रैफिक जसन सुविधा मंचो विकास बाढ़ती करतोर हो दे। योजना उवाट ने काम चो चीनाबाना अरु निरीक्षण काजे संभाग स्तरीय समिति मंच गठन करतोर होली से जे मन के 15 दिन ने कार्य योजना सच करतो निर्देश देतोर बले होली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चो भिने भिने ठान मन ने बाढ़तो ताप के दखून लोग मन के चेतुन रतो अरु ध्यान ख्याल राखतो सलाह दिला। सोशल मीडिया पोस्ट ने श्री मोदी लोग मन के बल्ला की भरपूर पानी पिया अरु घर ले बाहर या निकरतो बेरा आपलो संगे पानी धरून निकरा। हुन मन लोग मन के बल्ला की जे बल्ले पियास ने आसे हुनके गिलासक पानी पियू तो काजे जरूर दियास। प्रधानमंत्री सफाई लोग मन के ये बल्ले बल्ला की मंझन बेरा चढ़चढ़ा घाम ने बाहर या निकरतो रे बाचा अरु जित्रो बल्ले हो घरे सुस्तावा। हुनमन सफाई लोग के बल्ला की पशु जनावर अरु चिड़ई मन काजे घरे ओसना कटा छानी थाने दुकान मन ऑफिस कार्यालय मन कटा बाहरिया ने पानी भरलो गोटोक बले भंडवा बाल्टी नहाले डोंगी असन जीनिस मन मंडावा। ए बाटे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बले अभायक गरम के दखून लोग मन के आपलो देह पाचो संगे संग आपलो अयले फैले चो लोग मन चो खास ध्यान ख्याल राखतो अपील करला। मुख्यमंत्री राज ने रलो लोगमन के बल्ला कि आगर गरम धरलो एबे चो ये समया ने नंगत पानी पिया अरु चढ़चढ़ा घाम ने निकरतोले बाचा। हुनमन आपलो घर दुकान काम करतो ठान ऑफिस कार्यालय अरु जमाए सार्वजनिक ठान मन चो अयले फैले हिंडा बुला होतो लोगमन काजे पियू तो पानी चो व्यवस्था करतो अपील बले करला। राज्य सरकार राज्यो मेला रलो सरकारी भूई मंचो विकास बाढ़ती काजे डेवलपमेंट योजना सच करे दे। ये लागून सरकारी भूई मंचो GIS मैपिंग करून डिजिटल लैंड बैंक बनातोर होए दे। शहर मन ने आवासीय आरु व्यावसायिक परियोजना मन के बिकसातोर होए दे। पहाड़ले ग्रामीण बल्लो ने गांवरिया ठान परगन मन ने कृषि बेड़ा कमानी चो कौशल विकास केंद्र बनातोर होए दे। राज ने एतो बरसा कमानी चो सच समिया के दखून मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कास्तकार मंचो हित ने महत्वपूर्ण निर्देश दिला से। हुन मन बल्ला से की ट्रैक्टर मन ले जोतो आरु पानी व्यवस्था काजे कास्तकार मन के काम पड़तो इतरो डीजल चो सुविधा ने अटका नी हो बलून बेड़ा कमानी करतो जमाए कास्तकार मन काजे। खास लागून राज ने पेट्रोल डीजल चो दुरुपयोग के थाम थमना रोक लगा तो काजे बना लो ड्रम आरु जरिकेन ने ईंधन वितरण ने लगा लो रोक ने कास्तकार मन के जरूरी छूट देतोर होली से जे चोले खरीफ फसल कमानी ने काई बाधा नी हो। राज्य सरकार माओवाद प्रभावी ठान परगन खुबे धुरिया कोंटी साकड़ी ने बसलो गांव ठान परगन मंचो बले विकास काजे नियद नेलानार योजना 2.0 लागू करे से। ये योजना लागून गेलो 29 मई के मंत्रालय ने मुख्य सचिव विकासशील चो अधीक्षता ने होलो उच्च स्तरीय बसका ने नियद नेलानार बस्तर मुन्ने आरु सुग्घर छत्तीसगढ़ जसन योजना मन काजे सोच विचार करून कार्य योजना बना तो काजे गोठ होली। बस्का ने सांगतोर होली की नियद नेलानार योजना चो दूसर चरण ने 31 ठान व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजना मन 14 ठान सामुदायिक सुविधा मन आरु 10 ठान वांछित सेवा बल्ले छीड़ा होलो छांडी होलो बाचलो लोग जे मन के योजना चो लाभ कई कारण ने नी मिरुक सकली से असन सेवा मन के लोग मन तक अमरातुर होई दे। ये योजना लागून 100% लोग मन के योजना चो लाभ अमरातुर होई दे। हुताय पात्र हितग्राही लोग मन के मनरेगा जॉब कार्ड राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री आवास योजना पेंशन योजना मंचो किसान सम्मान निधि आरु दूसर सुविधा मंचो संगे संगे जोड़तो होय दे। एचआई संगे चे गांव ने आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य सुविधा मन सड़क मोबाइल नेटवर्क बैंक पंचायत भवन आरु राशन दुकान मन जसन बुनियादी सुविधा मंचो विस्तार बले करतो होय दे। सरकार चो मूर उद्देश्य धुरिया धुरिया ठान परगंचो लोग मन के मुख्य धारा ने जोड़न भाती नंगत जीवना काजे सुविधा दिया तो राय। भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा चो पास फेल चो घोषणा करून दिली से। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर चो हिसाब ने छत्तीसगढ़ चो 1163 जान जुआन मन ये परीक्षा ने सफल होला सत। परीक्षा चो पास फेल के सेना चो आधिकारिक वेबसाइट अरु नवा रायपुर ने रलो भर्ती कार्यालय ने दुकुक हो दे। राज्य चो सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मन बल्ले ITI ने मेला रलो ठान मन ने भर्ती बल्लो ने प्रवेश काजे 29 मई ले ऑनलाइन आवेदन चो प्रक्रिया मुर होन गेली से। मन करलो प्रतिभागी मन 15 जून तक आवेदन करुक सकत। प्रवेश प्रक्रिया तीन भाग ने पूरा करतोर होए दे। पहिल भाग चो चयन सूची 16-22 जून तक जारी करून देतोर होए दे। हुताय दूसर चरण चो चयन सूची 26 जून ले 3 जुलाई आरु तीसर चरण चो चयन सूची 8-12 जुलाई तक जारी करतोर होए दे। छत्तीसगढ़ चो संगठित ठान परगन मन ने काम करतो बीमित श्रमिक मंचो पीला मन काजे मेडिकल शिक्षा ने प्रवेश चो नंगत मौका मिरली से। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC देश भर चो आपलो 20

खान मेडिकल कॉलेज मन ने एमबीबीएस अरु बीडीएस पाठ्यक्रम मन का जे 700 ठान सीट मन ने आरक्षित कर ली से। ए सीट मन ने प्रवेश नीट यूजी परीक्षा चो मेरिट आधार ने होए दे। ऑनलाइन आवेदन चो सरासरी आखिरी दिन के बढ़ाउन 21 जून करून देतर होली से। श्रम विभाग पात्र विद्यार्थी मन के समया ने आवेदन करतो अपील कर ली से। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का जे उच्च शिक्षा विभाग नामांकन आमंत्रित कर ली से। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in उवाट ने 5 जुलाई तक पठातुर हो। महाविद्यालय मन, विश्वविद्यालय मन, उच्च शिक्षण संस्थान और पॉलिटेक्निक जो निर्धारित मानदंड पूरा कर तो बिताबी नियमित संकाय सदस्य मन के ये पुरस्कार देतर हो। बस्तर विकास प्राधिकरण चो उपाध्यक्ष लता उसेंडी गेलो 28 मई के कोंडागांव जिला चो ग्राम बमनी ने 16 लाख रुपया ले अधिक चो लागत ने बनलो आयुष्मान आयोरोग्य मंदिर भवन चो लोकार्पण करला। ये मौका सुश्री लता उसेंडी बल्ला कि राज्य शासन ग्रामीण गांवरिया ठान परगन मन ने स्वास्थ्य सुविधा मन के बढ़ातो आरु सुदृढ़ीकरण काजे सरलगा काम मन करे से। हुनमन बल्ला के आयुष्मान आरोग्य मंदिर चो उवाट ने गांवरिया मन के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मन संगे आयुर्वेदिक संघ चो उपचार आरु सलाह परामर्श चो सुविधा अदायठान चो स्तर ने उपलब्ध हो सके दे। सुश्री उसेंडी बल्ला की आयुष पद्धति आमचो रुसुम पारंपरिक लोक जतना तो उवाट आए जे प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार नियम उवाट चो रूप ने लोग मंचो मंजी आजीवले रोस ने लोग मंचो भरोस चो उपचार चो रूप ने सफाई के मन के भाई से। जगदलपुर केंद्रीय जेल ने गेलो 28 मई के मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनातर होली। भारत स्काउट्स गाइड आरु यूनिसेफ चो संगति ने होलो ये उदीम कार्यक्रम पीरियड पर खुलकर विषय ने रली। ये कार्यक्रम ने जेल ने बंद लमसम 150 जन मेहरार कैदी मन भाग धरला। कार्यक्रम ने मेहरार मन ने मैनाबारी मोहका होतो बीती देह पाए चो कष्टा चिपा बाधा अटका सामाजिक चिंता फिकर और पारिवारिक चुनौती मन उपरे उघड़ा गोठ मन होली। बीजापुर जिला चो धुरिया ठान परगनमन ने रलो दारेली गांव ने पहिल हार प्रशासनिक दल मोटरसाइकिल ले अमरली। ये मौका कलेक्टर विश्वदीप आरु जिला पंचायत सीईओ मुकेश देवांगन संगे अधिकारी मन गांवरिया मन संगे भेट करून हुमन चो चिपा बाधा के सुनला। दौरा मौका गांव ने पहिल हार जनगणना चो काम करतर होली आरु आधार राशन कार्ड बैंक खाता संगे भूई चौपट्टा संग चो जानकारी धरतर बले होली। अधिकारी मन आधार रलो कागत मन अधूरा दस्तावेज मन के पूरा करतो काजे खास शिविर लगातो निर्देश दिला। ए मौका ने गांवरिया मन के प्रधानमंत्री आवास योजना संगे भिने भिने शासकीय योजना मन चो जानकारी देतोर बले होली। सरासरी दाए मूर खबर मन एक हार फेर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य ने आप लोग एग्री क्लाइमेटिक हालत उपलब्ध संसाधन मन और उठाने कर तो कमानी चो भरोस आधार ने कृषि रोड मैप सच कर तो काजे बल्ला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागून छत्तीसगढ़ संगे 12 ठन राजमन के 10,021 करोड़ रुपया ले अधिक चौरासी जारी करतो होली से। अदाय राज्यो जिला पंचायत मन के बले देतुर होए दे गौड़ खनिज निधिक ने हिस्सा। राज्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मन ने मेला रलो ठान मन ने प्रवेश पावतो काजे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होली मूर। इस संगे हल भी समाचार बुलेटिन जो ये अंक इथाय सरे से जुहार।

0: आप सुन रहे थे हल्बी समाचार बुलेटिन, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत।

अभी आपने फिल्म खामोशी द म्यूजिकल का गीत सुना। गीत रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत रचना थी जतिन ललित की, आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। आइए अब सुनते हैं फिल्म क्या यही प्यार है का गीत, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। गीत रचना है अलीस रशीद की, संगीत रचना है आलू अरविंद की।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म क्या कहना का गीत। गीतकार है मजरू सुल्तान परी, संगीतकार है राजेश रोशन, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

अभी आपने फिल्म क्या कहना का गीत सुना, कुमार सानू, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रूपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रूपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट

0: सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन द अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
5: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
4: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Keerti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his five-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar, where he prayed at the Mahabodhi Temple. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The Myanmar president will then travel to Mumbai on Tuesday for business and industry interactions and site visits. Mr. Hlaing is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of Mr. Hlaing to India in his current capacity. Centre has revised the export levies on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight beginning tomorrow. The move is aimed at ensuring adequate domestic availability of petroleum products amid continuing uncertainties arising from the West Asia crisis. More from our correspondent.
6: According to a notification issued by the Ministry of Finance, exports of petrol will attract a duty of 1.5 rupees per litre, while diesel exports will be subject to a duty of 13.5 rupees per litre. The export duty on aviation turbine fuel has been fixed at 9.5 rupees per litre. The Finance Ministry noted that the export levies comprising special additional excise duty and road and infrastructure cess were introduced on March 27 this year and are reviewed every fortnight based on average international prices of crude oil, petrol, diesel and aviation turbine fuel. However, the government has clarified that there is no change in the existing excise duty rates on petrol and diesel meant for domestic consumption. The revised duties will come into effect from tomorrow and remain in force for the next fortnight. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
4: The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off-season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs and strengthen the competitiveness of Indian textiles.
7: The Election Commission has convened a National Conference of Election Commission of India Councils 2026 in New Delhi to further strengthen its legal framework. Inaugurating the conference, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said that fair rolls lead to fair polls. He also hailed booth-level officers and booth-level agents at the foot soldiers of electoral roll management. He also highlighted the high level of contestation during the recent assembly elections in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu has hailed the launching of Skycar system at IGI Airport in New Delhi. The minister said that advanced weather monitoring systems like Skycast can significantly improve flight operations during fog and turbulence. He added that as this technology expands to more airports across the country, it will strengthen safety and enhance the travel experience for passengers. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Maharashtra, death toll in the Pune spurious liquor tragedy has risen to 21. The victims include 7 people from Pune city and 14 from Pimpri, Chinchwad and Uruli Kanchan areas. So far, 10 persons have been arrested in connection with the case. The investigation has been handed over to the Crime Investigation Department, CID. In a major administrative action, 22 officials have been suspended for alleged negligence in the discharge of their duties. Those suspended include 9 police personnel and 13 officials from the State Excise Department. Jammu and Kashmir Minister Sakina Itu has announced summer vacations for all government and private colleges falling under the summer zone of Jammu Division from 1st of June to 15th of July. The minister said the decision has been taken in view of the onset of the summer season and to ensure the well-being of students, teaching faculty and college staff. The minister further informed that regular academic activities in all colleges will resume after the conclusion of the vacation period on 15th of July. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Keralam, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. In Keralam, yellow alert has been sounded in 6 districts for today. More from our correspondent.
8: 6 of the 14 districts in Kerala is under yellow alert today, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Isolated heavy rainfall and winds up to the speed of 40 km per hour is forecasted across Kerala over the next 4 days. The onset of monsoon has not yet been officially declared in Kerala. No heavy rainfall was recorded in the northern part of Kerala this morning, while the southern districts have received up to 5 mm of rain since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
7: Moreover, heavy rainfall is also expected over Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh and the northeastern parts of the country till tomorrow. IMD said thunderstorms accompanied by hailstorm are very likely at isolated places over East Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbha today, while thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected at isolated places over Delhi, Haryana and Chandigarh till tomorrow. World No Tobacco Day is being observed today to raise awareness against the dangers of using tobacco. The day is a global initiative by the World Health Organization to end the use of tobacco. The theme for this year is Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. We have a report.
9: As part of the observance in India, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava on Friday launched the pilot version of the Tobacco-Free Education Institutions application in New Delhi. The application aims to strengthen implementation and monitoring of tobacco-free norms across schools and colleges in the country. It will also facilitate self-assessment and reporting by educational institutions, monitor compliance with tobacco-free guidelines, ensure implementation of tobacco control signage, and help prohibit the sale of tobacco products within 100 yards of educational institutions. Addressing the gathering, Srivastava said that more than 2,000 tobacco cessation centers have been established across the country in hospitals, medical colleges, Ayush institutions and other healthcare facilities. With Vishnu's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: In cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of the IPL 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. More from our sports desk.
10: With the trophy within touching distance, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru will look to make most of their strengths in the final. Gujarat Titans have beaten RCB at this venue earlier this season, but Bengaluru will draw confidence from having won their maiden IPL title at the same ground last year. RCB have enjoyed an impressive campaign and entered the final after a 3-day break. Their batting has been one of the strongest in the tournament,

श्रोताओं, आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। लीजिए अब सुनिए घेनवा राम मांझी और साथियों का गाया ये धुरबी लोकगीत।

आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल बाड़ी।

0: बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को स्मृता दीदी का ढेर सारा प्यार। और बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: कैसे हैं बच्चों आप सब?
2: हम सब ठीक हैं।
0: कभी दीदी से भी पूछ लिया करो, दीदी आप कैसी हो? कभी नहीं पूछते हूँ उससे,
2: दीदी आप कैसे हो?
0: वैसे तो पता नहीं, लेकिन जब आप बच्चों के साथ होती हूँ ना तो बहुत मजे में होती, क्योंकि आपके साथ बैठ के मुझे लगता है मैं भी छोटी बच्ची हो गई हूँ। पता नहीं आप लोगों को मेरे साथ बैठ के कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। इसलिए मैं बहुत बहुत बहुत अच्छी हूँ बच्चों। और जो रेडियो सेट पर हमारे श्रोता दोस्त, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी से भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहूँगी कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। और अच्छे होंगे क्यों नहीं, क्योंकि हम आपके लिए इतने प्यारे प्यारे बच्चों की प्रस्तुतियाँ जो लेकर आते हैं। सही कह रही हूँ ना?
2: हाँ।
0: तो आपके दोस्त भी उधर से मुंडे हिलाकर जरूर कह रहे होंगे हाँ। तो बच्चों आप भी देर मत लगाइए और आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ आ जाइए। अगली बार आपके साथ होगी एक प्रोग्राम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इन बच्चों की तरफ आते हैं। तो आज आप सबने क्या क्या तैयारियां की है बच्चों?
3: मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ।
0: आप क्या सुनाएंगे?
3: पहली।
4: मैं दोहे सुनाने वाली हूँ।
5: मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ।
6: मैं कहानी सुनाने वाली हूँ।
0: हाँ भाई, तो दीदी तो तैयार है ही, साथ में कविता, कहानी, चुटकुले, दोहे, पहेलियों के लिए तैयार हो जाइए श्रोता दोस्त, क्योंकि ये नन्हे फरिश्ते एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देने के लिए कमर कस के तैयार है। ऊपर से गर्मी की छुट्टियां, तो क्या कहने, ढेर सारी तैयारियां और आप सभी का मनोरंजन, साथ में दीदी की तरफ से थोड़ी बातें जो आपके जीवन में काम आने वाली है, वो आज की बात में हम बताएंगे। तो फटाफट दीदी आपको लिए चलती हैं कार्यक्रम के असली हिस्से की ओर। तो ये बताइए बच्चों, आप सब स्कूल जाते हो?
2: हाँ।
0: किसके साथ खेलते हो स्कूल में?
2: दोस्तों के साथ।
0: घर में किसके साथ खेलते हो?
2: दोस्त के साथ।
0: यानी आपके जीवन में दोस्ती बड़ी मायने रखती है ना?
2: हाँ।
0: अगर आपके दोस्त आपके आसपास ना हो तो आपको अच्छा लगेगा क्या?
2: नहीं।
0: क्यों अच्छा नहीं लगेगा?
3: क्योंकि दोस्ती प्यार है।
0: दोस्ती ही प्यार है? बापरे, बड़ी बातें कह दी। क्या नाम है भाई आपका?
3: देवर्ष।
0: देवर्ष, इतनी बड़ी बात हम तो सोच भी नहीं सकते। चलिए, दोस्ती में प्यार भी छुपा है। अब दोस्ती की बात चल रही है बच्चों, तो हमें ये बताओ, दोस्ती में सबसे अच्छी मिसाल किसकी हम दे सकते हैं?
2: कृष्ण।
0: कृष्ण जी, किसके साथ दोस्ती थी उनकी?
2: सुदामा।
0: तो श्रोता दोस्त देख लीजिए, यहाँ दीदी का पत्ता कटने वाला है। हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं भाई, सब कुछ पता है इनको। दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं बच्चों कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आपके भी बेस्ट फ्रेंड होंगे ना?
2: हाँ।
0: तो कितने हैं बताइए?
3: बहुत सारे, उनको गिन नहीं सकते।
0: अच्छा, और आपके?
5: मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं।
0: आप सबके?
4: मेरे भी बहुत दोस्त हैं।
5: मेरे 3 दोस्त हैं।
0: अच्छा, और आपके?
6: मेरे 10 दोस्त हैं।
0: अरे बाप रे, इन्होंने बिल्कुल फिगर बिठा के रखा है 10। अब बस। तो बच्चों आपको पता है आप दोस्ती करते हो तो कैसे करते हो दोस्ती, क्या देखकर दोस्ती करते हो?
3: पर्सनालिटी।
0: अरे वाह, और क्या, कैसी पर्सनालिटी?
3: जैसे वो हमें अच्छे से ट्रीट करें, हमें हमेशा अपने बुरे समय पे हेल्प करें।
0: वेरी गुड, यही तो बातें हैं जो दीदी आपसे कहना चाहती थी। कुछ बातें आपने कह दी, कुछ दीदी आपको बताएंगी, ठीक है? सुनना चाहोगे?
2: हाँ।
0: तो बच्चों हम तो दोस्त बना लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए? क्योंकि जैसे मित्र वैसा चरित्र, ये बातें मम्मी पापा बताते हैं कि नहीं? हम जैसे लोगों की संगत में रहते हैं वैसी हमारी आदत बन जाती है, हमारी फितरत बन जाती है ना? तो दोस्ती बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे लोगों के साथ दोस्ती रखें, कैसे लोगों को अपने दोस्त के रूप में हम चुने, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये बात आप सब बच्चों को जानना ही चाहिए। हमें जो हमारे मन के मुताबिक चलता है, हम जैसा बोले वैसा करता है, हम उसकी बात मानते चले जाते हैं और वो हमको बड़ा अच्छा लगता है और उससे हमारी बड़ी पक्की दोस्ती हो जाती होता है ना?
2: हाँ।
0: उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, पापा का मोबाइल ले आओ, हम इसमें ये भी देखेंगे, हम उसमें वो भी देखेंगे, मम्मी से पैसे मांग के ले आओ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि नहीं?
3: हाँ।
0: सारे नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना। ये डिपेंड करता है बच्चों उनकी परिस्थिति, उनके जगह के वातावरण के ऊपर। जैसी परवरिश होगी, जैसा माहौल रहेगा, जैसी संगति होगी, वैसे हम धीरे धीरे ढल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त बनाने से पहले बहुत चीज सोचो, समझो, फिर दोस्त बनाओ। दोस्त वो नहीं होते हैं जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, गलत काम में हमको सहयोग करते हैं, बल्कि दोस्त वो होते हैं जो हमारी गलतियों को हमें बताते हैं। अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी क्लास में ऐसे छोटी छोटी कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं ना, जिसमें आपको लगता है कि नहीं, इसने मेरे साथ धोखा किया, फिर हमारी लड़ाई हो जाती, होती है ना।
4: हाँ,
0: टीचर
4: हाँ।
0: से आपने मेरी झूठी शिकायत क्यों करी, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, बोलते हो ना।
4: हाँ,
0: क्लास
4: हाँ।
0: में बोलते हो कि नहीं। कई बार आपकी कापी आपके दोस्त छुपा देते हैं और बाजू में आपका एग्जाम होने वाला है, फिर आपको तकलीफ होती है ना। तो हमको ऐसे ही लोगों से सतर्क रहना है जो हमको परेशान करें, हमारी परीक्षाओं के समय हमें डिस्टर्ब करें, या हमें अच्छी बातों की जगह गलत बातें बताएं। तो ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें। इतनी समझ तो आप में है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, समझते हो ना।
2: हाँ।
0: तो अगली बार जब दोस्त बनाएं तो कैसे लोगों को बनाएं?
3: अच्छे लोगों को
0: जो आपकी बातों को सुने, समझे और आपके सही काम में आपके साथ चले, ठीक है ना।
2: हाँ।
0: आप सब बच्चों की उम्र इतनी कम है बच्चों कि बड़े बड़े शब्दों में आपको ये नहीं समझा सकते, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, तो आप लोग समझते जाओगे कि कैसे लोगों के साथ हमको दोस्ती करनी है और कैसे लोगों के साथ नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अभी इतना जरूर समझ लो कि हमको जो हमारे मम्मी पापा के बात को न मानने के लिए कहें और बुरा काम करने के लिए कहें, उनसे हमको दोस्ती नहीं रखनी है, ठीक। मैंने तो बच्चों अपनी ओर से सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की, और ये मानती भी हूँ कि आप बच्चे बड़े समझदार हो, दीदी की बात को, थोड़ी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होगे और अगली बार सोच समझ कर दोस्त बनाओगे, है ना।
2: हाँ।
0: चलिए और अब बढ़ते हैं हम आज के सामुदायिक गीत की ओर, जिसे हम एक हमारे बहुत ही सुंदर से प्रांत से लेकर आए हैं, जिसका नाम है असम। वहाँ का वातावरण ही इतना सुंदर और सुखद है, कभी मौका मिले तो अपने मम्मी पापा के साथ असम के शहर के लिए जरूर जाइए, ठीक है। वहीं की प्यारी सी बोली है असमिया, और उसी भाषा में हम आपको आज का सामुदायिक गीत सुनाएंगे जो हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करती है। आइए असम की धरती को नमन करते हुए सुनते हैं ये सामुदायिक गीत, जिसकी सुंदर सी रचना की है सतीश दास जी ने।

0: बच्चों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा असमिया भाषा में सामुदायिक गीत सुना। रचनाकार थे सतीश दास जी। और अब फिर एक बार आते हैं आप नन्हे नन्हे बच्चों की दुनिया में और सबसे पहले बुलाते हैं आपको। आप अपना नाम बताइए।
1: दिव्यांका।
0: दिव्यांका कितना प्यारा नाम है। क्या सुनाएंगी दिव्यांका?
1: कहानी।
0: कहानी? कौन सी कहानी सुना रही हैं आप?
1: फूटा हुआ मटका।
0: फूटा हुआ मटका। आइए दोस्तों, आइए क्या सुनिए दोस्तों प्यारी सी कहानी।
1: एक गांव में गरीब किसान था जो किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। वह रोज सुबह पानी भरने के लिए दो घड़े लेता और एक लकड़ी की मदद से उन्हें अपने कंधों के दोनों ओर लटका लेता। उनमें से एक घड़ा तो बिल्कुल सही था जिसमें भरा पानी पूरा घर आ जाता था, लेकिन दूसरा घड़ा में एक छोटा छेद था जिससे पानी पूरा रास्ते टपकता रहता और घर पहुंचते पहुंचते उसमें सिर्फ आधा पानी ही बचता था। वह घड़ा खुद पर बड़ा शर्मिंदा था। उसे लगता था कि वह किसान की मेहनत पर पानी फेर दे रहा है। उसे यही दुख सताता कि किसान हर दिन उसे पूरा भरता है लेकिन वह पूरा पानी घर तक पहुंचा नहीं पाता। एक दिन मटके की उदासी को देखकर किसान ने इसका कारण पूछा। तब मटके ने उसे अपने मन की बात बताई। किसान ने मुस्कुरा कर मटके से कहा कि कल सुबह जब तुम मेरे साथ चलोगे रास्ते को ध्यान से देखना, जाते हुए भी और वापस आते हुए भी। किसान की बात मानकर अगले दिन मटके ने पूरे रास्ते को ध्यान से देखा। वापस आने पर किसान ने मटके से पूछा कि आज तुमने क्या देखा? तो मटका बोला कि जाते वक्त तो रास्ता एकदम सुनसान सूखा हुआ है, लेकिन वापस आते समय मुझे रास्ते में खूबसूरत फूल और पौधे दिखाई दिए। किसान ने कहा कि सड़क के इस ओर की ये खूबसूरती तुम्हारे ही कारण है। जब मैंने देखा कि तुमसे बूंद बूंद पानी रास्ते में टपकता रहता है तो मैंने उस रास्ते में फूल पौधे के बीज लगा दिए। हर दिन तुमसे गिरने वाला पानी वहां से वो पौधे पनप गए और आज उन पर खिले खूबसूरत फूल की खुशबू से पूरा रास्ता महकता है। यह सुनकर मटका बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, पर अपनी कमियों पर शर्मिंदा होने की जगह उन्हें समझकर खुद पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए।
0: बहुत अच्छी कहानी हमें दिव्यांका ने सुनाई। अपनी कमियों पर विश्वास रखें शर्मिंदा होने की बजाय, और फल बिल्कुल उस मटके से टपकते हुए पानी की तरह देखिए। सुंदर फूल खिला दिए ना सुने वीरान रास्ते पे उन्होंने। ऐसे ही हम भी हमारी कमियों को दूर करके अपनी ताकत बना सकते हैं। ठीक है, इस अच्छी सी कहानी के बाद अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आपको। आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम शौर्य है।
0: आप क्या सुनाएंगी शौर्य?
2: पहली।
0: पहली पूछेंगे? तो बच्चों दिमागी कसरत के लिए तैयार हो जाओ, पूछिए।
2: मुंह है पर बोलता नहीं।
0: बताओ ऐसा क्या है जिसका मुंह है लेकिन वो बोलता नहीं?
2: घड़ा।
0: सही जवाब
2: जी। घर में रहता है पर घर नहीं है।
0: बताओ ऐसा क्या है जो घर में रहता है पर घर नहीं है? आप ही बता दो।
2: दरवाजा।
0: भाई
2: चलता है पर पैर नहीं।
0: अभी बहुत जरूरत पड़ती है उसकी, सोचो जरा।
1: पंखा।
0: सही जवाब।
2: जी
0: शाबाश, ताली बजाइए। सही जवाब है ना। थी बहुत ही सुंदर सी पहेलियों के लिए शौर्य का बहुत धन्यवाद। चलिए अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आपको। आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम भारती ठाकुर है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
1: नानी की कहानी, कविता।
0: हाँ सुनाइए।
1: मेरी प्यारी प्यारी नानी, मुझे सुनाओ एक कहानी। बिस्कुट के पेड़ हो, चॉकलेट का ढेर हो, जूस का नल हो, चारों ओर फल हो। पापा लाए खूब खिलौने, मम्मी बनाए गरम पकौड़े। खूब मौज मस्ती हो ऐसी, सुनाओ एक कहानी मेरी प्यारी प्यारी नानी।
0: भाई गर्मी के दिनों में नानी के घर जाते हैं तो नानी हमको क्या सुनाती है?
3: कहानी।
0: बहुत अच्छी कविता। और अब बुलाते हैं आपको। आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम कुमारी प्रिया कश्यप है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
4: कविता।
0: सुनाइए।
4: जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता रहने वाली, पेड़ और प्रकृति का नाता। जैसे हो बच्चों की माता, फूल और फल तुम पाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ।
0: बहुत अच्छी कविता हमें सुनाई प्रिया ने कि हमें जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और जिस तरह से आज इतनी गर्मी पड़ रही है ना, अगर हमारा पर्यावरण हरा भरा होगा तो इस गर्मी से भी हमको क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी कविता। और अगली प्रस्तुति के लिए आपको बुलाते। आप पहले अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम देवयांशी है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
5: आज मैं आप सभी को कबीर दास जी के दोहे सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाइए।
5: ऐसी मानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: बहुत ही प्यारे दोहे हमें सुनाए दिव्यांशी ने। और ऐसी ही एक और प्यारी सी प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आपको। पहले आप अपना नाम बताइए।
6: नव्या त्रिपाठी।
0: नव्या, आप क्या सुनाएंगे? नव्या
6: कविता।
0: सुनाइए।
6: ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साय साय, मुन्नी को छोड़कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी। मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी।
0: हाँ भाई बहुत अच्छी कविता हमें हवा पर सुनाई नव्या ने। तो हवा कितनी जरूरी है पता है ना? हवा क्यों जरूरी है बताइए? सांस लेने के लिए। आप मेरी बात सुन पा रहे हो ना?
6: हाँ हाँ।
0: किसके जरिए सुन पा रहे हो? इसके लिए भी हमको क्या की जरूरत है? हवा की जरूरत है। हवा वो माध्यम है जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है ना? बिल्कुल आप बच्चों की तरह, आपके हौसलों की तरह। और अब अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आपको। पहले आप अपना नाम बताओ।
7: देवर्ष।
0: देवर्ष, वाह वाह वाह, एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में भगवानों की भरमार है भाई, उस नाम की। तो बच्चे तो हैं ही भगवान का अंश और भगवान का प्यारा सा तोहफा। तो आइए देवर्ष जी, आप क्या सुनाएंगे?
7: आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ कृष्णा और सुदामा के ऊपर।
0: अरे वाह, तो मित्रता की कहानी सुनाएंगे आप? तो आइए आप और हम सब मिलकर ध्यान लगाकर सुनते हैं दोस्ती के ऊपर ये कहानी।
7: कुछ सालों की पहले बात है, एक सुदामा और एक कृष्णा थे जो दोनों दोस्त थे, और वो दोनों एक ही मंदिर में अपना तपस्या करने के लिए जाते थे। और जब वो बड़े हुए, सुदामा एक झोपड़ी में रहता था खजूर की, और जो

0: कृष्णा थे वो द्वारिका के राजा बन चुके थे। और एक दिन उनके जो सुदामा थे उनकी गरीबी के कारण उन्हें वो ना कृष्णा के पास गए और उनको ना एक तोहफा में थोड़े से पोटली में चावल दिए। और फिर उनको ना शर्म आ रही थी बताने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें बिना बताए चले जाते हैं। पर जब वो घर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके घर में जितने भी लोग हैं वो सोने और मोतियों से घिरे हुए हैं, और जो उनका घर है वो महल से महल बन गया है।
1: देवर्ष ने हमें कृष्ण और सुदामा की ये कहानी सुनाई, जो बचपन से शुरू होकर उनकी युवावस्था तक गई और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने तक, जहाँ एक ओर कृष्ण जी राजा बन चुके थे, द्वारिका के राजा बन गए थे, दूसरी ओर सुदामा जो है वो बहुत ही तंगहाल जिंदगी जी रहे थे, है ना? तो बच्चों, फिर भी इनकी दोस्ती में कोई अंतर आया क्या?
0: नहीं,
1: तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
0: कि हमें हमेशा सच्चे दोस्त बनाने चाहिए।
1: बिल्कुल, जैसा कि कृष्ण और सुदामा ने बनाया, एक दूसरे के दुख के साथी बने, सुख के भागी बने और जीवन पर्यंत अपनी दोस्ती को निभाया। ना उन्होंने अपना एहसान जताया दोस्त के ऊपर, ना ही दोस्त की गरीबी का मजाक उड़ाया। और दोस्त ने भी ये सोचकर कृष्ण जी से मिलना नहीं छोड़ा कि मैं गरीब हूँ, पूरे विश्वास के साथ अपने मित्र के पास गए। और उस विश्वास का, उस मान को रखा किसने? उस दूसरे मित्र ने, जो मिसाल बनाती है पूरी दुनिया के लिए कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह। बहुत अच्छी कहानी हमें देवर्ष ने सुनाई और इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियों के साथ हमारा आज का ये बालवाड़ी कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। लेकिन जब आप सब बच्चों ने दीदी को इतने प्यारे प्यारे तोहफे दिए हैं अपने कार्यक्रम के जरिए, तो दीदी भी चाहेंगी बच्चों कि आप जब घर जाओ तो आपकी छुट्टियों में चार चांद लगे इस गीत के माध्यम से। सुनना चाहोगे?
2: हाँ।
1: तो आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: और इस गीत के साथ ही हमारा आज का बालवाड़ी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अगले रविवार ठीक 9 बजे आप सभी बच्चों से फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए दीदी को इजाजत और बच्चों मेरे साथ कहिए जय हिंद
1: जय।

आप सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है किशन कन्हैया।

के साथ में है शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित ने अभिनय किया है। अन्य कलाकार हैं कादर खान, सैयद जाफरी, रणजीत, बिंदु, दिलीप ताहिर, अमरीश पुरी, सुजीत कुमार, शोभा खोटे, श्रीराम लागू, जॉनी लिवर, दिनेश हिंगू और विकास आनंद। तो आइए सुनते हैं फिल्म किशन कन्हैया का एक और गीत साधना सरगम के स्वर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है किशन कन्हैया। फिल्म किशन कन्हैया के गीतों को लिखा है इंदिवर और अनवर सागर ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने। फिल्म में लता मंगेशकर, आशा भोसले, साधना सरगम, मोहम्मद अजीज, अमित कुमार, मनहर उदास और नितिन मुकेश जैसे शीर्ष गायकों ने इसके गीतों को अपनी आवाज दी है। तो आइए सुनते हैं फिल्म किशन कन्हैया का एक और गीत आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में।

श्रोता, फिल्म किशन कन्हैया वर्ष 1990 की चौथी सबसे सफल फिल्मों में से एक है। दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में फिल्म किशन कन्हैया का गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की स्वरों में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म थी किशन कन्हैया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: दर्शकों से अपने विचार साझा करेंगे। और खेत बचाओ अभियान देश भर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इन चुनावों के लिए शनिवार रात 12 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में।
1: निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 से 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है। शेष 34 पदों पर मतदान होगा।
0: पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मत पेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज ऑन एआईआर वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए से व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों में सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तंबाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना चाहिए। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज अंतिम दिन है। इस महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। महोत्सव में बस्तर संभाग के जंगलों में मिलने वाले करीब 150 दुर्लभ किस्मों के आमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये आम आदिवासी अंचल के स्थानीय हाट बाजार में उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चांपा स्टेशन में चौथी रेल लाइन को जोड़ने के लिए बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से 7 से 19 जून के बीच रद्द की गई सभी ट्रेनें अब बहाल कर दी गई हैं और वे अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी अधिकृत पूछताछ सेवाओं तथा वेबसाइट से जरूर कर लें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति है तृप्ति परिडा की, संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर।
3: नमस्कार श्रोताओं, तपती गर्मी के इस मौसम में अगर दिल को सुकून मिलता है तो वो है अपने पसंदीदा गीतों की ठंडी छांव। तो लीजिए, आपके फोन कॉल्स और फरमाइशों के साथ सच चुकी है सुरों की महफिल, जहां हर गीत जुड़ा है किसी न किसी श्रोता की यादों, भावनाओं और पसंद से, साथ ही कुछ बातचीत भी होगी। तो शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा फोन इन चाहत और देखते हैं आज का पहला कॉल किसने मिलाया।
4: हेलो हेलो, फोन इन चाहत।
5: हाँ दीदी, नमस्ते।
4: नमस्ते, तो बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन?
5: बलराम सेन, दंतेवाड़ा बजरी से बोल रहा हूँ दीदी। नमस्कार।
4: नमस्कार, बताइए क्या चल रहा है आज?
5: बस दीदी, मेरे सैलून दुकान है दीदी, हेयर कटिंग का, बचेली में।
4: अच्छा अच्छा,
5: और आप लोग का कार्यक्रम सुनता हूँ दीदी मैं नियमित।
4: बहुत अच्छी बात है हमारे लिए ये। बलराम जी बताइए, बचेली की तरफ अभी गर्मी कैसी है इस साल?
5: गर्मी तो अभी अच्छी पड़ रही दीदी, यहाँ तो अभी नौतपा चल रहा है ना।
4: नौतपा है, मगर बचेली किरंदुल में तो थोड़ी गर्मी कम पड़ती है।
5: हाँ दीदी, बाकी जगह से थोड़ा सा कम है, लेकिन गर्मी यहाँ पर लगी रहे दीदी।
4: है ना, इस बार खैर इस बार गर्मी शायद पूरे देश में ही है
5: जी दीदी।
4: अगर हिल स्टेशन की बात छोड़ दें तो सभी जगह पे हमें गर्मी मिल रही है आज। तो बताइए बलराम जी, आप गाना कौन सा सुनना चाहते हैं, पसंद बताइए।
5: दीदी मेरे को सुना दीजिए आप, फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम, गाने के बोले दीदी तारों को चमकता गहना हो। मौसम कैसे वहाँ पर?
4: यहाँ भी बहुत गर्मी है।
5: अच्छा अच्छा,
4: कल बारिश हुई, थोड़ी सी ठंडक थी, मगर आज फिर से गर्मी है।
5: दीदी आपका आज कार्यक्रम सुना दीदी, अच्छा लगा मेरे को
4: जी। धन्यवाद
5: जी।
4: और क्या क्या सुनते हैं आप जगदलपुर स्टेशन से?
5: मैं तो दीदी आपके यहाँ से सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, सुबह से लेकर रात 11 बजे तक।
4: पसंद कौन से कार्यक्रम है
5: आपके यहाँ दीदी? सभी कार्यक्रम अच्छा लगते हैं मेरे, खासकर है श्रोता सुमन, हेलो युवानी, लोकरस है, और मोचो मंचो आता ना अभी नया नया शुरू हुआ है गाना,
4: ऐसी कार्यक्रम मोचो मंचो गीत शुरू हुआ
5: जी दीदी। तभी दीदी मैं पत्र भेजता हूँ दीदी।
4: हाँ, आपका पत्र हम सुनते हैं, पढ़ते हैं
5: जी जी।
4: बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी प्रतिक्रिया लिख करके भेजते हैं, तो हमको हमारे कार्यक्रमों में अगर कोई सुधार करना है या कोई अच्छे कार्यक्रम हुए हैं तो हमें हौसला मिलता है इससे। तो ठीक है बलराम जी, हम सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: हेलो
2: हेलो फोन इन चाहत।
1: हाँ तृप्ति मैम जी नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते।
1: हाँ मैं ग्राम मुंडा टोला विकासखंड डोंडी लोहारा जिला बालू छत्तीसगढ़ से डोमेन रहता हूँ बोल रहा हूँ मैम जी।
2: हाँ डोमेन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहाँ गर्मी कैसी?
1: गर्मी तो यहाँ हमारे बालोद जिला में खूब पड़ रही है मैम जी, पारा 21 से 42 डिग्री बढ़ चुके हैं।
2: नहीं इस बात तो ये वाली स्थिति हर जगह है। और अभी क्या चल रहा है आपका?
1: अभी मेरा प्राइवेट जॉब का है मैम, काम करता हूँ वही हमारे गांव से 10 किलोमीटर आगे डोंडी लोहारा में।
2: क्या काम?
1: एक गल्ला व्यापारी का काम है जिसमें अनाज के खरीदी बिक्री का काम करते हैं, जिसमें उसमें मैं कुछ ही लोगों को कंप्यूटर के बिल देता हूँ मैम जी। हिसाब किताब का काम है।
2: अच्छा हिसाब किताब का काम है, तो फिर बहुत ध्यान से करने वाला काम है ये तो।
1: हाँ मैम जी,
2: क्योंकि पैसे का काम जहाँ आता है वहाँ पे सतर्कता बढ़ जाती है।
1: जी जी जी।
2: और क्या चल रहा है अभी?
1: और अभी बस और खेती बाड़ी भी काम करते हैं, तो अभी खेती बाड़ी में भी साफ सफाई का काम भी चल रहा है मैम जी।
2: अच्छा खेती बाड़ी भी है आपका, तो मुख्य फसल क्या रहता है आपका?
1: मुख्य फसल वही अनाज है, धान का है मैम जी।
2: अच्छा धान का है, तो अभी क्या चल रहा है इसमें?
1: अभी तो बस तैयारी कर रहे हैं, वो खाद वाद डाल रहे हैं।
2: बारिश का समय आ रहा है तो
1: तैयारी करना पड़ता है मैम जी, तो तैयारी बनाए रखे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, समय से अगर सब तैयार रहे तो बारिश हो तो काम जल्दी होता है।
1: होता है जी जी जी।
2: तो बताइए डोमेंद्र जी, आप आज अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, और हमें बहुत खुशी हो रही है मैम जी की फोन इन चाहत में हमारा पहली बार फोन लगा है।
2: अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है।
1: जी जी जी, हम खुशी को हम बयां नहीं कर सकते।
2: नहीं नहीं ये सच में।
1: अब आपसे इतनी सुंदर प्यारी प्यारी बातें हो रही है, अब क्या कहें।
2: जब फोन लगता है आप लोग इतनी मेहनत से बैठते हैं, घंटों फोन लगाते हैं और फोन लगता है तो खुशी होना तो लाजिमी है।
1: जी जी जी।
2: हमारे लिए भी अच्छी बात है कि एक नए श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जी जी। तो आज के कार्यक्रम में मैम जो फिल्म गुलामी का है गीत के बोल है, रिहाल मस्ती मुकुन बरन जिन बिहाल हिजड़ा बेचारा दिल है, सुनाई देती थी जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल है हमारा दिल है। वाला गीत सुना दीजिएगा मैम जी।

0: मुनीन चाहत।
1: हेलो चाहत
0: जी हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: प्रीति दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते,
1: मैं बेडी से बोल रहा हूँ, राजेश सोनी।
0: राजेश सोनी जी आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं
1: जी।
0: और राजेश सोनी जी बताइए आजकल क्या चल रहा है
1: जी? मुझे एक गीत की फरमाइश देना था दीदी।
0: हाँ बिल्कुल, गीत तो आपको हम आपकी पसंद का जरूर सुनाएंगे, पर पहले कुछ बातें तो बताइए। अपना बीरडी पड़ता कहाँ पर है?
1: एमपी में पड़ता है दीदी, जैसे पहले छिंदवाड़ा था, पांडुना डिस्ट्रिक्ट हो गया है। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है जामसावली का मंदिर।
0: ये किसी देवी का मंदिर है?
1: नहीं, बजरंगबली।
0: अच्छा, बजरंगबली जी का मंदिर है।
1: हाँ, आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसकी अक्सर करके फोटो वगैरह आती है।
0: नहीं, इसका ज्यादा अंदाजा मुझे नहीं है, पर आप बताइए जरूर, क्योंकि आप बताएंगे तो हो सकता है आपके आसपास के लोग और कुछ अगर उस एरिया में जाते हैं घूमने तो उनको भी कुछ आइडिया मिलेगा।
1: तो दीदी, यहाँ मंदिर में तो दिल्ली या मुंबई से तक यहाँ श्रद्धालु आते हैं मंदिर में।
0: ये मंदिर कहाँ पे है?
1: सौसर से 3 किलोमीटर, यानी बेरडी ये गांव ऐसे है, तो ये जैसे महाराष्ट्र और एमपी के बीच में है, ये बॉर्डर पे, तो जमको एमपी भी होता है और महाराष्ट्र भी होता है,
0: दोनों के बीच में है।
1: हाँ, दोनों के बीच में है।
0: चलिए, ये भी एक अच्छी जानकारी है। और बताइए सोनी जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे रखवाला का गीत सुनना है दीदी, तेरी आंखों में आंसू है मेरी आंखों में है ज्वाला, श्री बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज में ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: फोन चाह है।
1: नमस्ते। तृप्ति जी बोल रहे हैं।
0: हाँ नमस्ते।
1: आपको, आपकी पूरी टीम को मैं जिला रायसेन ग्राम खापर खेड़े तीन मरुआ से आपका श्रोता बात कर रहा हूँ, तुलसीराम साहू।
0: और बताइए साहू जी।
1: भाई जी, आपके कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे श्रोता से मैंने सुन के। यहाँ पर करीब 42-43-44 लगभग मान मतलब तापमान चल रहा है, तो मैं
0: हाँ
1: झूला पर झूल रहा था और आपका कार्यक्रम का इंतजार कर रहा था।
0: गर्मी तो इस साल सभी जगह बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: जी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, मैंने झूला पर झूल रहा था, लाइट भी चली गई 10 मिनट का आ जाए, तो लाइट चली जाए तो पसीना पसीना हो जाती है जी, बहुत महंगा धूप पड़ रही है।
0: हाँ गर्मी बहुत है तो वो थोड़ी देर भी लाइट जाने से परेशानी तो बहुत होती है।
1: और साहब क्या है जी, छोटे छोटे बच्चे तो अपन तो जैसे बर्दाश्त कर लेते, लेकिन बच्चे जो अभी हमारी लड़की हुई है बालक की,
0: हाँ हाँ
1: करीब 2 महीने की हुई है, तो
0: अच्छा
1: थोड़ी
0: अच्छा
1: लाइट चली जाती तुरंत तो रोने लगती है।
0: चलिए पहले तो आपको बधाई दे दें, आपके यहाँ पोती आई है। तुलसी राम जी, आप बताइए आपको मैं आपके पसंद का कौन सा गीत सुनाऊं।
1: जी हाँ जी, तो मैंने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैंने सोचा था कि हम एक साथ हमारे सभी मित्र आपका डिपार्ट पूरा खापर खिला आए और मूंग की दाल के में देसी मूंगोड़ी आप लोगों का स्वागत करूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कभी मौका लगा तो जरूर।
1: जी आज मैंने ऐसे गीत चुना है कि हमारे चंदेश गौहर जी और हमारे जयपाल यादव जी हैं
0: जी जी जी
1: जी, इस गाने को जहाँ तक पसंद करेंगे
0: जी जी
1: जी। गाना है, मैंने प्यार में जब ठोकर खाई मेरे अश्क बहे दरिया की तरह।
0: फिल्म कौन सा है?
1: फिल्म शायद यही होगी, मैंने प्यार में जब ठोकर खाई।
0: ठीक है तुलसी जी, अब सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी हमारे सभी मित्रों को और हमारी जयमंती केवट बहन जी हैं, सबको रेडियो के माध्यम से मेरी जय श्रीराम पहुंच जाए।
0: चलिए आपके नमस्कार जो है आपके सभी साथियों तक जरूर पहुंचेगा।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: बहन जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बहन जी मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: और बताइए जगदीश जी, पंजाब में इस साल गर्मी कैसी?
1: बहन जी पंजाब में तो गर्मी बेतहाशा भीषण गर्मी पड़ रही है,
0: सब जगह है इस साल तो।
1: अभी तो लू चल रही है जी, बस बरसात का इंतजार है।
0: आपको क्या लगता है इस साल बारिश कैसी होगी, कम ज्यादा नॉर्मल?
1: बहन जी अभी तो यही लगता है कि बारिश कम ही होगी, क्योंकि अभी तक तो कहीं बादल दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे तो होगी होगी, पर ये भी नहीं है कि पिछले सालों से ज्यादा हो, ये नहीं लग रहा। फिर तो बरसात का मौसम आएगा, बरसात होगी ही होगी।
0: हाँ वो तो होगी ही, मगर किसी साल जैसे पिछले साल काफी बारिश हुई थी।
1: हाँ पिछले साल काफी हुई।
0: तो आप करते क्या है जगदीश जी?
1: बहन जी मैं तो अब सेवा मुक्त हूँ और चिंता मुक्त भी हूँ, बस रेडियो का आनंद लेते हैं, जहाँ फिर मित्रों के पास बैठते हैं, वहाँ बातें करते रहते हैं, ऐसे सारा समय।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आपके रिटायरमेंट के बाद का कुछ लाइफ के बारे में बताइए।
1: बहन जी रिटायरमेंट के बाद तो जिंदगी ऐसे लगता है कि बस आनंद लेने के लिए ही होती है, और हम आनंद ही ले रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जीवन हमने काम किया है, तो इसके बाद का समय आनंद के लिए तो रखना ही है और उठाना भी।
1: बिल्कुल बहन जी, हम ताउम्र ये सोचते रहते हैं कि कब रिटायर हो, कब काम से मुक्ति मिले, थे और फिर आनंद से जीवन जिए। अब मिला है तो फिर क्यों ना जिए।
0: बिल्कुल, इसका पूरा मौके का फायदा उठाना है, ईश्वर ने दिया है ये मौका तो जरूर इसका आनंद उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल बहन जी, जैसे बचपन दिया है, फिर जवानी दी है, फिर बुढ़ापा दिया है, हर एक समय का अपना अपना लुत्फ होता है।
0: हाँ क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद।
0: और आपके फैमिली में कौन कौन है जगदीश जी?
1: बहन जी मैं तो बस अकेला ही रहता हूँ जी, क्यों बेटी की शादी हो गई है और बेटा बहुत दूर रहता है, और मेरी मिसेज की डेथ हो चुकी है, तो मैं घर में अकेला ही होता हूँ। बस रेडियो से जुड़ा रहता हूँ, या फिर अखबार पढ़ लिया, टीवी देख लिया, या कोई मित्रों के पास जा बैठे।
0: तो जगदलपुर स्टेशन के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं और पसंद करते हैं?
1: बहन जी अभी तो मैं जब से ऐप आ गई है तो एकदम से जैसे चैनलों का तूफान सा ही आ गया, तो सारे चैनल कहाँ सुन पाते हैं। हाँ ये जरूर है, अभी कभी कभी सुनते रहते हैं, जगदल पर भी सुनते हैं। मैं जहाँ आया था जो बल्ढाना में
0: जी जी,
1: तो जगदलपुर की अनाउंसरों की टीम वहाँ स्टेज पे आई थी, मैंने मैं भी आया था
0: जी जी जी,
1: तो मेरे को थोड़ा सा फिर लगाव हो गया कि जगदलपुर के भी कार्यक्रम सुने जाएं।
0: हाँ हाँ, तो आप सुनते हैं जगदलपुर के कार्यक्रम?
1: तो अब अभी सुनने शुरू कर दिए हैं जी मैंने।
0: अच्छा, तो कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं ज्यादा?
1: तो ये तो सुनना ही है, जो अपन अपनी फरमाइश का होता है जी,
0: चाहत तो सुनना ही है, ये तो सबकी पसंद का रहता ही है।
1: तो दूसरे अभी बहन जी मैं सच बोलूं तो अभी नहीं कोई ज्यादा सुने, सुनना शुरू कर दिया है अभी, जब जो भी दिलचस्प प्रोग्राम जहाँ कार्यक्रम का विवरण कब आता है वो भी मेरे को अभी नहीं पता है।
0: नहीं बिल्कुल सुनिए, रोज सुबह 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर आता है, वो कार्यक्रम आप जरूर सुनिए, श्रोता सुमन है।
1: बस फिर उसमें से पता चल जाता है अभी, तो सुना करेंगे बहन जी।
0: बिल्कुल कार्यक्रम जरूर सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर भेजिए, पत्रांकन कार्यक्रम भी है उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिए।
1: ठीक है बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहेंगे हम।
0: बिल्कुल, तो जगदीश जी फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जगदीश जी बताइए आप गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: बहन जी आज मैं एक बहुत ही रूमानी सा गीत है रफी साहब जी की आवाज में
0: जी,
1: फिल्म है आपकी परछाइयां, मेरी इच्छा के उसके दो लाइनें मैं गुनगुना के बता दूं।
0: अरे बिल्कुल जरूर बताइए
1: जी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो।
3: हाँ, फोन इन चाहत
2: जी। नमस्ते।
3: हाँ नमस्ते
2: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, सिरवा बांधा बेमेतरा से।
3: जी जांगड़े जी, बताइए और काम काज क्या चल रहा है आपका आजकल?
2: अब अभी तो ज्यादा काम धाम नहीं है, वही खेती बाड़ी का रहता है, तो दो तीन महीने गर्मी में तो थोड़ा सा आराम रहता है। हाँ।

0: गर्मियों में कम, मगर अब बारिश आने वाली है तो तैयारियां शुरू हो गई होंगी।
1: हाँ जी, जोताई वगैरह है, खेत की तैयारियां ये सब शुरू है।
0: तो क्या लगाते हैं?
1: अभी तो धान ही लगाएंगे।
0: तो अभी जब शुरू होता है पूरा काम, तो ये कब
1: हाँ,
0: तक चलता है?
1: ये अभी मान के चलिए मानसून जैसे ही दस्तक देगा तो फिर धान की बुआई वगैरह करेंगे। उसके बाद अब वो 4 महीने का तो समय लग जाता है धान की कटाई तक।
0: कटाई तक पूरा,
1: जी
0: वो दिवाली आ जाता है मान के चलिए।
1: हाँ, दिवाली निकल जाता है लगभग लगभग नवंबर के आसपास मान के चलिए।
0: और खेती बाड़ी के अलावा और क्या करते हैं आप?
1: अब अन्य काम तो नहीं है, पर्याप्त तो समय उसी में लग जाता है।
0: अच्छा, क्या सुनना चाहेंगे योगेश जी आप?
1: फिल्म राजा और रंक से सुनवा देंगे, और फिरकी वाली तो कल फिर आना।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया गीत है।
1: जी
0: फोन करने के लिए आपको धन्यवाद, और सुनाते
1: धन्यवाद।
0: हैं आपको आपकी।

0: हेलो, फोन इंचा
1: हेलो,
0: हेल्थ।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे
1: ग्राम
0: हैं?
1: हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। जी
0: हाँ भगवान सिंह जी, बताइए क्या चल रहा है आजकल?
1: दीदी, हम तो किसान हैं, खेती किसानी करते हैं दीदी, और अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है दीदी हमारे इधर।
0: अरे गर्मी तो इस बार सभी जगह है, यहाँ भी बहुत गर्मी है।
1: जी करीबन 44-45 डिग्री तापमान है अभी वर्तमान में दीदी,
0: हाँ,
1: अभी अभी।
0: नहीं, इस बार सारे देश में हाल बहुत खराब है गर्मी को लेकर
1: जी
0: के।
1: जी
0: तो आपकी इधर मुख्य फसल क्या है भगवान सिंह जी?
1: दीदी, अभी बरसात में जब बरसात चालू होगी दीदी, सोयाबीन मक्का धान की फसल रहेगी बरसात में,
0: जी
1: और
0: जी
1: उधर जब रबी की फसल रहेगी दीदी उसमें गेहूं, चने और लहसुन और प्याज।
0: अच्छा, पूरे नकदी फसल होती है।

0: जी
1: अच्छा, तो मतलब ये गर्मी का जो 2-3 महीना ये समय आपको थोड़ा फुर्सत का मिलता है।
0: जी हाँ दीदी, ये हमारे किसानों के लिए आराम का समय रहता है दीदी। और कुछ मतलब किसान मूंग वगैरह मूंग बो देते हैं दीदी, लेकिन इतना नहीं बोते, बहुत कम लोग बोते हैं हमारे इधर को, कम बोते हैं।
1: पानी वगैरह की वहाँ व्यवस्था अच्छी है, पानी की भी दिक्कत?
0: जी दीदी, पानी तो है हमारे इधर, लेकिन नहीं बोते गर्मी में ज्यादा।
1: अच्छा,
0: 3 फसल लेने से कमजोर हो जाती है।
1: हाँ, जमीन को भी समय चाहिए वापिस उर्वरा शक्ति के लिए, और थोड़ा सा इंसानों को भी आराम के लिए चाहिए समय।
0: जी हाँ दीदी,
1: क्योंकि खेती किसानी का काम होता भी बहुत मेहनत का है।
0: जी जी,
1: थोड़ा आराम का समय दीजिए। तो भगवान सिंह जी, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: दीदी, फिल्म का नाम है खुद्दार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है।
1: चलिए भगवान सिंह जी, आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: शायद नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: नमस्कार। हम बोल रहे हैं नक्की सैमरे से, आरपी नानी बोल रहे हैं। और सब ठीक ठाक चल रहा है?
0: हाँ हाँ बढ़िया चल रहा है। आप बताइए।
1: और मेरे को गीत सुनना था आज।
0: हाँ, आपको जरूर गीत सुनाएंगे, पर पहले कुछ बातचीत तो करिए।
1: सुनिए, मेरे को सुन के बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गया, इसलिए अभी फोन लगाना पड़ा मेरे को। बड़ा मुश्किल में लगा है अभी,
0: अच्छा,
1: इसलिए बात करना पड़ रहा है।
0: हाँ,
1: देखिए, मेरा 86 सावन देख लिया हूँ मैं दुनिया में, इतना
0: अरे
1: पुराना श्रोता हूँ और आकाशवाणी से आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा
1: उस
0: अच्छा
1: जमाने से जब हम मोबाइल नहीं था, हम स्टूडियो में जाके फोन करते थे। इसलिए
0: हाँ हाँ नहीं सही बात है। आप जैसे बता रहे हैं आपकी उम्र 86 साल है, तो निश्चित रूप से आप बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: हाँ,
0: और
1: बहुत पुराना हूँ आपका।
0: जी
1: अब
0: जी
1: बताया ना, जब मोबाइल का दुनिया नहीं था, बाद
0: जी जी जी
1: में मोबाइल निकला नोकिया, उसे पहले स्टूडियो में जाके करते थे हम।
0: हाँ हाँ पहले तो एसटीडी में जाकर के
1: आज
0: करना पड़ता था।
1: मेरे को एक गीत सुनना है, पुराना गीत है, क्या
0: हाँ हाँ बताइए।
1: से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, गाइड पिक्चर का है, मोहम्मद रफी गाया है गीत को।
0: चलिए, धन्यवाद फोन करने के लिए। आपको सुनाएंगे आपकी पसंद का गीत।

0: फोन इन चाहत।
1: हेलो,
0: नमस्कार,
1: राजेंद्र गंगवार बोल रहे हैं, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका स्थित बरेली से, उत्तर प्रदेश।
0: क्या बात है, बरेली से?
1: हाँ मैम जी।
0: हाँ जी, बरेली किस चीज के लिए फेमस है बताइए? वैसे तो बरेली नाम हम बहुत सुनते हैं गीत में।
1: हाँ जी, बरेली तो हमारी जरी के नाम से जाना जाता है, नाथ नगरी से जाना जाता है, और हमारे यहाँ का पेड़ा भी मशहूर है।
0: बरेली का पेड़ा, आगरा का पेड़ा तो सुना था।
1: बरेली में भी पेड़ा अच्छा है।
0: अच्छा, और बताइए राजेंद्र जी, पहले गीत बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे।
1: अच्छा, तो गीत हमें सुना दीजिएगा, राजा मूवी का गाने के बोल रहेंगे, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी।
0: और बताइए राजेंद्र जी, गर्मी कैसे पड़ रही है आपकी बरेली में?
1: गर्मी तो कुछ मत पूछो, बड़ी गर्मी पड़ रही है। शाम को हल्की सी आंधी आई, एक दुक्का बूंदा बांदी हुई, बस चला गया, बारिश तो हो ही नहीं रही है, गर्मी ही गर्मी पड़ रही है। और
0: थोड़ी
1: वहाँ
0: बारिश।
1: के मध्य प्रदेश में कैसे हालचाल है?
0: मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का हालचाल भी ऐसा ही कुछ है, पर यहाँ आपके वहाँ से शायद गर्मी कम है,
1: यहाँ
0: पर
1: तो
0: गर्मी
1: बहुत
0: तो है।
1: गर्मी पड़ रही है मैम जी, बेहाल है गर्मी, घर से दोपहर
0: और उधर
1: निकलते
0: अभी
1: ही नहीं है
0: लाइट
1: दोपहर में।
0: लाइट की भी बहुत समस्या हो रही है, बिजली भी बहुत जा रही है।
1: हाँ जी, बिजली का यहाँ भी समस्या है, क्योंकि आंधी आई थी शाम को, तो अभी तक बिजली ही नहीं आई मैम जी।
0: तो राजेंद्र जी, क्या चल रहा है आपका, क्या करते हैं आप?
1: हम तो मैम जी जरी का काम करते हैं, जो हमारी बरेली जरी के नाम से जानी जाती है, जो मोती सितारा काम होता है का कपड़े पर वो ही।
0: अच्छा, पूरा जरी का
1: हाँ
0: काम
1: जी,
0: होता है।
1: हाँ मैम जी, जरी का काम करते हैं खाली टाइम, वैसे तो कुछ भी नहीं करते क्योंकि पैरों से विकलांग हैं।
0: अरे तो जरी का
1: हाँ
0: काम
1: जी,
0: करते हैं, तो ये इसमें मतलब पूरा साल ये चलता होगा ना काम तो?
1: हाँ चलता तो पूरा साल है, लेकिन बाजी टाइम काम खत्म हो जाता है तो नहीं चल पाता है। हाँ
0: तो रेडियो
1: जी,
0: सुनते हैं आप?
1: हाँ जी, रेडियो एक हमारा ऐसा साधन है, क्योंकि हम जरी का काम करते हैं, रेडियो एक साइड तक चलता रहता है,
0: बिल्कुल।
1: तो टाइम भी अच्छा खासा कट जाता है और काम भी अच्छा फैला जाता है। रेडियो एक तो ऐसी चीज है कि सुनते रहो, अपना काम करते रहो।
0: हाँ, उसके लिए अलग से बैठना नहीं पड़ता है, काम और रेडियो
1: हाँ
0: सुनना
1: जी,
0: दोनों एक साथ हो जाता है। कॉल
1: मैम
0: करने
1: जी
0: के लिए आपका
1: दोस्तों के
0: धन्यवाद।
1: नाम ले सकते हैं?
0: हाँ, बिल्कुल लीजिए।
1: हाँ जी, सबसे पहले तो आप रहेंगी, और हमारे शारुनूर अंसारी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, सोनू जी हैं, गंगाधर सावंकर जी हैं, गौतम राय जी हैं, और जितने भी इस कार्यक्रम को लाइव श्रोता सुनेंगे सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैम जी।
0: जी, चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: श्रोताओं, ये था आज का फोन इन चाहत। जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि कृपया 4 हफ्ते बाद हमें कॉल करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में मौका मिल सके। और जिन श्रोताओं के कॉल नहीं लगे हैं, वो फोन इन चाहत के लिए अगले हफ्ते शुक्रवार को 3 बजे कॉल कर सकते हैं। और आपको हमारा नंबर पता ही है, 2221060 और 2226666। एसटीडी कोड लगाना ना भूले, एसटीडी कोड है 07782। तो श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी नए गीतों और नई फरमाइशों के साथ।
1: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति थी तृप्ति परिडा की, संयोजन था चंद्र ऋषि ठाकुर का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
4: Come on boys, let's go practice.
5: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
4: ये तो बैंक को कंप्लेन करना।
5: बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
6: तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
7: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
9: माटी की सौंधी खुशबू के साथ आकाशवाणी।
10: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
9: या फोन करें 222150 या 222400।
11: 222150 या 222400।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:55 होने को है। थोड़ी देर बाद 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम,
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैक चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैक।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
12: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका, मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
12: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
13: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
12: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
13: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
12: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
13: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
12: अनिमेश जी,
7: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं, तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
12: अच्छा देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
7: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
12: गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे?
13: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
12: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
13: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
12: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी, और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा।

0: में कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूं जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
1: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप मन ले जुरिया के मोला बहुते खुशी होवत थे। देश के आने आने हिस्सा मा हमर देश के लोगन मन देश हित मा समाज हित मा ऐसन अद्भुत काम करत हैं, और जब उनखर विषय मा सुनथन त हमन ला एक नवा प्रेरणा मिलथे। आज कार्यक्रम के शुरुआत मैं एथलेटिक्स मा देश के ऐसने उपलब्धि लेकर हूँ। कुछे दिन पाछू झारखंड के रांची मा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुईस। एमे करीबन 800 एथलीट मन हिस्सा लेन देश भर ले आए रहिन। ये दौरान चार आने आने आयोजन मा चार राष्ट्रीय कीर्तिमान टूटीस। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, ये संगवारी मान आने आने श्रेणी मा नवा कीर्तिमान बनाइन। मैं सबले पहली तो ये सबो मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, एक आयोजन जेखर देश भर मा बहुते चर्चा हुआ थे वो है 100 मीटर रेस, 100 मीटर के दौड़। खाली 2 दिन के भीतरी पुरुष 100 मीटर के दौड़ मा राष्ट्रीय कीर्तिमान 3 घाव टूटिस। जेन 2 जन एथलीट मन ये कमाल दिखाए हैं वो हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं सोचे ये पई मन की बात मा ये दोनों खिलाड़ी मन ले गोट करे जाए। अनिमेश जी जोहार, गुरिंदर वीर आप मन लग घलो जोहार, सत श्री अकाल।
2: जोहार सर।
3: जोहार सर।
1: अच्छा भैया, आप मन ता बहुते बड़का उपलब्धि पाए हो। आप मन के जोड़ी हा घलो बड़का कमाल करे है। हमन संगीत मा ता जुगलबंदी देखे रहें, फिर चुनौती मा अब जुगलबंदी होते कि एक घाव एक झन चुनौती देते, फिर दूसर उही चुनौती ला उठा लेते, फिर तीसरैया घाव कर लेते। बहुते रोचक विषय रहे है आप मन के। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के सुनैया मन ला पता चले कि आप मन के विषय मा वो मन ला जानकारी हो। आप मन जेन पराक्रम करे हो ओखर पता चले।
2: जोहार सर, मोर नाव अनिमेश कुजूर। मैं 200 मीटर और 400 मीटर के राष्ट्रीय कीर्तिमान धारक हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ के रहैया हूँ सर, और अभी मैं उड़ीसा ले खेलता हूँ। मैं पाछू बच्चर एशियाई पदक और विश्वविद्यालय खेलकूद पदक लेके आए हूँ, और मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करे हूँ जब मैं स्कूल ले पास हो रहे हूँ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर ले पास हुए हूँ, और मैं पहली फुटबॉल खेलत रहे हूँ। अब मोर दाई दादा मन कोविड के बखत मोला थोर बहुत छूट देवत रहिन कि तैं बाहर जाके दौड़ ले खेल ले। ता जब कोविड खत्म होए लगीस तब मोर फुटबॉल के दोस्त मन मोला कहिन कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होइया है, तैं घलो भाग ले। और मैं भाग ले, और मोला पता नहीं रहीस कि वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर के चयन हुआ थे। मैं वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुए, और आज मैं भारत के प्रतिनिधित्व करत हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में।
1: औ गुरिंदर वीर सिंह जी का है?
3: जोहार सर, मोर नाव गुरिंदर वीर है, और मैं भारतीय जल सेना मा पैटी ऑफिसर हव, और मैं भारत के सबसे तेज धावक हव। अभी मैं 100 मीटर मा 10.09 के राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाए हव, और मैं पहली भारतीय हव जेन 10.1 के बाधा के नीचे भागे है। अब मैं प्रयास करत हूँ कि मैं ट्रैक और वर्दी में घलो अपन देश के सेवा करो। मोर दादा और बाबा दोनों खेल कूद वाला रहिन। ता हमर भारत के संस्कृति है जब भी कोनो त्योहार आते जैसे दिवाली, जैसे नवा बछर, ता हम अपन घर के सफाई करथन। ता मैं अपन दादा के ट्रॉफी और पदक मन के सफाई करत रहो तब मोला वो बहुत अच्छा लागत रहीस। मैं बहुत खुश होवत रहो। तब जब मैं कोनो ट्रॉफी साफ करत रहे हो तब मैं पूछत रहे हो कि भाई ये ट्रॉफी कहाँ जीते रहे हो, ये पदक कहाँ जीते रहे हो, ये फोटो कब के है। तब फिर वो मन मोला अपन कहानी सुनावत रहिन कि भाई मैं यहाँ खेले बर गेऊ, मैं ये राष्ट्रीय पदक जीतेऊ, मैं अपन टीम ला ए में जितायो। तब फिर मैं घलो वो मन ला बोलेओ कि भाई मैं घलो कोनो खेल खेलना चाहत हो। वो बिहनिया दौड़े बर जावत रहिन त मैं उन ला बोलेओ भाई मोला घलो अपन संग ले जाय करो। तब मोला ले के जाय लगिन त वो मन अपन खेल मा जिन सीखे रहिन वो मोला सिखाए लगिन, तब मोर रुचि बने लगिस। मैं उसेन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड टूटत देखेओ, एक मनोरंजक कहानी है। मैं टीवी देखत रहो त मोर दाई टीवी ला बंद कर दीस कि बेटा अभी पढ़े के बेरा हो गए है, तय पढ़। त मैं कहो भाई ठीक है, आप मन मोला टीवी देखे ला नहीं देवत हो, एक दिन ऐसे आही आप मन मोला टीवी मा खोजहू कि देखो वो गुरिंदर दौड़त है। तब मोला घलो खुशी होते जब मोर दाई मोला टीवी मा दौड़त देखते।
1: वाह वाह।

0: सिक्का सिंहजी खून के उल्टी करत रहिन, धूप माँ भागत रहिन, पूरा पूरा दिन प्रशिक्षण करत रहिन, ता वो चीज मोला प्रेरित करत रहिस। मोर दादा मोला प्रेरित करत रहिन कि मैं भागू ता अपन देश खातिर, देश खातिर पदक लावाओ जीताओ। और ये घलो रहिस कि भाई जब मैं 100 मीटर के विधा के चयन करेव ता सबो मन कहत रहिन कि भाई 100 ला झन कर, 100 भारतीय मन के विधा नहीं है, भारतीय मन के शरीर 100 मीटर पर नहीं बने हैं। त मैं और मोर दादा हरदम बोलत रहन कि अभी गुरिंदर ए चयन करे है, हम एकर ले पाछू नहीं हटबो। जेन मन हमन ला बोलते कि भाई हम नहीं कर सकन, हम वो मन ला करके दिखाबो, औ ते करके दिखाबे, मोला तोर ऊपर भरोसा है। त वो भरोसा जब मोर दादा मोर ऊपर करिस, त मैं वो भरोसा ला अपन हिम्मत बना के चलेव। औ आज हर भारती बोलते कि भाई भारती दौड़ाओ।
1: देखो आप दोनों जन बहुते बड़का कमाल करे हो, और खाली 2 दिन के भीतरी आप दोनों जन 3 घाव राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हो। 100 मीटर के रेस में दौड़ना, जैसे गुरिंदर वीर है कहिस कि लोगन कहते कि भारत के लोगन मन के बदन ये काम बर हैच नहीं, अत का अलकर होवत हुए घलो आप मन काम करे हो। तो ये दोनों मन ले मैं जानना चाहूं, और मन की बात के सुनैया मन घलो सुनना चाहिए कि कौन से जज्बा रहीस, का जिद रहीस, का सोचे रहे हो, और कैसे करत रहे हो, ये कतका मुश्किल होते।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं शुरू में जब संघर्ष करत रहे हो सर, कईयो बार संसो में रहे हो कि मैं सही करत हो, मैं सही चयन करे हो, काहे कि हर बारी आप मन नहीं जीतो, कभू कभू आप मन सिखताओ, जब मैं हारे हो, जब मोर सही प्रदर्शन नहीं आईस, जब चोट लग जात रहीस, तब मोर घर वाला मन मोला सहारा देन की भाई कुछ नहीं, एक दिन बुरा चल दीस, एक बछर बुरा चल दीस, त एकर ले जिंदगी खराब नहीं होए, सपना देखना नहीं छोड़न। तब मोर प्रशिक्षक का घलो मोला ये सिखाईस कि अगर तय नहीं करबे त कोनो औं नहीं कर पाही। त ऐसने जब हमर समुदाय हमर तीर तखार के लोगन मन हमला उत्साहित करते ता हमर प्रोत्साहन नहीं टूटे।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मोला ता सबो मन बोलत रहिन जब मैं 2021 मा एथलेटिक्स चालू करेउ, तब मोला कहिन कि देख ए नवा क्षेत्र है, तय कर पाबे कि नहीं, तब मैं कहूँ कि मैं ए क्षेत्र मा घुस गए हौ तक करवे करूँ। मोर दादा घलो हरदम मोला बोले कि तय ए क्षेत्र मा घुसे हस त कभू पाछू मुड़ के झन देखबे, काहे कि सोचते ता सबो मन कि ये करना है वो करना है, फिर करके बहुते कम झन दिखाते, तैं बस यही क्षेत्र में घुसे हस त यही मरेबे, यही माँ आगू बढ़बे, तोला सबो सुविधा सब जिनिस सहयोग हम करबो, पारिवारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सबो चीज हमन करबो, बस तैं मेहनत कर और भारत ला देखा कि भारतीय मन घलो भाग सकते। काहे कि लोगन मन मोला घलो कहत रहिन कि भारतीय मन के जीन्स ऐसे नहीं है कि वो मन 10 के नीचे या 10.1 के नीचे माँ भाग ले सकें या तेज दौड़ सकें, फिर अब हम दोनों जन सिद्ध करे हैं कि भारतीय मन घलो कर सकते, ऐसा कोनो कठिन नहीं है हमन बर, हम घलो सब कुछ कर सकत हन। तसर ये सबो मोला बहुत प्रोत्साहित करते, और जैसे जैसे हम प्रशिक्षण करत हन, हम और अपन समय सीमा ला तोड़त हन, और बाकी भारतीय मन ला घलो ये दिखत है कि भारतीय मन घलो कर सकत हैं, और हम और करबो सर अभी, और हम दोनों जन के चयन कॉमनवेल्थ गेम खातिर घलो होए है, तो वहाँ अवैया प्रतियोगिता में हम और अच्छा प्रदर्शन करबो।
1: अच्छा देखो, मोर मन में घलो एक कौतूहल है, और लोगन मन ला घलो हो ही। मैं सुने हूँ कि आप दोनों जन अच्छा दोस्त घलो हो, आप दोनों जन कुछ ठाने रहे हो का कि तय मोर रिकॉर्ड तोड़ेस तो मैं तोर रिकॉर्ड तोड़ देवाऊ का, पहली अनिमेश बताही।
2: सर जी, पहली रिकॉर्ड 10.18 के रहीस, जेन मोरेच रहीस, और फिर एला गुरिंदर वीर भैया हा सेमीफाइनल में तोड़ देईस 10.17 करके, और मैं फिर ओला दूसर सेमीफाइनल में 10.15 करके तोड़ देऊ। तो ओ बखत जब मोर सेमीफाइनल होइस तो हम दोनों जन खुश होइन कि चलो ठीक, आज रिकॉर्ड टूटिस और चलो हम दोनों जन तोड़ेन, काहे कि वो बखत प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदिता रही थे, फिर हम दोनों जन पहली स्थान के रखे रहें,

0: कल ले पहली हमन प्रतियोगिता बर सऊदी अरब घलो गे रहेन। उहां हम दोनों झन एक कमरा में रहेन, त हम दोनों उहां गोट करन कि भारत के दौड़ ला आगू लेके जाना है और हमरे हाथ में है वो चीज, हम जेन करबो वो आने मन ला प्रोत्साहित करही।
1: गुरिंदर वीर का कहना चाहो?
2: हम दोनों झन निर्णय करे रहेन, हम दोनों झन बने दौड़बो, त सर एक दूसर ला कभू जरूरत होते ता एक दूसर संग खड़े होथन। जैसे अभी रिकॉर्ड करे ले पहली जब मैं रिकॉर्ड करेव फिर अनिमेश करीस, त जब हम वार्म अप करत रहेन त मैं अनिमेश ला बतावत रहे कि अनिमेश वो ब्लॉक सही है, ओमे जाके बैठ, उहां ले छलांग लेबे, हमन वार्म अप यहाँ करबो, यहाँ वार्म अप सही होही, त एक दूसर के मदद करथन त दूसर मा घलो सुधार होते, हमन मा घलो सुधार होते, दोस्ती घलो चाही। फिर मैदान के बाहर है सर, प्रतियोगिता के बाहर है ता हम दोस्त हन, जब हम मैदान में जाथन ता एक दूसर के प्रतियोगी बन जाथन, त ये होते कि मैं एकल ले ज्यादा तेज भागू, मैं एकल ले तेज भागू।
1: देखो आप मन जेन स्पर्धा करे हो ना वो देश के मान बढ़ाए खातिर करे हो, देश ल भविष्य मा ये ठिया तक पहुंचाए खातिर करे हो और एक सकारात्मक भावना ले करे हो, और मैं मानता कि आपके ये जेन खेल भावना है खेलना घलो है, एक दूसर ला चुनौती घलो देना है और फिर आगू निकले के प्रयास करना है और फिर आगू जाए बर एक दूसर के सहायता करना है। ये अद्भुत काम करे हो आप मन, मोर कोती ले आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना और आप मन देश के नाव घलो उजर करहू, मुला पूरा विश्वास है आप मन ऐसने मेहनत करत रहो बहुत प्रगति हो ही, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना।
0: धन्यवाद सर, आप मन के धन्यवाद,
1: गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, ये बखत देश के ज्यादातर हिस्सा मा बहुत गर्मी पड़त है, तेज घाम गरम हवा, ऐसन मौसम मा अपन ध्यान रखना बहुते जरूरी है, पानी पियत रहो, घाम मा अगर निकलना पड़े त थोकिन संभल के निकलाओ। ये दिशा मा सरकार के आने आने विभाग मन जिन दिशा निर्देश जारी करे हैं वो घलो भुलाहू जन। संगवारी हो, हमर यहाँ गर्मी ले लड़े के तरीका कईयों बार रसोई मा घलो मिलते, आप मन घलो देखे हो, जैसे जैसे गर्मी बाढ़ते वैसे वैसे घर के रसोई के स्वाद बदलत जाते, रसोई के प्रकार बदल जाते, कहूँ मटका के पानी निकलते, कहूँ दही जमे लगते, त कहूँ कच्चा आमा उबले लगते, और फिर शुरू होते देसी पेय के दौर। देसी पेय ले आप मन घलो परिचित हो, अगर आप मन उत्तर भारत में जाहू तब बने जगह आप मन ल मिलही आम पना, कच्चा आमा के स्वाद और गर्मी ले राहत घलो। पंजाब हरियाणा जाहू त लस्सी मिल जाही, बड़का गिलास वाला लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाना के संगवारी बन जाते, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू के शरबत, ओखर तो बाते का है, पेट घलो भरे ताकत घलो देवाए। कोंकड़ और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम नीरमोर संबारम और उड़ीसा में बेल पना, वो खाली पेय नहीं भारत के आने आने क्षेत्र के परंपरा के हिस्सा है, और एमे एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के झलक घलो मिलते। और एक ठन बात खचित ध्यान रखू, एमे ले ज्यादातर जिनिस हमार अपन रसोई ले निकले है, हमार खेत खलिहान ले निकले है, कोनो बड़ा ब्रांडिंग नहीं है, फिर पीढ़ी मन के अनुभव एमे समाये हुए है। आप मन घलो गर्मी मा देशी पेय के खूबे आनंद लेवाओ। संगवारी हो, गर्मी के आतेच एक ठन औ चर्चा हर घर मा शुरू हो जाते, और वो है आमा। आमा आम चर्चा के विषय होते, भारत मा शायदे कोनो घर हो ही जिहां गर्मी मा आमा के बात नहीं होत होवे। हर इलाका के अपन आमा, अपन स्वाद, अपन सुगंध। महाराष्ट्र और कोंकण के हापुस, अल्फांसो, गुजरात के केसर, ये ता आमरस के जान हैं। उत्तर प्रदेश के दशहरी और मोर काशी के लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम के खास बात होते, पके के बाद घलो ओखर रंग कईयों बार हरच रही थे। बिहार के जरदालू, जेकर सुगंध दूरे चले चिन्हा जाए। चौसा, मालदा, हर नाव के संग लोगन मन के सुरता जुरियाए है। दक्षिण भारत जावो तब बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल के हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सुवर्ण रेखा। माने ठिया बदलते, आमा के रंग रूप और ओखर स्वाद घलो बदल जाते। और संगवारी हो, आमा के ये यात्रा अब गांव ले वैश्विक बाजार तक घलो पहुंचा थे। आज मन की बात के माध्यम ले मैं आमा के पैदावार ले जुड़े अपन किसान भाई बहनी मन के प्रशंसा करूं। आप मन देश के कृषि अर्थव्यवस्था खातिर आम किसान नहीं, बहुत विशेष हो, ऐसने छाए रहो। संगवारी हो, गर्मी के ये दिन मा ऐसे ता स्कूल मन के छुट्टी होते, फिर मैं एक ऐसन वर्ग के बात करूं जेमे आप मनला प्रवेश लेके मन कर जाही। संगवारी हो, एक स्थिति के कल्पना करो, एक ऐसन स्कूल जिहां लइका मन आथे, युवा मन आथे और सियान मन घलो, जिहां कोनो फीस नहीं लगे, कोनो बड़का इमारत नहीं है, कोनो कक्षा घलो नहीं है, और सबले रोचक बात उहां कक्षा नदिया में लगते। संगवारी हो, ये कोनो कहनी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा मा साजी वाला शेरिल जी ऐसने एक ठन तैराकी क्लब चलावत हैं। अब तक 15,000 ले ज्यादा लोगन मन यहां तौरना सीख चुके हैं। साजी जी हा दिव्यांग लड़का मन ला घलो तौरना सिखोए हैं। ये प्रयास के पाछू एक पीड़ा घलो छुपे है। कुछ बछर पाछू एक नाव दुर्घटना मा कईयों छात्र मन के मौत हो गए रहिस। ये घटना हा साजी जी ला भीतरी तक झकझोर देस। वो मन सोचिन, अगर लड़का मन ला तौरना आवत होतीस त शायद कईयों जान बच जातीस। बस इहे ले शुरू होइस उनखर ये अभियान। संगवारी हो, साजी वाला शेरिल जी के जिंदगी हमन ला एक ठन बहुते बड़का सीख देते। सेवा करे बर बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होए, जरूरी होते एक अच्छा इरादा और सरलक करेगे प्रयास। एखरे दम्मा हजारों लोगन मन के जिंदगी मा बदलाव लाए जा सकत है। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, पहाए दिन मा मुला यूरोप के नीदरलैंड जाए के मौका मिलिस। उहां मैं कईयों ठन बैठक में सम्मिलित होए। इही दौरान एक ऐसन क्षण आईस जेन हर भारतीय ल गर्व ले भर देस। नीदरलैंड मा आयोजित एक विशेष समारोह मा चोला काल के प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत ल वापस सौंपे गईस। ये कार्यक्रम मा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री घलो उपस्थित रहिन। ये ताम्र पट्टिका मन ल लेके मुला देश विदेश ले सरलग संदेशा मिला थे। लोगन मन खुशी व्यक्त करत हैं, गर्व व्यक्त करत हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में घलो एला लेके विशेष उत्साह है। संगवारी हो, ये ताम्र पट्टिका मन ला लेके लोगन में बने जिज्ञासा घलो है। यही पाए के आज मैं एखर ले जुड़े कुछ बात आप मन संग साझा करना चाहत हूं। एमे 21 बड़ा और 3 छोटे ताम्र पट्टिका है। ये मुख्य रूप ले राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला के एक ठन वचन ला पूरा करे ले जुड़े है। एमे आने मंगलम गांव के एक बौद्ध बिहार ला दान दे के उल्लेख है। ये ताम्र पट्टिका मन मा चोला वंश के उपलब्धि के वर्णन घलो मिलते। एखर ले पता चलते कि चोला साम्राज्य के समुद्री शक्ति कत का जबर रहिस, दक्षिण पूर्व एशिया के देश मन संग इनखर संबंध के जानकारी घलो एमे मिलथे। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति मा हम सबो मन ला बहुत गर्व है। संगवारी हो, हमर सरकार भारत के ऐसन अमूल्य धरोहर मन के संरक्षण खातिर सरलग प्रयास करत है। इही क्रम मा ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार मा घलो एक महत्वपूर्ण खोज होए है। यहाँ 3 ठन दुर्लभ ताम्र पट्टिका मिले है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासन काल ले जुड़े माने जाते। विशेषज्ञ मन मानते कि ये शिलालेख 6वां-7वां सदी के है, माने 1400-1500 बछर जुन्ना ये ताम्र पट्टिका मन प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाखा मा लिखाए है। एमे वो बखत के शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी मिलते। संगवारी हो, हम भारतीय मन मा खगोल विज्ञान माने एस्ट्रोनॉमी ला लेके हरदम विशेष आकर्षण रहे है। हमर देश मा आज घलो कईयों सदी जुन्ना वेधशाला विद्यमान है। यहाँ अद्भुत गणितीय खोज होए है। नवचालन हो, पंचांग हो या हमर परब तिहार, ये सब के संबंध आगास और तारा मन ले रहे है। हमर यहाँ एस्ट्रोनॉमी हर पीढ़ी मा कौतूहल जगाए है, एला अन्वेषण बर प्रेरित करे है और आज के युवा मन मा घलो एला लेके बने उछाह दिखते। आजकल आप मन घलो देखत हो, देश भर मा एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी ले लोकप्रिय होवत है। बड़ा शहर ले छोटा कस्बा तक, स्कूल ले बगीचा तक इनखर गतिविधि देखेला मिलते। मुला बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलिस। यहाँ अवलोकन सत्र आयोजित करे जाते। ये संस्था है ग्रामीण क्षेत्र मा एस्ट्रोनॉमी ला लोकप्रिय बनाए के मिशन घलो शुरू करे है। खगोल मंडल नाव के एक टीम है 30 घंटा के एक बहुते नवाचारी पाठ्यक्रम शुरू करे है। संगवारी हो, रात मा तारा मल्ल निहारना अपन आप मा अद्भुत अनुभव होते। एस्ट्रो केरला नाव के एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और कार्यशाला आयोजित करते। यहाँ युवा साथी मन टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स के उपयोग करना सीखते। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब है गीर के जंगल ले कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट आयोजित करे है। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था घलो एस्ट्रोनॉमी के सबले जुन्ना संस्थान मा एक है। यहाँ अवलोकन सुविधा के संगे संग किताब, पुस्तकालय और टेलीस्कोप लाइब्रेरी के सुविधा घलो है। मैं आईसेक के घलो उल्लेख करना चाहूँ। ये एक विद्यार्थी मन द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है, जिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब मनला आपस में जोड़ते। संगवारी हो, अपन शौक बर बखत निकालना और सरलग कुछ नवा सीखत रहना बहुते जरूरी है। मैं युवा मन ले आग्रह करूँ कि कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब ले खचित जुड़े और ये छुट्टी मन मा कोनो तारा घरला घलो देखेला खचित जावें। संगवारी हो, मन की बात कार्यक्रम ला जिन लोगन मन टीवी मा देखत हैं, मैं वो मन ले कहूँ एक वीडियो खचित देखाओ। ये वीडियो पाछू दिन बहुते चर्चा मा रहिस। एमे कुछ लोगन मन बहुत धैर्य ले, बहुत सावधानी ले एक गंगा डॉल्फिन ला बचाए की कोशिश करत हैं। आप मन ले ये जान के आश्चर्य हो ही, ये जम्मो प्रयास मा करीबन 13 घंटा लगिस और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गईस। संगवारी हो, एमे बहुते बड़का भूमिका रहीस भारत के पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के। ये घटना उत्तर प्रदेश के है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गए रहिस। ऐसन बखत मा नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बने ये एम्बुलेंस ओखर बर उम्मीद बन के पहुंचिस। फिर बहुते सावधानी ले ओला बाहर निकाले गईस, ओखर जांच करे गईस, ओखर इलाज करे गईस और ओखर बाद ओला सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दे गईस। एक रकम ले कहन त एक जिंदगी फिर अपन घर लहूट गईस। संगवारी हो, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एला एक चलत फिरत अस्पताल कस तैयार करे गे है। एमे डॉल्फिन ला सुरक्षित रखे के व्यवस्था है, ऑक्सीजन के सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। माने अगर कोनो डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर मा फंस जाए या नदी ले कट जाए तो तुरते ओखर सहायता करे जा सकत है। संगवारी हो, जब हम गंगा डॉल्फिन ला बचाथन तो हम खाली एक प्रजाति ला नहीं बचावन, हम गंगा के जैव विविधता ला बचाथन, नदी के पूरा जीवन तंत्र ला बचाथन और अपन अवैया पीढ़ी खातिर प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर घलो बचाथन। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, आप मन ले बहुत अकन लोगन के नदिया तरिया या कुआं के पानी ले जुड़े सुरता खचित होही। कोनो ला तरिया में तौरना याद होही, कोनो ला संगवारी मन संग तरिया के तीर में खेलना, कोनो ला वो माटी के सुगंध के सुरता होही। ननपन के ऐसन याद जिंदगी भर मन में बसे रही थे। संगवारी हो, ऐसने याद मन ला बचाए के एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला ले आघू में आए है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपन गांव के मनोरमा नदी ला देख के बहुत दुखी होवत रहिन। काहे कि जे नदी ला वो मन ननपन मा साफ और जीवंत देखे रहिन, बखत के संग वो नदी मा प्लास्टिक जमा होय लगिस, गंदगी बाढ़त चले जात रहिस। श्रीमान आकाश ह तय करिन कि शिकायत नहीं करही, एक नवा शुरुआत करही। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गईस। वो मन अपन संगवारी मन ला साथ लेन खाली जाल रहीस, रापा रहीस, झुहा रहीस और सबले बड़का ताकत रहीस, कुछ बदले के संकल्प। ये युवा मन नदिया मा उतरत रहिन, जल कुंभी निकालत रहिन, प्लास्टिक और कचरा बाहर लावत रहिन। कईयों बार एक दिन मा 50-60 किलो तक कचरा नदी ले निकाले गईस। धीरे धीरे मनोरमा नदी के वो हिस्सा फिर साफ दिखे लागिस। तीर तखार के लोगन मन के ध्यान घलो ये काम कोती गईस। लोगन मन मा स्वच्छता ला लेके जागरूकता बाढ़िस। संगवारी हो, ऐसने एक प्रेरक कहनी गोवा ले घलो आघू आए है। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, फिर समाज भर काम करे के उनकर उछाह आज घलो वैसने हैं। उनला मड्डी तोलाब क्षेत्र मा पानी के समस्या बहुत परेशान करत रहिस। वो मन घलो समाधान खातिर काम शुरू करिन। बालकृष्ण जी हा पाइपलाइन बिछाए के काम मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन। एखर ले कईयों घर तक पानी पहुंचिस। जिन परिवार मन ला पानी खातिर रोज संघर्ष करना पड़त रहिस, उनखर बर ये बहुत बड़ा राहत बनिस। संगवारी हो, पाछू महीना मुला एक बहुते अच्छा अनुभव होइस। एखर संबंध मन की बात ले घलो जुड़े है। इही पाए के आज मैं एखर चर्चा आप मन ले करना चाहत हूँ। तमिलनाडु के नागर कोइल मा मोर भेंट एक शिक्षक ले होइस। करीबन 3 दशक पहली घलो मैं वो मन ले मिले रहे हूं। मैं बात करत हूँ गिरिजा अम्मा जी के। ये भेंट के दौरान कुछ युवा विद्यार्थी मन घलो उनखर संग रहिन। संगवारी हो, गिरिजा अम्मा जी करीबन 15 स्कूल चलाते। एमे चेन्नई के जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनखर देशभक्ति के भावना हर भारतवासी ल प्रेरित करने वाला है। वो मन मन की बात ले प्रेरणा लेके देश के अनेक सैनिक मन बर योगदान के संकल्प लिए हैं। एखर बर वो मन अपन सब्बो स्कूल के विद्यार्थी मन ल प्रेरित करिन। वो मन लैका मन ले कहिन कि वो मन वीर जवान मन बर हर दिन 1 रुपया योगदान करें, माने 1 बछर मा हर विद्यार्थी कोती ले 365 रुपया जमा होइस। ये नान नान योगदान ले करीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा होइस। गिरिजा अम्मा जी हा ये पूरा राशि के चेक मुला सौपिन। वो मन ले गोटबात के दौरान मैं महसूस करे हूं कि माँ भारती के प्रति उनखर समर्पण कत का गहिर है। पाछू बछर चेन्नई के पहली हिंदू विद्यालय है अपन 50 बछर पूरा करे है। देश के शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव ला आगू बढ़ाए मा ये स्कूल नेटवर्क के भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं एखर ले जुड़े सब्बो लोगन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ और वो विद्यार्थी मन के घलो विशेष सराहना करत हूँ जेन मन अपन वीर सैनिक मन खातिर योगदान दिए हैं। संगवारी हो, भारत के हर गांव मा हर शहर मा कुछ न कुछ ऐसन होवत है जेन हमन ल प्रेरणा देते। कईयों बार ये प्रयास मन के ज्यादा चर्चा नहीं होवे, फिर जब हम इन ल जानथन त ये विश्वास और मजबूत होते कि देश अपन लोगन मन के शक्ति ले आघू बढ़त है। मोर आप मन ले आग्रह है अपन तीर तखार मा ऐसने प्रयास मन ल खचित देखाओ। जेन लोगन मन समाज खातिर अच्छा काम करत हैं वो मन ल चिन्हाओ, उनखर सराहना कराओ, वो मन ले सीखाओ और हो सके त खुद घलो कोनो अच्छा काम ले जुड़ाओ। अवैया महीना मन की बात मा कुछ और प्रेरक गाथा मन संग मैं फिर आप मन ले जुड़ू। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, जोहार।
3: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।
5: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
6: तो बैंक को कंप्लेन करना,
5: बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं।
7: तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
8: रुक मैं समझाता हूँ, जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
10: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
11: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
12: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
13: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
12: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
13: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
12: डायल कीजिए 8700014242।
13: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। कार्यक्रम रुस रुसा में सुनिए शांति और साथी से लोक गाथा चंद्रकांत राजा।

সরস্বতী কণ্ঠে গো শ্যামা চরণী সয়ে স।

0: कार्यक्रम रुसरुसा में आप सुन रहे थे शांति और साथी से लोक गाथा चंद्रकांत राजा। श्रोताओं, लोक गाथा का अगला भाग आने वाले रविवार को प्रसारित किया जाएगा।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट।

0: का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

कल कल बहते नदियों से निर्विरोध बहना सीखा है, अरावली पहाड़ से डटे रहना सीखा है, सीखा है फूल पत्तियों से जीवन को रंगीन बनाना, खुद को कभी समेटा कभी खुद का किया पल्लवन, मैंने हर रूप में हर रंग में ढलना और ढालना सीखा है। जी हाँ बहनों, स्वतंत्रता हमें उड़ान भरने से कुछ कर गुजरने में जहाँ सहायक है, वहीं वित्तीय स्वतंत्रता वो पंख है जो उड़ान भरने का साहस देती है। अब ये प्रश्न जरूर उठता है मन में कि ये वित्तीय स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। बातें करेंगे, पहले कबूल करें प्रवीणा पॉल का स्नेहिल अभिवादन। नमस्कार बहनों, जिंदगी लंबी हो या छोटी, जो जन्म लिया है वो इकरोस तो जाएगा ही, इसे कोई नहीं रोक सका। और विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, मृत्यु पर उसका भी ज्ञान रुक गया है। तो क्या करें, बस इतना ही कि बिना किसी चिंता के जिंदगी को भरपूरी से जिए। मैं तो ये कहूंगी कि एक लम्हा भी बेवजह जाया ना होने दें, बहुत खुश रहें और सभी को खुश रखें। और बात खुशियों की है तो खुशी किसी भी बात की मोहताज नहीं, क्योंकि ये हमारी अपनी उपज है। कहने का मतलब, जब तक हम खुद ना चाहें, कोई ना हमें रुला सकता है और ना ही कोई हमें हंसा सकता है, ना खुश कर सकता है और ना दुखी कर सकता है। ये हमारी अपनी इच्छा अपनी सोच पर निर्भर है ना सही बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बहनों कि हम दुखी ना हो, ये हमारा अपना निर्णय है, आप जैसा चाहें जब चाहें खुद को ढाल लें। बात वित्तीय स्वतंत्रता की करते हैं, यदि हमारे पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से बढ़कर वित्त हो, कहने का मतलब कि पैसे हो, तो हम इसे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब, यदि हमारे पास अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय बचत व निवेश हो, मतलब हमें अपने खर्चों के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े, इस पर भी विचार कर सकते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए काम ना करते हों। जैसे निवेश से होने वाली आय, ऐसा ही हम कह सकते हैं भविष्य के लक्ष्य बिना किसी दबाव के पूरे हो जाए। एक सरल शब्द में यह भी कहा जा सकता है कि अपने करियर, शौक या जीवन शैली को अपनी पसंद के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र हो, न कि केवल पैसों की मजबूरी में। किसी की गुलामी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, ऐसा जीवन वित्तीय स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है, जो हमें सुख शांति व उड़ान देता है। चलिए बात करने से पहले कुछ गुनगुना लेते हैं कि हौसला मजबूत हो जाए, तुम मिल जाओ और जिंदगी की धारा ही बदल जाए, गुनगुनाते लम्हे खिलखिलाती बहार बन जाए और जिंदगी जीने का मकसद नए रंग में नए रूप में ढल जाए।

0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: इस जानकारी से पहले आपने फिल्म तमाशा से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह को सुना। बहनों, स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं, छोटी सी छोटी बात में भी हमें स्वतंत्रता अच्छी लगती है। कामयाब होने के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन हमारी अपनी स्वतंत्रता दूसरों के लिए बाधक ना बने, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वित्तीय स्वतंत्रता जीवन को नया मोड़ तो देती ही है, मजबूरी से किए गए कार्य और स्वतंत्र दिल से स्वीकार्य कार्य में बहुत अंतर है। फिर जो बातें शांति सुख सुकून न दे, ऐसा जीवन कष्टदायक ही तो होता है बहनों। फिर समय के साथ या समय से थोड़ा पहले किए गए कार्य हमें लाभ ही पहुंचाते हैं और अफसोस का मौका नहीं देते, इसीलिए प्राथमिकता देना जरूरी है। इससे काम में सफलता भी मिलती है और जीवन का सफर आसानी से कटता है। फिर जीवन सफर ही तो है, रस्ते हंसते हुए कटे तो जिंदगी है और नहीं तो बोझ बन जाती है जिंदगी। फिर समय खुशी का हो या गम का कट ही जाता है और सब कुछ एक कहानी एक इतिहास बन जाता है। इन पन्नों को पलटें तो सुखद अनुभव हो तो जीवन सार्थक हो जाता है और हर लम्हा मुस्कुराता है, गुनगुनाता है।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पोर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर की ता।
3: फिल्म खून भरी मांग में बहनों आपने अभी नितिन मुकेश और साधना सरगम को सुना। बहनों, वित्तीय स्वतंत्रता पर आज हम बात कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि आज पैसा कमाना तो बहुत सारी बहनें जानती हैं और उनके लिए फील्ड खुला भी हुआ है, जैसा जिसकी पसंद। हाँ, लेकिन समय मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कार्य कोई भी हो, हाँ, बिना तालमेल के जिंदगी कठिन हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। चलिए कुछ बातें सुनते हैं जूही जोशी से, परिवार और कार्यालय इस वार्ता के तहत।
4: हमारे देश की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाएं हैं। संविधान में इन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं, किंतु अनेक पूर्वाग्रह और लिंग भेद के परिणाम स्वरूप अनेक असमानताओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। लगभग सभी महिलाओं को शोषण व हिंसा का शिकार होना पड़ता है। बहनों, पितृसत्ता ने महिलाओं को हमेशा से उपभोग की वस्तु ही माना है। पुरुषों ने महिलाओं के जीवन, उनकी योग्यता और उनकी कार्यशैली निर्धारित करने की बहुत कोशिशें की, उन पर अपना आधिपत्य भी माना, लेकिन यथार्थ सत्य यह है कि महिला भी पुरुषों की भांति अपनी अलग पहचान रखती है। वह अपने जीवन में उचित चुनाव करने की क्षमता भी रखती हैं। बहनों, शिक्षा के प्रचार व प्रसार से देश में शिक्षित महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वे पढ़ लिख कर नौकरियां करने लगी हैं और कामकाजी महिलाओं का एक नया वर्ग निरंतर प्रकाशित होता चला आ रहा है, जो कि अत्यंत हर्ष का विषय है। जिस समाज में महिला की कमाई को अनुचित समझा जाता था, आज के परिप्रेक्ष्य में उसी समाज की महिला की मेहनत की कमाई से घर चलने लगा है। अब पति पत्नी दोनों कमाते हैं, यह गर्व की बात समझी जाती है। देश में कामकाजी महिलाओं का इतिहास कोई पुराना नहीं है। स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांत से प्रभावित होकर महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए जो नई सोच और नई चेतना पैदा हुई है, वह उसी का परिणाम है। महिलाओं की शिक्षा में जो प्रगति हुई है, उसी ने इस क्षेत्र में लोगों को उत्साहित किया है, जिससे अच्छे जीवन स्तर को बल मिला है। यह तो समय की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, व्यक्तिगत अहम की तुष्टि, समय व्यतीत करने की चाह, ये सभी ऐसे कारण हैं जो कामकाजी महिलाओं के केंद्र बिंदु हैं। बहनों, महिलाओं का जीवन हमेशा से ही संघर्ष और समस्यापूर्ण रहा है और कार्यरत महिलाओं के सामने कुछ समस्या भूमिका संघर्ष की है कि वे अपने आप को परिवार व कार्यालय के अनुसार या अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार कैसे समायोजित करती हैं। निम्न स्वप्रतिबिंब और दोहरी भूमिकाएं कामकाजी महिलाओं के लिए भूमिका संघर्ष पैदा करती है बहनों, जिसका प्रभाव पारिवारिक संबंधों और अपेक्षित भूमिकाओं पर अधिक पड़ता है। कामकाजी महिलाएं आज भी आर्थिक रूप से मुक्त नहीं हैं, क्योंकि जो महिलाएं अपने परिवार की अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं, वे अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने में स्वतंत्र और सहज महसूस नहीं कर पाती हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी इच्छानुसार व्यय करने में स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार वह नौकरी करती हैं, घर का काम करती हैं, सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों में भी उसकी स्थिति पुरुषों के समान नहीं है। इन सब के प्रति उसकी निष्ठा उसके जीवन के स्वरूप के संदर्भ पर निर्भर करती है। और हमारे समाज द्वारा उसका मूल्यांकन बिल्कुल भी अलग परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। व्यवसायिक भूमिका, व्यक्तिगत भूमिका और परंपरागत भूमिकाओं को एक साथ निभाना एक महिला के लिए प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज भी परिवार में अनेक कार्य व भूमिकाएं होती हैं, जिनके निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी एक महिला की ही मानी जाती है। इस प्रकार एक कार्यरत महिला के लिए दोनों क्षेत्रों में समायोजन करना बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। कई लोगों के लिए एक साथ विवाह और कार्य के उद्देश्य को स्वीकार करना एक चुनौतीपूर्ण समय होता है, क्योंकि दो प्रकार के उद्देश्यों की संतुष्टि के लिए दो विभिन्न प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है। एक कामकाजी महिला को अपने कार्यरत जीवन और मां के रूप में दोहरी भूमिकाओं का निर्वहन एक संघर्ष के रूप में करना पड़ता है। एक तरफ अपने कार्यालय का कार्यभार और दूसरी तरफ मां के रूप में अपने संतानों की देखभाल और उनका भरण पोषण करना। इस प्रकार एक कामकाजी महिला अपने कार्यालय के साथ साथ घर और परिवार की भी देखभाल भली भांति करती ही है, फिर भी संघर्ष उत्पन्न होता है। कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ। नौकरी और परिवार, ये दो शब्द वैसे तो बहुत साधारण से लगते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में इन दोनों के महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। बहनों, ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला स्थान परिवार का होता है, लेकिन उस परिवार को चलाने के लिए नौकरी का होना भी बहुत जरूरी है। एक महिला के लिए उसके परिवार जीवन की गाड़ी, जहां सदस्यों के त्याग, प्रेम और परस्पर आदर भाव पर चलती है, तो उसकी नौकरी में भी इन चीजों की आवश्यकता होती है। बदलते वक्त ने महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है और उनकी हैसियत एवं सम्मान में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद अगर कुछ नहीं बदला है तो वह है कामकाजी महिलाओं की समस्या, जो कि है दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ। ये कथन भी सत्यता की ओर इशारा करता है कि महिलाओं पर व्यवसाय का उत्तरदायित्व बढ़ा देने के बावजूद उनकी पारंपरिक भूमिका में कोई काट छांट नहीं की गई है। और ये तथ्य भी सामने आए हैं कि वर्तमान युग में पुरुष तथाकथित स्त्रियोचित कार्य करने में शर्म महसूस नहीं करते हैं और वे गृह प्रबंध में अपनी भागीदारी निश्चितता करते हैं। संक्षिप्त रूप से हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान महत्वपूर्ण है और उनकी प्रत्येक क्षेत्र में जो उपस्थिति और सहयोग है उसे हरगिज नकारा नहीं जा सकता। और आखिर में अपने द्वारा लिखी इस कविता के साथ मैं इस वार्ता का अंत करना चाहूंगी। मैं शक्ति का आधार एक जीवित प्रतीक हूं। मैं शक्ति का आधार एक जीवित प्रतीक हूं, जीवन की मुश्किल राहों में सुलभ पथिक हूं। सभी से है मेरी खुशियां, सभी से है मेरी खुशियां, सबके आंसू मैंने पोछे, फिर भी न जाने क्यों मेरी ख्वाहिशें कोई भी न देखे। मैंने सहा है कभी न कभी थोड़ा कुछ कहा है, शांत नदी की धारा सी अविरल सी बहती रहती हूं, साथ हूं जब तक तो कद्र ना होती है, साथ हूं जब तक तो कद्र ना होती है, छोड़ जाऊं कभी कहीं दूर तो आंखें सबकी रोती है। फिर भी मेरे जीवंत रूप को क्यों नहीं अपनाते, न देते मुझे थोड़ी फुर्सत, न देते थोड़ी राहते। मुझे कैद गवारा नहीं, मैं उन्मुक्त गगन की पंछी हूं, मैं धीमी मध्यम स्वर में लिखी गई किसी की कृति हूं, मैं संसार का आधार और मानव जाति की वंशधार हूं, मैं संसार का आधार और मानव जाति की वंशधार हूं, ऐसा कोई भी स्तर नहीं जहां मैं ना पहुंची हूं। सुलझी सी मेरी जिंदगी को तमाम उलझनों में पिरोते हैं, सुलझी सी मेरी जिंदगी को सब तमाम उलझनों में पिरोते हैं, ये वही लोग हैं जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्यों मेरे शब्दों को मेरे चरित्र से जोड़ा जाता है, क्यों मेरे शब्दों को मेरे चरित्र से जोड़ा जाता है और क्यों मेरी शख्सियत को हर पल तोड़ा जाता है। कहना चाहती हूं सबसे कि मैं अब और जागृत हूं, कहना चाहती हूं सबसे कि मैं अब और जागृत हूं, मैं पहले से अब और ज्यादा मजबूत और ज्यादा एकाग्रित हूं, क्योंकि सिर्फ आज का ही दिन नहीं, क्योंकि सिर्फ आज का ही दिन नहीं, मुझे हर दिन सम्मान से जीना है, इसलिए मैं नारी शक्ति का रूप हूं, मैं नारी शक्ति का रूप हूं।
3: बहनों समय हो चल रहा है, इस समय हमें रसोई घर में जाना चाहिए। और इन दिनों में जबकि हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, लेकिन हमने अपने घर में चारों तरफ से ऐसा वातावरण बना के रखा है कि ये नहीं हो पाता, तो क्यों ना डिटॉक्सिन वाटर का इस्तेमाल करें। इससे शरीर में पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और विटामिन्स की भरपूरी भी होगी और विषाक्त पदार्थ भी शरीर से बाहर होंगे। और इसमें सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम फिट रहेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि डिटॉक्सिन वाटर कैसे बनाए, तो बिल्कुल आप अपने घरों में आपको जो फल पसंद है आप एक कांच की बोतल में काट करके उसे डाल लीजिए, अच्छे से साफ करके छिलका निकाल करके, या जिसको छिलके के साथ खाते हैं वो उसको वैसे ही, और उसमें पानी भर करके 12 घंटे के लिए रख दें और दूसरे दिन भर इसका इस्तेमाल करें। तो बहनों ये डिटॉक्सिन वाटर आपके बहुत काम आएगा। बहनों जिंदगी के साथ मशक्कत है और सफर को अच्छे से जीना है तो स्वास्थ्यवर्धक खान पान करें, खुश रहें, पैसों के गुलाम ना बने, पैसों को अपना गुलाम बना लें। आओ हर पल यूं जिए जैसे बस यही पल हाथ में है, कल किसने देखा है, जो है वही खास है। सफर तो हाल में कट जाता है, वक्त भी जैसा भी हो बीत ही जाता है, लेकिन चाहत है जिंदगी भरपूरी से जीने की, तो खुश रहें, खुश रखें। और इस गीत को सुने फिल्म अंदाज में किशोर कुमार से, और इसी के साथ गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और सफर को पूरा करते रहें। प्रवीणा पॉल को घर आंगन कार्यक्रम से दे अनुमति, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के एक बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। आइए सुने कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
3: करेला कमानी काजे लेहरा पानी कसन होतो रहे तो करेला चो कमानी काजे थामना बीती ओलिया लेहरा पानी नंगत रहे से। करेला चो बूटा मंचो ए गुना है कि ये डेरा कमानी किसी मन ने अधिक शीत सहन करतो बीती होए से। मांतर वर्षा अधिक होने ने उपजन ने घटी बले होए से। बेड़ा कमानी चो सजार नी बूता। करेला कमानी काजे असन भूई के चीना बाना करतो रहे जे भूई खरिया रहो बलो ने अम्ल आरु नमक चो प्रतिशत सामान्य ले अधिक नी हो। भूई चो पीएच मान 6.5 ले 8.00 चो मंजी अरु माटी ने जीवांश चो प्रतिशत अधिक हो जिचोले बूटा मन के पर्याप्त मात्रा ने पोषक तत्व मिरुक सके दे। करला कमानी काजे बेड़ा जतना तो बेरा 200 लीटर बायोगैस स्लरी नहले 2000 लीटर संजीवक खत के बेड़ा ने डारून 4-5 दिन पाछे माटी उल्टा तो नांगर ने जोतून देतो रहे अरु एक हफ्ता काजे बेड़ा के खुला छाडून देतो रहे। इचोले 3-4 हार लगड़ा मारून बेड़ा के सम बनाउन 3-3 फीट जो फरक ने 1 फीट लम अरु 2 फीट ओसार खोदरा बनान सफाय खोदरा मन ने 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट अरु 50 ग्राम कापर सल्फेट पाउडर अरु 200 ग्राम लाखड़ी मिसाउन खोदरा मन के ढाकून देतो रहे अरु बेड़ा ने पानी छपान देतो रहे। पानी दखालो 5-6 दिन पाछे करेला बीचा खोदरा मन ने मंडाते जातो रहे। बीचा मंडातो काजे गोटो खोदरा ने 4-5 ठन बीचा मंडातो रहे। करेला चो नंगत किसी मन बले होए से तो एक बले सुना। पहला है कोयम्बटूर लौंग, दूसरा है कल्याणपुर बारहमासी, असने तीसर किसी माए हिसार सिलेक्शन, असने चौथा है अर्का हरित, असने पांचवा किसी माए पूसा विशेष। दादा दीदी मन काई बले कमानी कर लो ने हुनके हाम के नंगत दखा रखा बले करुक लागे से। तो हम जानो कि करेला ने पानी आरु मिंजानी कसन करतो रहे। दादा दीदी मन करेला चो कमानी ने पानी चो खूबे प्रभाव दखा दए से। ऐका जे समय समय ने पानी देते रहतो रहे। करेला कमानी घाम आरु बरसा दोनों समयाने करतोर होए से दादा दीदी मन जेचो लागुन ये फसल ने लाटा बुटा बले झपके जोटुन जाए से तो समय समयाने ये फसल ने निंजानी करते रहतो राय। असने नगद बेड़ा के जतना तेरलो ने फसल थाने फर फूल खूबे नगद ऐसे करला कमानी काजे नगद कुदरती खत बले बनाउक सकास। ते कुदरती खत बनातो काजे दादा दीदी मन बीचा मंडालो तीन सप्ताह पाछे बूटा ने तीन चार ठन पाना दखा दिलो बेरा 2000 लीटर बायोगैस स्लरी नहले 2000 लीटर संजीवक खत नहले फिर 40 किलो गोबर खत ले बनलो जीवामृत खत के एक एकड़ हिसाब धरुन बेड़ा ने देउन दिया। करला कमानी काजे नगद कुदरती खत बले दादा दीदी तुम्ही मन बनावकला सकास। बीचा मंडालो तीन सप्ताह पाछे बूटा ने तीन चार ठन पाना दखा दिलो ने 2000 लीटर बायोगैस स्लरी नहले 2000 लीटर संजीवक खत नहले फिर 40 किलो गोबर खत ले बनलो जीवामृत खत के एक एकड़ हिसाब धरुन बेड़ा ने देन दियास। और दूसर हार बले फूल तो बेरा फिर एक कुदरती खत फसल थाने लगान दियास। असने ची पहिल फर टूटा तो मूर होलो बेरा 200 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट ने 50 किलोग्राम लाखड़ी मिसाउन फसल थाने छिचुन देतो राय। इचुले फसल चो उपजन अधिक ले अधिक मिरे दे। दगादा दीदी मन फसल के सुरक्षा करतो काजे रक्षा करतो काजे एक चो बले गोटो गोट होए से तो करेला कमानी ने असने तो कीड़ा चो कोप कम होए से मांतर नगद फसल धरतो काजे समय समय ने कुदरती कीट रक्षक चो छिड़काव फसल ने करते रहतो राय। रोग राई और कीड़ी दादा दीदी मन करेला फसल ने रेड बीटल नाव चो गोटोक सुंडी कीट होए से जे नवा नवा बूटा मन के खूबे नुकसान अमरऊ है। एक मरला तो काजे 5 लीटर कीट रक्षक के 40 लीटर पानी ने मिशन हफ्ता ने 2 दिन छिचुन देतो राय। ए रोग के मरला तो काजे पतंजलि निम्बादी कीट रक्षक खूबे नगद रहे से। दादा दीदी मन करेला कमानी थाने रोग मन बले होए से और ये गोटोक रोग आए पाउडरी मिल्ड्यू रोग। ए रोग करेला ने एरी साइफी सिकोरी सीएटम चो कारण ने होए से। ये रोग कवक चो कारण ने होए से। ये रोग के मरला तो काजे 5 लीटर टरका मही पानी ने 2 लीटर गौमूत्र बलो ने गाय चो पिसाब और 40 लीटर पानी मिसाउन ये घोल चो छिड़काव करते रहतो राय। सर लगा 3 हफ्ता ये ओखत के छिचते रहलो ने ए रोग ले करेला फसल के बचाव के लाए सका से। असने गोटोक और रोग होए से करेला थाने ये आए एंथ्रेक्वनोज रोग। करेला कमानी ने ये रोग सबले ज्यादा दखा दे से। ये रोग ले बूटा मंचो पाना ने करिया छापा हो जाए से। ये रोग के मरला तो काजे एकड़ हिसाब ने 10 लीटर गौमूत्र ने 4 किलोग्राम आड़ू चो पाना और 4 किलोग्राम नीम पाना संगे 2 किलोग्राम लसुन के उखरौन भाती ये चो पानी के ठंडा करून 40 लीटर पानी संगे मिसाउन भाती फसल ने छिड़काव कर ले फसल ले ये रोग के एकदम नगद होकल सके।
2: अभी आपने सुना बेड़ा खाड़ा चौघोट का पुनः प्रसारण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। 1:10 हुए हैं।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आज इस कार्यक्रम में आपके पत्रों के साथ मैं उपस्थित हूँ, आपकी रेडियो साथी प्रीति गुप्ता। स्वीकारें प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आपको फिल्म कटी पतंग का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। फरमाइशी खत हैं आपके, भाटापारा से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बाणी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वैदेही जोशी। जगदलपुर से पूनम नायडू, नागपुर से कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण शर्मा, आशीष कुमार शर्मा, अमृता शर्मा। कर्ता बेरडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री दोमने, वैष्णवी दोमने, चंचल दोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। फुटानी चौक से हैं ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा, बीके सुरगनिया। पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा। मध्य प्रदेश रतलाम से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। मध्य प्रदेश खंडवा से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ललित, मनीषा, शुभम, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, काना, आदित्य देवांगन। बमर चाटी डी से हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, कुमारी मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन। गोगावा जिला खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफार खत्री। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और टिम्पल देवांगन।

कसूर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत अलका याकी की आवाज में। समीर के शब्द संयोजन में धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। अनुरोध है आपका। राजनगर मधुबनी से हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एमके गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, कृष्ण कुमार ध्रुव, तामनलाल भारती, झावेंद्र कुमार ध्रुव। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरूफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। पीपरपारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर। जुमरी तलैया से देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, झकुली इंगोले। कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन एले, नवदीप एले। शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर। दिल्ली शहर मोरी रोड से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

अगला गीत है आनंदराज आनंद के स्वर में, फिल्म का नाम है मस्ती। गीत समीर का है, संगीत दिया है आनंदराज आनंद ने ही, और पत्र लिखे हैं आपने मूर्तिजापुर से है हारून शाह शाजिया बानो, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका गजबी है, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी है, महामायापारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, अनूपपुर से हैं श्रीमती जयमंत्री, कृष्ण केवट, अंजलि केवट, रेणु केवट, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, तुषार, किशु, आनंद जोशी, अभय गुजराती और भवानी सिंह बैस। मयूरी परिसर भोपाल से हमें खत लिख भेजा है श्रवण सिंह गिनारे, जगदीश सिंह गिनारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह गिनारे, संजय पगारे, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक और समस्त बत्ता परिवार। ये हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से, सुभाष वार्ड भाटापारा से हैं एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित, अमीन यादव, युवान, धावेश यादव, हतवंत नेवदा से हैं सेवकराम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव, बीसलपुर पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा, हसदा अमनपुर से हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।

हाँ, मैंने भी प्यार किया है। सुनिए इस फिल्म का गीत अलका यागी की आवाज में। संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश धैर्य, आराध्या। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकर, शबाना आलम, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, नाज प्रवान, चांदनी नाज। ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नित, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी। छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से हैं पेंटर रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत, टिंकू हिंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र हिंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम हिंगोले। अशोकनगर हिंगोली से दीपाली राजू ठोके।

पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, नागेश्वर नगर माटे गांव से शेषराव बोबडे, सुवर्णा सुनाजी, सीताराम शुभम बालाजी बोबडे, वेणुताई वैष्णवी बोबडे, नावकीकार मातोराम भुसारे, पांगरा सिंधे हिंगोली से हैं सुनील जबडे, टेलर आरडी इंगोले, देव किशन इंगोले और चांदू बलखंडे, बेडी से है हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनिया करमकर, सतना बिल्डिंग जबलपुर से अनीता तिवारी, अंजना तिवारी, बीना तिवारी, ज्योति और गौरी, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, ताज देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा।

अलका याज्ञिक, सोनू निगम और राम शंकर की स्वर में सुने फिल्म जानवर का गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने। चाहत है आपकी। कुम्भार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, राजी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। दंतेवाड़ा बचेली से हैं बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज सेन, रितिका सेन, पोषण सेन, भुवनेश्वर सेन और समस्त सेन परिवार। झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई साई गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती, कुमारू निशा, रेशमा, प्रीति और देवन जी। बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रम्बिका, लीना, अंश और आशुतोष अंगारे। फरड्डी बालोद छत्तीसगढ़ से हैं मंतुराम यादव, चित्ररेखा यादव, साहिल यादव, शिवम यादव, केशव यादव, माधव यादव, राकेश यादव, रितेश यादव, पोषण यादव, नेत्राम यादव, संतुराम यादव और विजय यादव। बोरखेड़ा उज्जैन से हैं विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूडत। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण गरोवर, रमेश मिगलानी। बुराला धरण मालेगांव से हैं दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका घयाल, गजानन घयाल। गीदम रोड जगदलपुर से हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति राव, आनंद राव, मनीषा राव, नानू राव, रोहिणी और राधिका राव।

हिमेश शमिया के संगीत से सजा गीत सुनिए उदित नारायण और अलका यागी के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है इश्क है तुमसे, पसंद है आपकी। डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, सोनम, लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीर श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। बोटसरा नैला से है प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राहे, महराज जहां। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह, ऋषभ सिंह। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू रोशनी और अजय गंगराड़े। लक्कर बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। गांधीबाग अकोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर। महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, रऊफ भाई, शहीद भाई, मुस्तवा खान। गौतम नगर नांदेड़ से हैं प्रभाकर झोंदले, आरती झोंदले। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत और नीरज रावत। करपावन बस्तर से गेनू राम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष बघेल और ईशान बघेल।

हम प्यार तुम ही से कर बैठे। अगला गीत है इस फिल्म से, आवाज है अलका यागी की। गीत के बोल हैं शाहीन इकबाल के, तर्ज बनाई है राम लक्ष्मण ने। फरमाइशी खत है आपके, घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। ढांडी नांदुरा महाराष्ट्र से हैं संदीप बाठे, श्री कृष्ण बाठे, अमूल्य बाठे। रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, रेशमा तिवारी, सोनम और आदिया। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लूल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। गुमला झारखंड से हैं एस एम जावेद, शगुप्ता अंजुम। गोरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामनी कर्ष, यश कर्ष। यवतमाल विदर्भ से संतोष खटसे, विनोद खटसे। औरंगाबाद से हैं राजेश शाबिल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। कुर्मीपारा बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमल कांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। छोटी बलिया करजत से हैं नुरैशा अहमद, आमना असरीन, इमरान इकबाल। शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। सनावद मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। यहीं से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार।

तो श्रोताओं, लीजिए आप इस गीत का आनंद और दीजिए मुझे यानी अपनी रेडियो साथी प्रीति गुप्ता को कार्यक्रम श्रोता सुमन से अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर, पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना।

0: रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
2: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
4: दादा दादा दादा।

0: जुहार बंडकू जुहार
1: जुहार ना लुला दादा जुहार।
0: और इच्छी संग संगे कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संगवारी मन के मैं लुला
1: मैं बंडकू
0: आमी दुनो करूं से
1: जुहार लुला दादा।
0: हाँ हाँ
1: तो आमी जुहार बेट कर लू ना ने।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो आमचो जन भाई बहन मन होए सोत ने।
0: हाँ
1: उमन चो सब लगे कहीं ना कहीं कला होए से ना ने।
0: हाँ हाँ
1: हाँ बोले ने उमन चो भले कहीं बल बुता करो।
0: हाँ
1: बोले ने खेती बाड़ी बल करो गीत गोविंद बल करो नाच गान बल करो ने।
0: हाँ
1: सब कुछ कला है।
0: हाँ हाँ और देख आम के कहे कि काम बुता हो नहाल फिर दूसर पहले आम चो जीवन ने काम बुता तो करुक ची लागेस ने
1: लागेस ना।
0: और खिंडी का दक आम के गीत गोविंद नाल पर नाचा डगा होलो ना हालो आम चो मन खिंडी का हरिक नी लागे ने
1: हरिक नी लागे।
0: हाँ उन कारण ने आमी कहे कि दिन भर काम घर जो काम बुता तो करूँ आम और कोनी लग बिया होली टीका होली नाल पर अस नी बोले नाचा डगा होली बोले नाम के खिंडी नाचुक नाचुक भाई से ने और तेब खिंडी काम चो दे हाथ भाई बोल खिंडी चंग चंगा हो से और उसनी आम चो मन बोल खिंडी हरिक लागे से
1: बोले ना जो नाम चो भाई बहन हो सो दिन भर तो काम बुता बोल कर सोत ने।
0: हाँ हाँ
1: और जैसे घाम बेरा होली बेर पोस्तों के जैसे टीवी लगी होली रेडियो लगे होली
0: हाँ।
1: गीत गोविंद सुन सोत ने।
0: हाँ हाँ
1: अरे जो नाम चो जे गीत गोविंद बोल सोच दादा
0: हाँ।
1: एबेल नो आए
0: हाँ।
1: आगे ले बोले ने।
0: हाँ हाँ
1: मैं आमी आम पीला बोल रहा हूँ देखू ना
0: हाँ।
1: जोन खेती बाड़ी ने आम चो दादा दीदी मन बुदा करोत नहीं ना।
0: हाँ हाँ
1: भाई बहन जोन बोल जात
0: हाँ।
1: उपता बोले भूती करते करते बोले मिंजा तो बेरा रोप तो बेरा बायले मनत नहीं ना पक्का गीत गावत ना।
0: हाँ बोलो ने उनमन गीत ने बोलो ने कहीं नहीं बल सांग
1: कहीं नहीं बल सांगो।
0: हाँ उन सब आए सुन लो ने कहा है कि आम के बुता कितली कर ले बोला आम के थक लो सन नहीं लागत
1: थक लो सन नहीं लागे
0: हाँ।
1: क्योंकि उन जो गीत गोविंद उन कात कहानी है नहीं
0: हाँ।
1: जीव के भेदुन जाए ना
0: हाँ,
1: ने
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो मन के थका नहीं लागे
0: हाँ।
1: कितली बुता कर ले बस दिन भर कर सोच
0: हाँ,
1: ने।
0: हाँ, हाँ। और ये भी देख ये भी बोलो ने आम चो ये भी चो जमाना बोलो ने ये भी चो युग ने आम चो कला बोल तो बीती का है कि खूबे बड़े विकसित होली बोलो ने और बड़े बड़े बाजा मोहरी बड़े बड़े हाँ बोलू अथ हारमोनियम और तबला और ये सफाई भी तो होली ने मात्र तक आगे ये सफाई नहीं रहे फिर बोले आमचो लगे का है कि आमचो पीला मन लगे बोले और सियान मन लगे और जुआन लग बोले कई ना कई कला रहते ची रहे ने। हाँ कसन बोलो ने कोनी कोनी ये बांसी बल फुकत्रो नाल पर बाजा मोहरी बोले और उस नीचे तक कोनी कोनी ये बल्लो ने आमचो ठुड़का मंदर ये सब आई बीती मन का है कि हुन मन बजाते बोल रहो ने।
1: हाँ अरे बोल बजाए सोच बोले।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और मैं देखे ना दादा जसन एबे आमचो जो गांव करे दादा दीदी मन भाई मन लग बल कला से सहरिया मन लग बल कला ने। लेकिन जो सहरिया मन चो जो कला है नहीं ना उमन आप लोग जो मंच लगे अमराय सोत मंच और आमचो अभी जो गांव भीतर जो भाई बहन मन आसो जो गांव भीतरे भीतरे आसे उमन आप लोग कला के बोले ने सब सब सब पूरी अनुक नहीं सकतो ना उमन के मंच नहीं मिले से क्योंकि उमन लग असन सुविधा नहीं आए ने। लेकिन एबे थोड़े समय बदल ली आजकल गांव ने होली पारान होली टीवी असन होली मोबाइल असन होली ए मने आमी आम जो कला है गीत आए गोविंद आए चित्रकारी चित्रकारी आए मूर्तिकार है जोन बोले आए उनके आमी वीडियो बनान बाती जैसे सोशल मीडिया बोलवत नहीं ना व्हाट्सएप होली फेसबुक होली ट्विटर होली इंस्टाग्राम होली ए मने आप लोग कला के आमी देश विदेश तक बोले लोग मन के दकाक सकू ने।
0: पक्का गोट के मूर्ख रहिस कसन बोलो ने आमचो जो न ये बोलो ने आमचो गांव पारा है और जुगे करू आमचो बस्तर जिला बोलुआत तो बस्तर जिला चो जितलो बोले आमचो ये कला और जो न जसन की मूर्ति कला होली उसनी ची ये और बोले बाजा मोहरी और ये सपाई आसे नहीं तो

0: ए सपाईक दत्तो काजे काय की ये आमचो देश लेची नाही बाहेर देश लेवल काय की त्याचं कला बोललो ने कलाकृती मन के दुखला ये सो तो ये कलाकार जोन भाई मन आसो ते मन जो कला के और ये मन जो जोन बोले हुनर आसे हुन के काय की आम के गांव पारा ने बोल कोनी कोनी असन कला मन के जान सो जे के फुरियान तो रहे हाँ अरे भी बोली तू इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब काय मन होइस नहीं उता बोले काय की आम के डालुक बल तो रहे और नानी सुनी कला मन काय की ये भी आम दुखू से बड़े कला मन चो कारण ने हुन किंडी का आजकल दुखुकलाई नी मिरे जसनी बोलसत की आगे बोलत की राम बाजा बोलत उसनी चिगोटो कुंदुम बोलत ये विधि मन के का है दुखुकलाई नी मिरे से उन्हीं कारण ने कहा कसन बोल लेन हुन मन के बोलो ने सही जगह नी मिरली सही मंच नी मिरली और असन और बोले कई किस्म जो कला मन आसे उनके हम ध्यान नहीं देवा हम जो गांव पारा जो भाई बहन मन ध्यान नहीं देते तो उन कला मन का है कि पास दख तो काज बिल नहीं मिरे और उन हाजुक लाए सके
1: हाँ तो आम चो जो कलाकार जो भाई बहन मना से असन कला मन के आम के नहीं भूलक तो रहा है
0: हाँ।
1: कौन लगे गांव पारा असम कलाकार आसोत
0: हाँ।
1: उमन फूरी एक नहीं सकसोत
0: हाँ, हाँ।
1: तो असन कलाकार भाई बहन मन के आम के फूरे आन तो रहा है
0: हाँ।
1: उमन के थोड़े हम सहयोग बोल करते रहे कि भाई आम चो जो कला है गाँव चो आम चो जो रीति रिवाज फूर करती बेरा जो कला है कला के आम नहीं भूल का तू चो कला थोड़े हम बोल सहयोग करून बात फूरी आन लागू दे असन बोल के आम के बोलते रहे
0: ये जो नागे जुग चो जो ये गीत बिंदा है आगे जुग चो कला मनाए तो हुन मन के का है कि आगे चो सियान मन ये बेले बोले हुन मन का है कि गाहुन बती सुना हुआ और बोलो ने ना कही नहीं असन धंधा असन उन मन लगे कई किस्म जो कला से
1: है ना
0: आम के का है कि हुन सियान मन ले आम के ध्यान दे सुन तो रहे और हुता काय ज्ञान आसे हुन के बोला आम के किटिक समझ तो रहे और ये बीच बोलो ने आम चो विकसित कला बोलो ने का है कि हुन शहर मन वाट ले जुगे अमरली से मानतर आगे चो कला मन का है कि गाँव ने चिया से तो हुन के बल का है कि आम के उनके बल शहर तो कमरा तो रहा है और उनके बले आम के जान तो रहा है कसन बोलो ने ये पुरख ती दिन जो कला मनाए तो ये तो रेली ने
1: है ना
0: हाँ।
1: तो मैं बोलते ने लूला दादा
0: हाँ।
1: ये हम नगरगोड़ के तो भाई बहन लग अमरालू ने
0: हाँ।
1: तो आम चले गोड़ो का जहाला हासे ना
0: हाँ।
1: ये जहाला बोले आम सुनो
0: हाँ।
1: और भाई बहन बोले सुनाओ
0: हाँ आले सुनो
2: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ
3: हाँ यार पत्रकार जो हूँ
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो
3: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ
2: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो
3: क्यों
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है
5: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेनतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितम्बर 2025 ले लागू हो दे
6: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 से 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 से 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आम चो फोन नंबर आए 07782226666 फोन इन किसानवाणी आपन मन चो सवाल आपन मन चो कहानी खेती बाड़ी

0: ಮತ್ತಾಂಕ್ ಜನವರ್ಕಿನ್ ಇಲಾಜ್ ತಗವೆಂಡ್ ರಾಹತ್ ದೊರ್ಕನದುಮ್ಮಿದ್ ಮಿಂದೆ ಇವು ಪೂನಾ ಮೋಲತೆ ಗ್ರಾಹಕ್ ಲೋರ್ಕ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲೋರ್ಕ್ ಫಾಯ್ದಾ ದೊರ್ಕಿತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತ ಕೊಂಡೆ ಪೂನಾ ಮೋಲ 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ದಿನ ಲಾಗು ಆಯನದ್ ಮಿಂದೆ
1: हाँ दग बोंड को
2: है ना
1: दग तो आमी तो नगद गोट मन के भाई भाई मन लगम रान दिलू ने
2: हाँ।
1: और असनी ची दग आमी काय कला और कलाकार कार्यक्रम भीतरे काय कि कई किस्म चो कला और हुनर मन चो गोट के तो आम सांग दे चिरू हमने
2: हाँ।
1: और उसनी ची दग काय कोनी ना कोनी कलाकार भाई चो संगे उन मन चो काय काय हाँ कला मन के आम चो बोलो ने हुन मन कला के हुन गांव समाज ने हमरा ला उन भाई मंचु बारे बोले आमी सांग तरु हमने उसने जी आज जो कलाकार बोलो ने भाई आतो नाथ झाड़ूराम देवांगन ने और मन तक खूबे बड़े ये कलाकार रला बोलो ने ये पंती नाच बीती ने तो ये मन पहले का है कि उसने हुन मन खूबे कला चो क्षेत्र ने बोले नाव कमान भाती आप लो नाव के पूरी हान लने
2: हाँ और जो बोली नहीं दादा दे झाड़ूराम देवांगन
1: हाँ
2: ये असन आमची असन छत्तीसगढ़ चो बड़ो गांव ने रला ने
1: हाँ हाँ
2: और एक छत्तीसगढ़ चो गांव लोग बल जान सो आम चो बस्तर जान सो देश चो लोग जान सो विदेश लोग लोग के जान सो ने हाँ हाँ
1: हाँ
2: क्योंकि ये बोले असनी थोड़े बोले नानी परिवार ने जन्म धर रलो
1: हाँ
2: और ये चो जो बोले ने पीला बेहरा ले चो जो माए बाप बोले ने बाप रहे नहीं असनी गीत गोविंद ने बोले उन रुचि धरत रहे
1: हाँ।
2: तो आप लोग बाप तक दगुन भले ए बोले और कला ने थोड़े रुचि धर लो ना
1: हाँ
2: हाँ हाँ और ये हम चो जो छत्तीसगढ़ चो गड़ो गांव आए बुलवात भिलाई शहर
1: हाँ हाँ
2: उन चो एक बासी नाम चो गांव ने चो जन्म हो रही ना
1: हाँ हाँ
2: हाँ और 9 साल समय भी रहे चो माए बाप ना देहांत होने जली
1: हाँ
2: हाँ हाँ तो एक छोटे उम्र नी एक माए बाप चो आप लोग काय बोले सर ले साया उठले ने बड़ा परेशानी हुए से ने
1: हाँ हाँ
2: तो ये बड़ा मुसीकत ने आप लोग बोले काम बूता करुन बाती संगीत क्षेत्र में बोले रुचि रखते रहे
1: हाँ
2: तो ये 12 साल जो उम्र ने नहीं ना 1964 ने भोपाल जो आम चो जो पहले छत्तीसगढ़ भोपाल गोट की संग रली
1: हाँ।
2: उताले आकाशवाणी चो रेडियो ले नहीं ये मन फर्स्ट बार आप लोग कला के गावला
1: हाँ।
2: और सुनाला
1: हुँ।
2: ये जो झाड़ूराम देवागन उन्हीं का जे एक अमी जो पंती नीचे होली और पंडवा नीचे गुरु बोल बोलो से हाँ
1: तो ये मन का है कि इतलो आप लो जो न बाप माए बोले बोलो ने नानी उम्र ने हुन मन बोलो ने हुन स्वर्गवास होला ने
2: हाँ।
1: फिर बोल का है कि आप लो कला के हुन मन आगे बढ़ा उन भाती इतलो बड़े नाव कमाला
2: कमाला
1: हाँ।
2: और ये आम चो जो छत्तीसगढ़ ले बाहरी बोले बोलवाते ना जसन लंदन
1: हाँ।
2: जर्मनी
1: हाँ।
2: इटली फ्रांस अमेरिका इंग्लैंड ये जगह बोल जवन भाती आप लोग कला के दकाला
1: हाँ
2: हाँ और जो एमन चो जो कला है नहीं महाभारत चुपरे बोल रही और ये जो मन जो बोल सी तो पंती नित जो राम चो जो छत्तीसगढ़ चो सतनामी समाज बीता मन एमन एक त्योहार चो रूप ने बनवात और ना ये नित्य बोल करुआत
1: हाँ।
2: तो एमन ने बोले खूब भाग धरला और देश विदेश ने चो नाम के और चो क्या बोला दखाला
1: हाँ हाँ। तो इतलो बड़े मन का है कि कला चो क्षेत्र ने बोलो ने देश विदेश ने नाव कमाला उन्हीं कारण ने कहा है कि मन के एक आम चो जो सरकार बाट लिखा है कि पद्म श्री सम्मान ले बोले उनके सम्मानित करला
2: हाँ।
1: तो असनी ची का है कि ये मन बोल का है कि नानी असन कला के ध्यान देते देते सपाए के खिंडी का सीखते गेला ने
2: हाँ।
1: तो असन सीखते गेलो कारण ने कहा है कि उन मन के देश दुनिया चो लोग जान ला और बोलो ने इतलो बड़े सम्मान बोले उन मन के मिरली आमी कहा है कि नानी सुनी कला के बोले आमी नी सीखवा तो हुन का है हुता एले पर हाजुन जाए
2: हाजुन जाए
1: उनका आम के सीखते सीखते आम के बड़ी चीज मन के फिर उता एले आम के जानकारी होते जाए
2: हाँ।
1: दे तो आम के कहा है कि सीखते रहो तो रहे तो सीखते रहे इनका है कि आज ही नाले काल की काम ये दे तो हुनी ने कहा कि आम चो गांव पारा नहीं बोले आम चो और बोले कलाकार भाई मन मासो तो उनके आम के कहा कि ये ता आम के कई फायदा नहीं हुए बोलून बाती आम के उनके छाड़ उन देवा तो उनका है कि उतार हाजुन दे दे उन आगे नहीं बढ़े
2: नहीं बढ़े
1: तो आम का है और बोले काम बुता के करते करते आप लोग जीवना ने और बोले काम बुता करते करते हुने नानी कला और नानी हुनर के कहा कि उनके बोले आम के सीखते रहते रहे
2: बोले ने आप लोग मार कमाई धमे बोले होते हाँ। रहे अरे बाटे आप लोग कलाक बोले हाँ। पाट पाट
1: नेतो रहा है जहाँ मौका मिले से उता जसन की प्रशिक्षण होली ट्रेनिंग होली नाल हाँ। कोनी लग फिर और भाई मनसंग समूह बना लू नाल पर जहाँ होली बन नी भूल

0: तो कहाँ ना कहाँ काम ये देखी तो असन हुए से तो भाई बहन मन के लेख करून भाती आप लोग कला के आगे बढ़ात रहे ने
1: तो लुला दादा
0: हाँ
1: नंगत गोट मन की अमी ने भाई बहन लगे अमरा लू ना ने
0: हाँ
1: और मैं बोलते रहे ना तो अमच लग बोले दादा दीदी भाई बहन मन का जे गोड़ो गीत गोविंद बोले धरु न मरलू उसने तो ये गीत गोविंद के सुना तू आराम बोल सुन तू
0: हाँ आले ते भी गीत के सुनू तब पास गाँव वाले भाई चुनाव के पास सांगवा

0: तो बोन को
1: है ना।
0: दक्कित लो ये नगद गीत तो रही ने
1: हाओ
0: तो ये गीत के 44 कसन कित
1: चिता
0: कोई
1: लेना एक काय सुंदर गीत की गा तो धन सिंह और उमंचो संगवारी मन
0: दक गीत का है कि एक हार सुन ले बल्लन फिर पीला उन बल्कि ढिखरीक लग गए ने
1: हरीक लागू है ना
0: तो उन कारण ने कहा है कि और बल गोट गीत रलो ने कहा है कि अच्छा रहती ने
1: है ना।
0: तो ये गीत के बोले आले सुनू ता फिर गावलो भाई मन के पास है सांगवा ने
1: हाँ
0: वाले ते भी सुनू
1: सुनो।

0: हाँ दक बोंड को
1: फाइनल दादा।
0: दक कितलो ये नगद गीत रे, और दक के गीत ने कहा है कि लहरा पानी और सब गोट के सांगत रहो दक।
1: हाँ ना,
0: हाँ आजकल दक लहरा पानी बल मारे से और करा बल पड़े से और दक खिंडिक रुक रही बल खिंडिक टूटे से ने।
1: टूटे से
0: तो होनी कारण ने कहा है कि लेख करुण भाई राम के खिंडिक तैयार होन रत रहे ने।
1: तैयार हो रहता है। और आजकल पानी लहरा बोले खूब आए, तो
0: हाँ
1: हम जो शरीर जो जान जो थोड़े ध्यान रखते रहा है,
0: हाँ हाँ
1: रुख खाली होली
0: हाँ हाँ
1: कोनी कद नहीं, खाली जमीन लग बोल नहीं रहते रहा ने, थोड़े
0: हाँ
1: घर कुड़िया कौन लग दका देस तो लग थेप तो रहा है।
0: हाँ इतलो नगद गोट के सांग तरला उन गीत कुड़िया भाई रोत ए मोरी सिंह अरुण मंचो
1: मंचो
0: संगवारी
1: संगवारी
0: मन
1: मन।
0: ने।
1: हाँ
0: तो हम कहे है कि गीत गोविंद के भाई मन का जे धरुण भाती अमर तिचरू हमने,
1: हाँ
0: और मंत्र का है कि ध्यान देव उन मन के सुनते रत रहे, और आम के कभी कभी चिट्ठी पत्री बले लिखुन भाती पटात रहे, और आम के तेबे आम के सांगत की हुन मन नाम छो गीत के सुनुन भाती कसन लागली एक गोट के बले लिखोत ने।
1: हाओ
0: तो असन गीत गोविंद के तो आम धरुन भाती अमर तिर दे।
1: हाओ
0: हाँ मंत्र दक गीत गोविंद संग संगे ध्यान ध्यान चो गोट मन के बले आंत रुआ मन के बले
1: हाओ
0: हुन मन सुनते
1: हाओ
0: रहो ने।
1: इधर हम जो दादा जातो समय हो से ने,
0: हाँ
1: तो इसी संगे कला और कलाकार सुन तो सब पाए भाई बहन मन के, मैं बुन को
0: और मैं लूला
1: हम दोनों करों से
0: जुहार
1: जुहार।
2: दादर का दादर का दादा दा।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की सभा संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8 बजे होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का हल्बी अनुवाद रात 8 बजे, और यही कार्यक्रम का गोंडी अनुवाद होगा रात 9 बजे। शाम 5:05 पर होगा देशभक्ति गीत। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण समय होगा शाम 6:30। बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। आमचो गांव का प्रसारण समय होगा शाम 7:21। पीला मन का जे गोट, ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर, जो केंद्रित होगा सुभाष चंद्र बोस पर। प्रस्तुति होगी अनीता निर्मल की। रात 10 बजे दौना कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुकलूराम पांडे और साथियों के गाए हल्बी जगार गीत। ये थी आज प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर, चिंतन 6:20 पर, श्री रामचरितमानस का गायन 6:25 पर, गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति का, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खाड़ा चौक गोट का प्रसारण समय होगा सुबह 6:35। हुलहुली कार्यक्रम में होगा रणवीर देव पाड़, वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। प्रसारण समय सुबह 6:40। सुबह 7:05 समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का। इसमें आप सुनेंगे स्वतंत्र वार्ता, शिक्षा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार होंगी पायल पांडे। कविता पाठ में सुभाष चंद्र साहू की कविताएं, और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर होगा छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर केंद्रित समन्वित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण समय होगा सुबह 9 बजे। 9:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे पुराने फिल्मी नगमे। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में होगा रामेश्वर और साथियों के गाए गोंडी गीत सुबह 10:30 पर, एक ही कलाकार 11 बजे। 11:30 पर कार्यक्रम पाटा केंजा में आपको सुनवाएंगे लच्छूराम और साथियों के गाए गोंडी गीत। मोचो माटी लोक साहित्य पत्रिका, ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12 बजे। संपादक होंगे बलवीर सिंह कच्छ। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार दोपहर 12:30 पर। 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम कला और कलाकार। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में शाम 5:05 पर। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर गणेश मंडावी और साथियों के गाए गोंडी गीत सुना जा सकेगा। बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। आमचो गांव का प्रसारण समय होगा शाम 7:21। रात 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में होगा गोंडी गीत, कलाकार होंगे लक्ष्मण और साथी। पीला मन का जे गोट, ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर, जो केंद्रित होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। प्रस्तुति होगी मिनेश पानीग्राही की।
रात 9:15 पर जीवना चौसूर के अंतर्गत मिलेट स्व सहायता समूह की अध्यक्षा रंजना सिंह से ली गई भेंटवार्ता। इनसे भेंट करेंगे बलवीर सिंह कच्छ। भेंटघाट कार्यक्रम होगा रात 10:00। इस कार्यक्रम में समसामयिक विषय पर श्रीमनबोध बघेल से बातचीत करेंगे बलवीर सिंह कच्छ। रात 10:00 कोदोमाली कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे गोंडी गीत। कलाकार होंगे मनीराम मंडावी और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, आदाब दोस्तों. स्वागत है आप सभी का आज के इस खूबसूरत शाम में आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें मैं हूं आपकी रेडियो साथी याश्मिन बानो
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी खालिदा अहमद. दोस्तों, हम फिर हाजिर है आपके दरमियान एक नए दिन की रोशनी, नई उम्मीदों की ताजगी और वही पुराना दोस्ताना अंदाज लेकर, जहां लफ्जों में होगी ताजगी और बात बन जाएगी यादगार. इसी के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन.
0: नमस्कार. और खालिदा, कैसी हो और बताओ क्या चल रहा है आजकल? वैसे तुमने बाहर का मौसम देखा है? आज तो सूरज देवता कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, भयंकर गर्मी हो रही है ना?
1: बिल्कुल सही कहा, मैं ठीक हूँ यास्मीन. काम तो हमेशा की तरह भागदौड़ वाला चल ही रहा है, लेकिन हाँ, बाहर जो गर्मी का हाल है, उफ क्या ही बताऊँ वाकई. पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी तेज धूप है. ऐसे में तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है.
0: जी हाँ दोस्तों, और इस झुलसा देने वाले मौसम में जहाँ बाहर जाना मुश्किल है, वहीं हमारी हमारी दुनिया रुकती नहीं बल्कि आगे बढ़ रही है. इसलिए तो आजकल हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है, चाहे खरीदारी हो या फिर पढ़ाई.
1: सही कहा तुमने यास्मीन, ऑनलाइन चीजें तो बहुत है, पर क्या हमारे श्रोताओं ने कभी सोचा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन मान्यता कितनी जरूरी है?
0: बात बिल्कुल गंभीर और ज़रूरी है खालिदा. आज इंटरनेट पर एक क्लिक करते ही हमारे सामने हजारों वेबसाइट, कोर्सेज और डिग्री देने वाले संस्थान खुल जाते हैं, लेकिन सवाल वही आता है कि इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा.
1: बिल्कुल सही कहा तुमने. दोस्तों, आज हम ऐसे ही विषय पर गहराई से बात करेंगे जिसका नाम है ऑनलाइन मान्यता की चाह और उसकी असलियत.
0: आज हम जानेंगे कि एक आम इंसान कैसे सही और मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पहचान कर सकता है.
1: यास्मीन,
0: हाँ खालिदा,
1: जब हम ऑनलाइन मान्यता की बात करते हैं तो हमारे कई श्रोता सोच रहे होंगे कि ये असल में है क्या.
0: बिल्कुल खालिदा. देखिए दोस्तों, जैसे हम कोई ज़मीन खरीदते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो देखते हैं कि वो संस्थान सरकार से अप्रूव या स्वीकृत है कि नहीं. ठीक वैसे ही दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में हम किसी भी वेबसाइट, एजुकेशन पोर्टल या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सरकार या किसी बड़ी वैलिड अथॉरिटी जैसे UGC, AICTE या ISO जैसे बड़े संस्थानों से डिजिटल सर्टिफिकेट या अप्रूवल मिलता है, उसे ही ऑनलाइन मान्यता कहते हैं.
1: तुम ये कहना चाहती हो यास्मीन कि यह एक गारंटी है, ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित है और यहाँ जो भी काम या पढ़ाई हो रही है उसकी वैल्यू सरकार की नजरों में है.
0: बिल्कुल सही कहा खालिदा तुमने. और दोस्तों, जहां आजकल हमारे बहुत से युवा भाई बहन घर बैठे ऑनलाइन डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं और लाखों रुपए फीस भी देते हैं,
1: लेकिन दोस्तों, कोर्स पूरा होने के बाद पता चलता है कि उस सर्टिफिकेट की तो कोई मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उस संस्थान के पास तो कोई वैध ऑनलाइन मान्यता थी ही नहीं.
0: यह तो बहुत बड़ा स्कैम, धोखा है दोस्तों. यानी पूरा मेहनत, समय और पैसा सब बर्बाद. श्रोताओं, जरा सोचिए कि सिर्फ एक छोटी सी जानकारी ना होने की वजह से किसी के करियर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है.
1: बिल्कुल सही कहा यास्मीन, सच में यह चिंताजनक विषय है. क्यों?
0: इसलिए दोस्तों, इस धोखे या स्कैम से बचने के लिए हमारे श्रोताओं को बस 3S का फॉर्मूला याद रखना होगा.
1: तो यास्मीन, ये 3S का फार्मूला श्रोता दोस्तों को बताओ.
0: बिल्कुल खालिदा, वह फार्मूला है 3S, मतलब सर्च, सिक्योरिटी और सोशल रिव्यू.
1: और यह चीज विस्तार में हमारे दोस्तों को समझाओ जरा.
0: बिल्कुल. पहला S यानी सर्च, आंख बंद करके किसी भी वेबसाइट या लिंक पर भरोसा ना करें, सीधे UGC या सरकारी वेबसाइट पर जाकर उस संस्थान का नाम सर्च करें.
1: और दूसरा है एस, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, वेबसाइट के लिंक की शुरुआत में HTTPS और छोटे लॉक का निशान जरूर रखें.
0: बिल्कुल. और तीसरा एस है सोशल रिव्यू, सोशल मीडिया पर वहाँ के पुराने स्टूडेंट्स का रिव्यू और कमेंट जरूर चेक करें कि उनका अनुभव कैसा रहा है उस चीज को लेकर.
1: अरे वाह यास्मिन, सर्च, सिक्योरिटी और सोशल रिव्यू, ये 3S का फॉर्मूला तो सच में काम का लग रहा है। याद रखने में बहुत आसान है, बस इतनी सी जागरूकता आपको किसी भी बड़े स्कैम से बचा सकती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में डिजिटल बनिए, लेकिन साथ में डिजिटल स्मार्ट भी बनिए। अपनी ऑनलाइन मान्यता की चाह और सही रिसर्च के साथ पूरा कीजिए।
1: तो आइए दोस्तों, इस जागरूकता को अपनाएं और खुद को एक सुरक्षित कल के लिए तैयार करते हैं।
0: तभी तो किसी ने बड़े सलीके से समझाया है दोस्तों कि हर चमकती हुई वेबसाइट पर आंखें बंद करके मत जाइए, बिना जांच पड़ताल किसी पर भी भरोसा मत करिए। यह आपके करियर का सवाल है दोस्तों, डिजिटल दुनिया में जरा संभल कर चलना, बिना असली मान्यता के कभी आगे मत बढ़ना। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप ऑनलाइन दुनिया के इन अवसरों का भरपूर सुरक्षित लाभ उठाएंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, ऑनलाइन मान्यता की चाह पर आधारित यह थी आज की हमारी चर्चा, खास चर्चा। यास्मीन,
0: हाँ खालिदा,
1: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि हम उनके लिए आज क्या क्या खास लेकर आए हैं।
0: हाँ बिल्कुल खालिदा, हम आज अपने प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन और दिल को छू जाने वाले गैर फिल्मी प्यारे प्यारे गीत और चुनिंदा गजल, जिसमें होगी शायरी की मिठास, संगीत की नरमी और गायकी की गहराई।
1: तो दोस्तों, साथ ही जानेंगे विज्ञान पत्रिका में विज्ञान से तकनीकी से जुड़ी कुछ खास खबरें, साथ ही सुनेंगे वार्ता।
0: वाह खालिदा, आज तो बहुत सी चीजें हैं हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए।
1: हाँ यास्मिन, फिर देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगाज करते हैं इस पहले गीत से। तो यास्मीन,
0: हाँ?
1: आज का पहला गीत है चांदनी बीबी, जिसे अपने मधुर स्वर से सजाया है सचेत टंडन, परंपरा टंडन ने। आइए सुनते हैं ये पहला गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक
2: और अब हमारा आज का अगला गीत सुनवाते हैं हमारे श्रोता दोस्तों को, ऐसे कैसे, हम सबके फेवरेट सिंगर सुपरस्टार जुबिन नौटियाल के आवाज में। तो सुनिए दोस्तों ये प्यारा सा गीत,

0: तीनों कॉलेज ने।
1: चिंता नहीं करा,
0: फीस तो दाख।
2: हे हे, काय हाल है, काय होली आए
1: फीस जो फिकर।
2: राहुल जो बैंक खाता तो आसीचे बाट सरसरा, बैंक ले काम पड़ लो इतरो पिला पढ़ाई कर जा सरसरा मेरे दे, और हुन बले 4 लाख तक बिन झंझट चो।

0: आए हुन कहाँ से मिठाई।
1: आरबीआई बोले से
2: नंगत करा मूर लेन देन बेरा रहा चतुर।
3: खालिदा
4: हाँ
3: एक बात बताओ, अगर सुबह उठते ही फोन का इंटरनेट गायब हो जाए या स्मार्ट वॉच स्टेप्स काउंट करना बंद कर दे तो कैसा लगेगा?
4: अरे हाँ यास्मीन, सुबह की चाय तो दूर, आधी दुनिया तो वहीं ठहर जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे लाइफ में फुल स्टॉप लग गया है।
3: जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि सुबह के अलार्म से लेकर रात के रील्स स्क्रॉल करने तक हम पूरी तरह विज्ञान और टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं।
4: जी हाँ दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं विज्ञान पत्रिका की ओर, जानते हैं विज्ञान की दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियों के बारे में।
3: पहली खबर है दोस्तों, वैज्ञानिक अब इंसानी दिमाग की कोशिकाओं यानी सेल्स को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। इसे ब्रेन ऑर्गेनाइट या ब्रेन ऑन अ चिप कहा जाता है। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर चल रहा एक असली मिशन है।
4: अगली खबर है दोस्तों, मेडिकल की दुनिया से कैंसर वैक्सीन, पारंपरिक कीमोथेरेपी की जगह अब वैज्ञानिक एली mRNA वैक्सीन, उसी तकनीक पर आधारित जिससे कोविड वैक्सीन बनी थी, वैसे ही वैक्सीन बन रही है जो शरीर के इम्यूनी सिस्टम को कैंसर से लड़ना सिखाएगी।
3: भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसरो ने तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टनम में देश के दूसरे स्पेस पोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया है।
4: IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मास ने दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट इंजन तैयार किया है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना है। इस इंजन का नाम अग्निलेट रखा गया है।
3: वहीं अगली खबर है दोस्तों, लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ने AI मैप तकनीक से उत्तराखंड के जंगलों में कैंसर के इलाज की दुर्लभ जड़ी बूटी यानी पोडोफाइलम की सटीक लोकेशन खोजी है। यह तकनीक बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ पत्तियों को स्कैन करके ही पौधों के औषधीय गुणों का पता लगा लेती है।
4: गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने अब सागर में प्लास्टिक कोवरस इंटिकस नाम का बैक्टीरिया खोजा है।
3: यह अनोखा जीवाणु समुद्र के खतरनाक प्लास्टिक कचरे को खाकर उसे प्राकृतिक खाद में बदल देता है। समुद्री प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में भारत का यह एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खोज है। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका, इसमें आपको विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारियां मिली होंगी।
4: और अब वापस से चलते हैं हमारे अगले गीत की ओर, और अगला गीत सुनवाते हैं एक तू ही साज भट्ट की मधुर आवाज में। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम तरन्नुम में हम आपको और भी गीत सुनवाएंगे। अभी सुनते हैं वार्ता। विषय है गर्मी से सेहत का ध्यान कैसे रखें। वार्ताकार हैं अरुणा आचार्य।
2: प्रिय बहनों नमस्कार। बहनों, मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी का मौसम हो, बरसात का या फिर गर्मी का मौसम, बहनों मौसम बदलते ही हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, खासकर गर्मी के मौसम में। बच्चों से लेकर बड़ों तक, चाहे महिला हो पुरुष हो, बच्चों हो या युवा, हर वर्ग पर भीषण गर्मी के कारण सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है। ज़्यादा गर्मी के कारण सेहत बिगड़ जाती है, जैसे चक्कर आना, कमजोरी, थकान, ज़्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, लू लगना और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्या सेहत पर पड़ती है। यह समस्या तेज धूप और पानी की कमी के कारण होती है। इन समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं करते हैं तो समय पर बीमारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में गर्मी से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे गर्मी की मार सेहत पर ना पड़े और हम स्वस्थ रहें। तो बहनों, आइए जानते हैं कि गर्मी के मौसम में सेहत की देखभाल कैसे करें और क्या क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहले सावधानी है पानी। पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का अभिन्न हिस्सा होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। यह कहावत सभी के लिए है, पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी और हमारे लिए। बिना पानी के जीवित रहना असंभव है। पानी से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर डिहाइड्रेट रहता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी की कमी से कई बीमारियां होती हैं, जैसे लू लगना, चक्कर, थकान जैसी समस्या आती है। इन दिनों 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में पीना ही चाहिए, साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। साथ ही ठंडे पेय का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जैसे नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, बेल की ठंडी शरबत, लस्सी आदि शरीर को ठंडक देने में सहायक होते हैं। गर्मी में चाय, कॉफ़ी जैसे गर्म पेय पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही मौसमी फल भी लेना चाहिए। मौसमी फल का ज़्यादा सेवन इसलिए करना चाहिए, जैसे कि केला, सेब, आम, संतरा, लीची, चीकू, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये पेय पदार्थ, ये फल भी शरीर को ठंडी रखने में सहायक होते हैं। पानी वाले फल और सलाद का सेवन भी ज़्यादा करना चाहिए, जैसे गाजर, खीरा, मूली, चुकंदर, टमाटर और सत्तू का सेवन कर सकते हैं। भोजन, गर्मी में भोजन ताज़ा, हल्का एवं सुपाच्य भोजन करना चाहिए। बासी एवं गरिष्ठ मसालेदार भोजन करने से परहेज करना चाहिए। पेट भर के खाने के बजाय भूख से थोड़ा कम एवं हल्का और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जिससे पचने में आसानी हो। तली भुनी चीज़ें, मैदे से बनी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, तीखी, चटपटी और बाहर के बने खाने से परहेज करना चाहिए। घर की बनी ताजी और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। तीखी मसालेदार चटपटी खाना खाते हैं तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सुधार में वक्त लगता है। डिहाइड्रेशन से डायबिटीज, माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या का खतरा बढ़ जाता है। भारत में लगातार बढ़ता तापमान सिर्फ गर्मी का एहसास नहीं बल्कि गंभीर समस्या बनता जा रहा है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचते ही गर्मी में शरीर में तेजी से पानी सूखता है, जिससे शरीर में कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। कई मेडिकल शोध में यह पाया गया है कि गर्मी और पानी की कमी से हीट स्ट्रोक, किडनी की समस्या जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि जोखिम और बचाव के तरीके को समझें। कम पानी पीने से किडनी पर प्रभाव बढ़ता है, जिससे किडनी का खतरा बढ़ता है। कम पानी पीने से बैक्टीरिया शरीर के बाहर नहीं निकल पाते, इससे यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पानी की कमी से लो ब्लड प्रेशर होता है, इससे चक्कर, कमजोरी, थकान और बेहोशी जैसी स्थिति आती है। डायबिटीज का खतरा भी कम पानी के कारण खून में शुगर लेवल बढ़ा देता है। इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहना चाहिए, जिससे कि शरीर डिहाइड्रेट रहे। सही सुरक्षा के लिए नारियल पानी, छाछ, नींबू, ORS जैसे तरल पदार्थ का सेवन थोड़ी थोड़ी देर में करते रहना चाहिए। साथ ही तेज धूप से निकलने में बचना, ढीले और सूती वस्त्र पहनना चाहिए। खीरा, तरबूज और पानी वाले फल का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। साथ ही धूप से बचाओ। इन दिनों जहां तक हो सके 10 से 4 के बीच में धूप में ना निकले। जरूरी हुआ तो धूप में धूप वाला चश्मा, टोपी पहने, चेहरे में सनस्क्रीन लगाएं, साथ ही सूती वस्त्र, हल्के रंग के ढीला वस्त्र पहने और शरीर को ढक करके बाहर निकलना चाहिए। खासकर महिलाओं को धूप में सनबर्न की समस्या होती है, चेहरे में झाइयां होती है, ऐसे में सनस्क्रीन हमेशा लगाना चाहिए। चेहरे को ढक कर रखना चाहिए। बाहर जा

0: फिट रहता है। हमें सुबह शाम कम से कम आधा से एक घंटा पैदल चलना चाहिए, साथ ही दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना जैसी शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं। इसके अलावा व्यायाम, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है, जो कि हमें सुबह की धूप में मिलता है। इसके लिए सुबह 7 से 8 बजे की धूप अवश्य लेनी चाहिए। सुबह की धूप में बैठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सुबह खाली पेट नींबू शहद का गुनगुना पानी पीना चाहिए, साथ ही आंवला एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, मोटापा कम करता है और शरीर को ठंडक रखने में मदद करता है। तनाव मुक्त के लिए रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, क्योंकि करें योग रहे निरोग, अपना ये विधि अपनाना चाहिए। योग के द्वारा हर बीमारी का इलाज संभव होता है। संगीत से तनाव कम होता है, मनपसंद संगीत भी सुनना और गुनगुनाना चाहिए। इससे तनाव मुक्त रहते हैं, जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही गहरी नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए नींद 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत आवश्यक होती है। नींद पूरी ना हो तो थकान, चिड़चिड़ापन होता है, बीमारी जैसे बीपी, शुगर जैसी गंभीर समस्या होती है। नींद पूरी हो सके इसके लिए हमें समय पर सोना और समय पर उठने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही घर को ठंडक रखना चाहिए। घर में ठंडक के लिए दिन में खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखें और पर्दा लगाना चाहिए। खासकर खस का पर्दा भी आप खिड़की दरवाजे पे लगा सकते हैं। एसी कूलर लगाना चाहिए, इस तरह गर्मी में ठंड का आनंद ले सकते हैं। बहनों, घर हो या दफ्तर या स्कूल, हर क्षेत्र में आज महिलाएं सक्रिय हैं। अगर वह अपनी और अपने परिवार की तबीयत का ध्यान नहीं रखती हैं तो वह हर क्षेत्र में पीछे रह जाएंगी। इसलिए इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी सेहत सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज सबसे सफल और प्रसन्न वही है जिसकी सेहत अच्छी रहती है और जो लंबी उम्र तक स्वस्थ रहता है। तो बहनों, इन सब जानकारियों पर अमल कीजिए और गर्मी के मौसम का आनंद लीजिए। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था गर्मी से सेहत का ध्यान कैसे रखें। वार्ताकार थी अरुणा आचार्य। और अब वापस से चलते हैं हमारे तरन्नुम की ओर और सुनेंगे हमारा अगला गीत। अगला गीत है बुरी नजर, जिसे अपने मधुर स्वर से सजाया है अभिजीत श्रीवास्तव और आचल त्यागी ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: और अब अगला गीत सुनते हैं दोस्तों दोनों अरमान मलिक के आवाज में। आइए सुनते हैं दोस्तों ये प्यारा सा गीत

0: दोस्तों, आज की हमारी दिलचस्प बातें, प्यारे गीत और मुस्कुराहटों से भरा ये सफर बस यहीं तक।
1: और दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। यादों के इस खूबसूरत सफर को यही थामते हुए अब हमें दीजिए अनुमति आपकी कंपेयर साथी याश्मिन बानो को
0: और मुझे आपकी कंपेयर साथी खालिदा अहमद को।
1: बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे नए विषय नई उमंग के साथ।
0: तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है संजय मानिकपुरी का।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में बीते 25 मई को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एग्रीस्टेक पंजीयन का काम जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें आगामी खरीफ सीजन में धान बेचने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे 15 जून तक अपना पंजीयन अवश्य करा लें। बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्रोताओं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में डायल 112 सेवा के तहत 10 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन प्रदान किए गए हैं। बीते 19 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक कविता प्राण लहरे और कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि 1 के नंबर सब्बो बर थीम पर शुरू की गई ये सेवा लोगों को त्वरित और आपातकालीन स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम, डैश कैमरा, वायरलेस रेडियो और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इससे कंट्रोल रूम सीधे घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा। श्रोताओं, राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत इन दिनों जिले में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 28 मई को केडारगांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 हितग्राहियों को आवास पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं हितग्राहियों को श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उन्नत बीज तथा हरी खाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 5 लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में मांग और समस्याओं से संबंधित 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। श्रोताओं, उपमुख्यमंत्री और नगरी प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सारंगढ़ नगर पालिका परिषद बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों के अनुरूप ये राशि अधोसंरचना मद से स्वीकृत की गई है। इस राशि में बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। श्रोताओं, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 1 से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं को एथलेटिक्स, योगा, कराते, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित विभिन्न खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने पसंदीदा खेल जरूर खेलें। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें, साथ ही उन्हें मोबाइल गेम और मोबाइल की लत से दूर रखें। खेल प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था संजय मानिकपुरी का। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:10 होने को हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ह छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में मिले दुर्लभ तांबा पट्टिका के करिन जिकर, जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर ले घलो करिन बात। मुख्यमंत्री ह किहिन की प्रदेश में खातू और बीजा के कोनो कमी नहीं हवे और प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव में काली 1 जून के होही मतदान। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा किहिन है कि सरकार हा देश के अमूल्य धरोहर ला बचाए बर प्रयास करत है। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में ओमन बतैन की ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन ले जुड़े दुर्लभ तांबा के 3 ठिन पट्टिका मिले है।
3: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: प्रधानमंत्री ह रांची में रखे गए राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के घोईटांगर रहिया 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले अनिमेश कुजूर ले बात घलो करें।
4: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2020 में से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: श्री मोदी हा देशवासी मन ले ए दारी जोरदारहा गर्मी के दौरान ज्यादा ले ज्यादा सावधानी रखे और सरकारी दिशा निर्देश के पालन करे के अपील करें। ओमन किहिन की ए मौसम में पानी पियत रहे और घाम में अगर निकलना ही पड़े तो थोरकुन जतन करके निकले। प्रधानमंत्री हा लोगन ले गर्मी ले बाचे बर आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और साले

0: कढ़ी जैसन पेय पिए के अपील करीन हे। श्री मोदी ह कहिन कि खगोल विज्ञान ह देश के हर पीढ़ी म जिज्ञासा जगात हे। खगोल विज्ञान ह देश म तेजी ले लोकप्रिय होत हे। ओमन युवा मन ले खगोल विज्ञान क्लब म शामिल होए और छुट्टी म तारा मंडल देखे के अपील करिन। प्रधानमंत्री ह काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर के आम फल के गोट बात करत हुए कहिन कि सबो जगह के आम के स्वाद और सुगंध अलग अलग होते। श्री मोदी कहिन कि भारतीय आम ह दुनिया के बाजार तक अपन पहुंच बनाए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और आम लोगन संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ला सुनिन। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ह कहिन कि आज प्रधानमंत्री ह जशपुर जिला के घुईटांगर गांव के युवा धावक अनिमेश कुजूर के उपलब्धि के बारे में बात करत हुए प्रदेश के युवा मन ला यही संदेश दे कि कम संसाधन ह प्रतिभा के उड़ान ला रोक नहीं सके। ओमन कहिन कि प्रधानमंत्री ह राष्ट्रीय मंच ले प्रदेश के प्रतिभा और सांस्कृतिक धरोहर दोनों के बात करके पूरा छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाए है। सुरैया मल्ल बता दें कि अनिमेश कुजूर ह 100 मीटर दौड़ ला सिर्फ 10.15 सेकंड में पूरा करके नवा रिकॉर्ड बनाए है और राष्ट्रमंडल खेल 2026 बर क्वालिफाई घलो हो गए है। खेत बचाओ अभियान देश भर में काली 1 जून ले 30 जून तक चलैया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है कहिन है कि खेत बचाओ अभियान में खेत, किसनहा और गांव मल्ल जोड़त हुए एला बड़का देशव्यापी अभियान बनाए जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री है नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान के तैयारी के बारे में एक ठिन बड़का बैठका के अगुवाई करत हुए ए बात कहिन। ओमन कहिन कि ए अभियान के मुख्य ध्यान खातु के संतुलित और सही उपयोग, मौसम के चुनौती ला देखत हुए किसनहा मल्ल सही बेरा में परामर्श, पंचायत स्तर में किसान मन के सक्रिय भागीदारी और गांव ल सीधा ये योजना ले जुड़े ऊपर ध्यान होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह सुशासन तिहार में आज दुर्ग जिला में रखे गए कार्यक्रम में 737 करोड़ रुपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करिन। ए मौका में मुख्यमंत्री है कहिन कि ए सबो परियोजना है क्षेत्र में नागरिक सुविधा के विस्तार और विकास ल आखिरी आदमी तक पहुंचाए के हमर सरकार के संकल्प ल और ज्यादा बल दही। मुख्यमंत्री है आज दुर्ग में आईटी पार्क के उद्घाटन घलो करिन। आईआईटी भिलई, नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग ले बने ए आईटी पार्क है युवा मन बर रोजगार, नवा प्रयोग और स्टार्टअप के नवा मौका के ठीहा बनी। इही मौका में पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए मुख्यमंत्री है कहिन कि प्रदेश में खातु और वीजा के कमी नहीं हवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाई में काली 1 जून के मतदान होही। राज्य निर्वाचन आयोग ह मतदान बर सबो तैयारी पूरा कर ले है। ए चुनाई बर सनिच्चर रतिहा 12 बजे प्रचार थिरागे है। एकर बाद प्रत्याशी मन घर घर जाके मतदाता मन ले भेंट करत है। सुनिया मल्ल बता दन कि नगरी निकाय में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत में कुल 392 प्रत्याशी मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई में नाम वापसी होय के बाद पंच के 640 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गए रहिस, जेखर बाद काली 1 जून के 107 पद पर वोटिंग कराई जही। उहें सरपंच के 15 पद ऊपर निर्विरोध निर्वाचन हो गए है और अब बाचे 34 पद पर मतदान होही। एकरे जैसन जनपद सदस्य के 10 पद पर वोटिंग होही। नगरी निकाय चुनाई के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष के 5 पद पर मतदान होही। नगरी निकाय चुनाई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के माध्यम ले और पंचायत चुनाई में मतपेटी के माध्यम ले वोट डाले जही। कोरबा जिला में काली संझा 3 युवक मन ऊपर पेड़ के डारा गिर गए, जेखर ले तीनों जन के मौका में ही मौत हो गए। बताया जावत है कि पाली थाना क्षेत्र के चोरकाडांड गांव में पानी और तेज हवा ले बांचे बर ए तीनों जन यह पेड़ के तरी खड़े रहिन। इही दौरान तेज हवा गर्रा के कारण पेड़ के एक हिस्सा हर टूट के सीधा उही ऊपर गिर गए, जेमा दब के तीनों जन के मौत हो गए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस हवे। ए मौका में छत्तीसगढ़ के आने आने जिला में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली, पोस्टर और रील प्रतियोगिता रखेगी। संगे संग दांत के डॉक्टर मन लोगन ल तम्बाकू खाएले होवैया नुकसान के बारे में घलो बताइन। उहें समाज कल्याण विभाग के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ह प्रदेशवासी मन ले तम्बाकू और आने नशीला सामान ले दूरिया रहे के अपील करे है। ओमन किहिन की तम्बाकू ह मनखे के तबियत के संगे संग परिवार और समाज तीनों बर बड़का खतरा है। युवा मल्ला नशा ले बचाए बर समाज के सब्बो वर्ग ल मिलजुल के काम करना होही। अब थोर कुन समाचार सार मा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज कबीरधाम जिला के रामहेपुर गांव में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जयंती समारोह में शामिल होइन और कबीरधाम जिला के बैहरसरी गांव ले एक युवक के हत्या के मामला व पुलिस हा तीन आरोपी ले गिरफ्तार करे है। आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री है छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में मिले दुर्लभ तांबा पट्टिका के करिन जिकर जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर ले घलो करिन बात। मुख्यमंत्री है किहिन की प्रदेश में खातु और बीजा के कोनो कमी नहीं हवे और प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई में काली 1 जून के होही मतदान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् भारतशासनं राष्ट्रस्य अमूल्यरिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैण्डदेशस्य यात्रावधौ चोलकालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारम्परिकपेयपदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिकतः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिणपूर्व एशियादेशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ट सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात रक्षण प्राप्तुम आमपन्नम, तक्रम, सत्तुपेयम, बेलपन्नम, पानकम, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेयपदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभव निहितः अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्याम् प्रतियोगितायाम् प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागम् गृहीतवन्तः। श्रीमोदी, गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायाम् धावन प्रतियोगितायाम् विजेतृभ्याम् गुरिन्दर वीर सिंह तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्याम् सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तम् यत् खगोलशास्त्रम् देशस्य प्रत्येकम् जनेषु जिज्ञासाम् जनयति। तेनोक्तम् यत् खगोलशास्त्रम् देशे शीघ्रम् लोकप्रियम् भवति। श्री मोदी युवानः खगोल शास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिः अद्य उक्तवान् चिन्तने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहितसंरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालनसम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसंकल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक प्रांगणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रिय युद्ध स्मारके पुष्पांजलिरपि समर्पिता। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिकरूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे सीबीएसई उक्तवान् यत् विविध सर्वकारीय संस्थानां तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञानां दलं गतदिनेषु एतासां प्रणालिनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। सीबीएसई अपि सूचितवान् यत् अभिज्ञाताः दोषाः नियन्त्रणाधीनाः कृताः, सहैव अन्यासां सम्भावितानां त्रुटीनां निवारणार्थं गभीरा समीक्षा क्रियते। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अद्य नौसेनायाः 27वें प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्। असौ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। एडमिरल स्वामीनाथेन उक्तं यत् नौसेना समाह्वान पूर्णे जटिले अनिश्चिते च वातावरणे सक्रियरूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। सा अवदत् यत् नौसेनायाः आधुनिकीकरणं क्रियते, येन उच्चतमस्तरस्य युद्धक्षमता सुसज्जिता भविष्यति। अस्मिन् अवसरे निवर्तमानः नौसेनाप्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी देशस्य नौसेनायाः नेतृत्वं गौरवपूर्णम् अभवत् इति अवदत्। सः प्रोक्तवान् यत् पश्चिम एशियायाः वर्तमानस्थितेः मध्ये भारतीय नौसेनायाः प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता च अक्षुण्णा एव स्तः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका ईरानेन सह परमाणुसन्धेः सन्निकटः वर्तते, तथापि तेन सञ्चेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्यकार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्। श्रीमता ट्रम्पेण उक्तं यत् ईरानाय कदापि परमाण्वस्त्रनिर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते। तेनाश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज जलडमरू मध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति श्रृंखलायाः निर्णायक स्पर्धा भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता। निर्णायक स्पर्धायां भारतीय दलेन इंडोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलं 18-21, 21-17, 21-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां निर्णायक स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भ सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।
3: आकाशवाणी जगदलपुर गोंडी समाचार बुलेटिन तरसंग नन्ना सावित्री नाग नेटा मूल समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के अपूना एग्रीक्लाइमेटिक हालात उपलब्ध संसाधनी और स्थानीय संभावना ता आधार ते कृषि रोडमैप तैयार कीना के तुर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ते छत्तीसगढ़ संघ और राज्य की 10,021 करोड़ रुपया तदिबे राशि जारी कितुर। प्रदेश ता जिला पंचायती किनवेंडे इनोर गौण खनिज निधि तक हिस्सा। राज्य तर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगर खाली सिटी नगर प्रवेश तलाय ऑनलाइन आवेदन त प्रक्रिया मूर। इधर समाचार कुंडे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान न अध्यक्षता तक नई दिल्ली तक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कित्तुर। सम्मेलन तीन संबोधित कीसो केंद्रीय कृषि मंत्री कित्तुर की इधर हर राज्य तीन अपूना एग्री क्लाइमेटिक हालात उपलब्ध संसाधनी और स्थानीय संभावना का आधार ते कृषि रोडमैप तैयार किया व्यतीता। केंद्र सरकार वैज्ञानिक संस्थान और मंत्रालय ता उनके टीम ता राज्य ता संघ इस दिशा तक भूतो किनों तैयार मिंदे और केत्तोर की नुका पुटी तीनग भारत विश्व तक शीर्ष तक एवता। सम्मेलन तक केंद्रीय मंत्री वैज्ञानिकों केत्तोर की वेर किसानी न जरूरत ता अनुसार तेज व्यवहारिक और मांग आधारित शोध की वीर और राज्य किन आग्रह कित्तोर की खेत बचाओ अभियान ता माध्यम ते किसानी किन संतुलित उर्वरक उपयोग तलाय प्रेरित की वीर और केत्तोर की और 3 जून एवना चले मायनत इत अभियान तक प्रतिनिधि वैज्ञानिक अधिकारी और किसानीर मिले मास वेडा स्तर तक जागरूकता पेड़सीर। केंद्रीय मंत्रिमंडल अत्ता 27 मई ते सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस 3 जारी ताशना मंजूरी तुर। इत योजना तलाय केंद्र सरकार 25,500 करोड़ रुपया त राशि जारी कित्तुर। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव केत्तुर की इवेटे राज्य किन खाद्यान्न परिवहन उचित मूल्य दुकानी किन संचालन और पीडीएस ता आधुनिकीकरण तक मदद दुर्किता। अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केत्तुर की इत निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली 3 तकनीकी आधार निकाय पारदर्शी जवाबदेही और नागरिक केंद्रित पालन दिशा तक महत्वपूर्ण डाका सिद्ध आता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत छत्तीसगढ़ संघ और राज्य किन 10,000 करोड़ रुपया तदिबे राशि जारी की सित्तुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इत फैसला ता स्वागत कीसो केत्तुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नेतृत्व तग हर गरीब को पक्का घर ता संकल्प जोर ते पूरा मुता और केत्तुर की इत सहायता ते छत्तीसगढ़ तोर हजारों ग्रामीण परिवारिन पक्का लोक ता सपून साकार आता। मुख्यमंत्री केत्तुर की राज्य सरकार उनके पात्र परिवार एवं योजना ता लाभ समयबद्ध और पारदर्शिता तरीका ते एवितिला प्रतिबद्ध मिंदे। छत्तीसगढ़ सरकार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था 3 बरकस किला जिला पंचायत किन गौण खनिज निधि त हिस्सा इलाय निर्णय पैता। इध राशि त उपयोग स्कूल अस्पताल सामुदायिक भवन सड़क और विकास भूतो न किनोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केत्तुर की इवेटे पंचायती किन आर्थिक मजबूती और ग्रामीण विकास 3 गति दुर्किता। पद्मश्री सम्मान ते अलंकृत डॉक्टर सुनीता गोडवाले और डॉक्टर रामचंद्र गोडवाले अत 29 मई ते रायपुर तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संग कालितुर। मुख्यमंत्री गोडवाले दंपत्ति शुभकामना ईसो केत्तुर की उन पद्मश्री सम्मान दुर्कना व्यक्तिगत उपलब्धि अयो बल्कि उनके प्रदेश विशेष रूप ते बस्तर जनजातीय समाज और बस्तरवासी लोरा सम्मान ता विषय। मुख्यमंत्री केत्तुर की माओवाद ता कठिन दौर ते गवेंडे गोडवाले दंपत्ति सेवा ता अर विरसो अर मानवता तीन पुरो तासो जनजातीय समाज ता नड़मा लगातार भूतो कीसो मत्तुर। श्री साय केत्तुर की गोंडी अर हल्बी लेके तो स्थानीय माटा नगर संवाद स्थापित की न इध माटा ता प्रमाण मिंदे की और माने एक ना नड़मा विश्वास अपनत्व और आत्मीयता ता बरकत संबंध पाड़तुर। इध मौका ते मुख्यमंत्री गोडवाले दंपति ते बस्तर ता विकास तलाय राज्य सरकार ताकेट की मूतत प्रयाशी और कार्य योजना ता जानकारी साझा कित्तुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केत्तुर की छत्तीसगढ़ पर्यटन क्षेत्र तक पुनः पहचान पाड़ीता। रायपुर तक आयोजित ओंडवेटका तग और केत्तुर की राज्य ता प्राकृतिक सुंदरता जलप्रपात मेटा और आदिवासी संस्कृति 3 दुनिया ता मुने ततितुर। श्री साय केत्तुर की पर्यटन 3 उद्योग ता दर्जा दुर्गतान के निवेश ता संभावना पेड़ता और लयोर किनलाय रोजगार ता पुना अवसर बने माता। वेटका तग इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड प्रदेश तक 500 करोड़ रुपया तदिबे निवेश ता मन तास्तुर। छत्तीसगढ़ तग उबाय इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू किनोर। रायपुर तक आयोजित कार्यशाला तक खाद्य विभाग ता सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले केत्ता की केंद्र सरकार खरीफ सीजन तक इध योजना 3 प्राथमिकता ते लागू कीनत। इदिन लाए राइस मिली किन तकनीकी रूप ते उन्नत किन और अत आश्वस्त किता की मिलर स्नाकेट इत्ता सुझावी और चीपा तब परीक्षण की आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार तीन लोहतनद राज्य सरकार नगरीय निकायी न विकास तलाय आदर्श शहर समृद्ध योजना मूर कीना घोषणा किता मुने चरण तग 32 नगरीय निकायी न चयन कितद मिंदे इग बस्तर सरगुजा और रायपुर संभाग तसंग आरु आरु और बिलासपुर संभाग तग नव और दुर्ग संभाग तग एंग निकाय मिंदे योजना ते सड़क जलापूर्ति ड्रोनेज पार्क परिवहन और स्मार्ट ट्रैफिक लेकेताओ सुविधा त विकास किनोर योजना त तहत कार्य चयन और निरीक्षण तलय संभाग स्तरीय समिति त गठन कितद मिंदे इदिन 15 दिनाम तग कार्य योजना तैयार कीना निर्देश इतद मिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ता और हिस्सा नगर पर समूह तापमान तीन उड़सो माने किन सावधानी तासना सलाह इतुर सोशल मीडिया तक पोस्ट ते श्री मोदी माने किन केतुर की नेका एयर उनुट और लोक ते पैतियाम पे अपना संग एयर वेंट तासाट और सुझाव इतुर की पिया सत्तोर माने किन वेंडे एयर उपितिहाट प्रधानमंत्री कोंडेड किन केतुर की नेका ए तचुट लोक तीना पे मट और बेचोरत के अचर रोमट और कोंडेड किन आग्रह कितुर की जानवरी अर्पिटे किन लाए लोक नगर इगा आगा दुकानी अयोके दफ्तरी न दुआ तक वेंडे एर तासाट ई मुख्यमंत्री विष्णु देसाय ने कह एतिन उड़सो माने किन अपना स्वास्थ्य ता संग संग अपना मदल ता मानेक ना वेंडे ध्यान तासना अपील कितुर मुख्यमंत्री प्रदेशवासी किन ने कह एत तचुट ने कह एर उंडालाय आर एत ते नैदालाय कितुर और अपना लोक दुकानी कार्यालय आर सार्वजनिक जगह नगर रागीरोन लाय उंडलाय एर तासना अपील कितुर राज्य सरकार प्रदेश तक खाली सरकारी नेल त विकास तलाय रीडेवलपमेंट योजना मूर कीनत इदिना के सरकारी नेल त जीआईएस मैपिंग किस डिजिटल लैंड बैंक पाड़नोर शहरी नगर आवासीय और व्यावसायिक परियोजना विकास किनोर और ग्रामीण क्षेत्रीय नगर कृषि और कौशल विकास केंद्र पाड़नोर प्रदेश तक वायनत करीब सीजन तैयारी तीन उड़सो मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय किसानी न हित त महत्वपूर्ण निर्देश इतुर और केतुर की ट्रैक्टरी ते जुताई और सिंचाई पंपी किन लाए किसानीर किन आवश्यकता अनुसार डीजल ता सुगम और निर्बाध उपलब्ध सुनिश्चित की वीर बारित के खेती किसानी तबूतो प्रभावित एमा की राज्य तग पेट्रोल डीजल त दुरुपयोग तीन के पीति लय ड्रम और जरिकेन तग ईंधन वितरण त लगे प्रतिबंध ते किसानीर किन आवश्यक छूट इतद मिंदे बारित के करीब बूतो बाधित एमा की राज्य सरकार माओवादी प्रभावित और सुदूर ग्रामीण क्षेत्री न विकास तलाय नियत निलानार योजना 2.0 लागू किया दाय मुता इस संबंध ते अत्ता 29 मई ते मंत्रालय तक मुख्य सचिव विकासशील न अध्यक्षता त आयोजित उच्च स्तरीय बैठका तक नियत निलानार बस्तर मुने और सुगर छत्तीसगढ़ लेकेता योजना त रणनीति तक चर्चा कितुर बैठका तक कितुर की नियत निलानार योजना त दूसर चरण तक 31 व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजना 14 सामूहिक सुविधा और 10 वांछित सेवा नाटेनोर एवना एवितीनोर योजना ताकेट नाटेनोर सरकारी योजना ता 100% लाभ एवितीनोर अगर पात्र माने किन मनरेगा जॉब कार्ड कार्ड प्रधानमंत्री आवास योजना पेंशन योजना किसान सम्मान निधि और सुविधा ते जोड़ा किनोर इदिना संग नारी नगर आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य सुविधा सड़क मोबाइल नेटवर्क बैंक पंचायत भवन और राशन दुकानी लेके तब बुनियादी सुविधा तब विस्तार वेंड की नोर भारत सरकार ता उद्देश्य एड़ा क्षेत्री नोर माने किन मुख्य धारा ते जोड़ा किस नेलता जीवना सुविधा उपलब्ध कीनत मिंदे भारतीय तल सेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा ता परिणाम घोषित की सित्ता सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ता अनुसार छत्तीसगढ़ ता 1163 लयोर परीक्षा तक सफल अत्तुर परिणाम सेना ता आधिकारिक वेबसाइट और नवा रायपुर स्थित भर्ती कार्यालय तग उपलब्ध मिंदे राज्य त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इतके आईटीआई तग रिक्त सिटी नगर प्रवेश तलाय 29 मई तीना ऑनलाइन आवेदन त प्रक्रिया मूरत्ता मन मंदनोर अभ्यर्थी 15 जून एवना आवेदन किया परदितुर प्रवेश प्रक्रिया मूंड चरणी तग पूरा किनोर मुने चरण त सूची 16 तीना 22 जून एवना जारी किनोर अगर दूसर चरण त चयन सूची 26 जून एवना मूंड जुलाई और तीसर चरण त चयन सूची 8 तीना 12 जुलाई एवना जारी कीनोर छत्तीसगढ़ तक संगठित क्षेत्र नगर बूतो कीनोर बीमित श्रमिकी न पिला किनलाय मेडिकल शिक्षा तक प्रवेश तलाय नेका नला अवसर दुखता कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी देश भर तक अपना 20 मेडिकल कॉलेज नगर एमबीबीएस और बीडीएस का पाठ्यक्रम किन लाए 700 सीटी आरक्षित किता। प्रवेश नीट यूजी परीक्षा त मेरिट त आधार तक आयनद। ऑनलाइन आवेदन त माडम तिथि 25-21 जून की सितुर। श्रम विभाग पात्र विद्यार्थी किन समय ते आवेदन किना अपील कितुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 तले उच्च शिक्षा विभाग नामांकन आमंत्रित किता। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in त माध्यम ते 1 जुलाई एवना लोहता पर दितुर। महाविद्यालय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानी और पॉलिटेक्निक त निर्धारित मानदंड पूरा किनोर किन नियमित संकाय सदस्य किन इत पुरस्कार इनोर। बस्तर विकास प्राधिकरण त उपाध्यक्ष लता उसेंडी अत्ता 28 मई ते कोंडागांव जिला त बमहनी तक 16 लाख रुपया त दिव्य लागत ते बनी मदद आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन त लोकार्पण किता। इद अवसर ते सुश्री लता उसेंडी केता की राज्य शासन ग्रामीण क्षेत्रीय नगर स्वास्थ्य सुविधा त विस्तार और सुदृढ़ीकरण तलाय लगातार बूतो की मुता। अतके तक की आयुष्मान आरोग्य मंदिर त माध्यम ते नाटेनोरिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा संघ आयुर्वेदिक आधारित उपचार त परामर्श त सुविधा इधर स्थानीय स्तर तक उपलब्ध आता। सुश्री लता उसेंडी केता की आयुष पद्धति मावा पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली त महत्वपूर्ण हिस्सा में दे। इध प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार पद्धति त रूप ते मानेक मन की मुतुर। जगदलपुर केंद्रीय जेल तक अत 28 मई ते मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पारतुर। भारत स्काउट गाइड और यूनिसेफ त संयुक्त तत्वाधान तक आयोजित इध कार्यक्रम पीरियड्स पर खुलकर टीम तक आधारित मत्ता। इध कार्यक्रम जेल तक बंद लगभग 150 मुते कैदी हिस्सा पोइता। कार्यक्रम तक मुते मासिक धर्म तचुट आयनत बीति शारीरिक चीपा सामाजिक संकोच और पारिवारिक चुनौती तक वेहता। बीजापुर जिला त एड़ा दारेली नार तग पहिल बेरा प्रशासनिक टीम मोटरसाइकिल ते उत्ता। इचुटेन कलेक्टर विश्वदीप और जिला पंचायत सीईओ मुकेश देवांगन संग अधिकारी लोरिन संग कालिस मंच अवीना चीपा केंचतुर। दौरा तचुट नार तग पहिल बेरा जनगणना त बूतो कितुर और आधार राशन कार्ड बैंक खाता संग भूमि पट्टा संबंधी कबूड़ पैतुर। अधिकारी लोरा अधूरा दस्तावेज इतके कागती पूरा कीना विशेष शिविर वाटना निर्देश इतुर। इद मौका ते नाटेनोरिन प्रधानमंत्री आवास योजना संग और शासकीय योजना ता कबूड़ वेंड इतुर। माडम्बे मूल समाचार उन्तावा वेंडे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

अभी आप सुन रहे थे गोंडी समाचार बुलेटिन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:43 हुए हैं। विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चे

0: की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिले दुर्लभ तांबे की पट्टिकाओं का किया जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है और प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बल्लार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के घुईन टांगर निवासी 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले अनिमेश कुजूर से भी बात की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आमजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जशपुर जिले के घुईन टांगर गांव के युवा धावक अनिमेश कुजूर की उपलब्धि का उल्लेख कर प्रदेश के युवाओं को यह संदेश दिया है कि सीमित संसाधन किसी प्रतिभा की उड़ान को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मंच से प्रदेश की प्रतिभा और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का उल्लेख कर पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाया है।
3: बड़ी खुशी की बात है कि कई बार के मन की बात में छत्तीसगढ़ का लगातार जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है। एक तो जिस जिले से हम आते हैं जशपुर, वहां के अनिमेश कुजूर हैं, लेकिन उड़ीसा से वो खेलते हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर और 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो मल्हार है वहाँ का जो ताम्र पत्र है उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: गौरतलब है कि अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ मात्र 10.15 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए क्वालिफाई कर प्रदेश तथा देश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत आज दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में 737 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सरकार के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग में आईटी पार्क का उद्घाटन भी किया। आईआईटी भिलाई नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग से निर्मित यह आईटी पार्क युवाओं के लिए रोजगार, नवाचार और स्टार्टअप के नए अवसरों का केंद्र बनेगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है।
4: प्रदेश में कहीं भी न बीज की न खाद की कमी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और चूंकि डीएपी वगैरह की उपलब्धता बाहर से होती है, उतना पैदावार नहीं है हमारे देश में कि मतलब पूर्ति कर पाए। कहीं अगर कमी हुई है तो वो स्टॉक की कमी के कारण नहीं, वहाँ पर पहुँच नहीं पाया होगा। और जैसे जैसे लगातार रोज की रोज समीक्षा कर रहे हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों से आह्वान करना चाहूँगा कि उनको किसी भी दृष्टि से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खेत बचाओ अभियान देश भर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। देश भर में इन दिनों जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है। प्रगणकों के घर घर जाकर 33 प्रश्नों के आधार पर मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संकलित की। राज्य में यह अभियान 33 जिलों, 252 तहसीलों, 195 नगरीय निकायों और 19,000 से अधिक गांवों में चलाया गया। जनगणना कार्य में 62,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रदेश के जनगणना निदेशक ने अभियान की सफलता के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। गौरतलब है कि जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इन चुनावों के लिए शनिवार रात 12 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंच के 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ है। शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मतपेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। कोरबा जिले में कल शाम 3 युवकों पर पेड़ का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पाली थाना क्षेत्र के चोर का दांड गांव में बारिश और तेज हवाओं से बचने के लिए ये तीनों युवक एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान तेज आंधी के कारण पेड़ का एक हिस्सा टूटकर सीधे उनके ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर तीनों युवकों की मौत हो गई। आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली, पोस्टर और रील प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्रों ने तम्बाकू निषेध का संदेश दिया, साथ ही दंत चिकित्सकों ने लोगों को तम्बाकू सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया। वहीं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज नवा रायपुर में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर की गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिकों से प्रदर्शनों और प्रभावी विस्तार तंत्र के माध्यम से नई विकसित कृषि प्रौद्योगिकी को खेतों तक स्थानांतरित करने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के ग्राम रामहेपुर में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती समारोह में शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आज आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक का शव रखकर चक्का जाम किया। और कबीरधाम जिले के ग्राम बहर रसरी में से एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिले दुर्लभ तांबे की पट्टिकाओं का किया जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है। और प्रदेश में नगरीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
5: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
6: नहीं झुमके
7: ना, पहले बचत,
6: पहले झुमके।
7: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
6: लेकिन झुमकों का क्या?
7: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
8: आरबीआई कहता है
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना लुल्ला दादा, राम राम।
1: हाँ राम राम बंडकू राम राम।
0: अमरलिस ना ने
1: हाँ अमरली का है। और दके जी संग संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संगवारी मन के मैं लूला
0: और मैं बोंड को
1: हम दोनों करूँ से राम
0: राम
1: राम।
0: राम और लुला दादा।

0: जोन रडी कोटा बसला नानन पिला मन
1: हाँ
0: मन
1: हाँ
0: बोले आम के नी भूलक तरह है ना ने
1: हाँ हाँ उन मन करनी भूलोक तरह यार दक आम चे दोनों चे बाटले हुन मन बले खूबे
0: खूबे
1: खूबे
0: माया और
1: माया
0: चुमा ने
1: हाँ दक और दक बोंड को पीला मन के आम सुरता करती शुरू हमने
0: हाँ
1: और
0: ना
1: पीला मन का है कि नगत नगत गोट नगत नगत कहीं नहीं धंधा और ठसा आसन का ही गोट के सांग ले हुन मन खिंडी का ध्यान दे हुन मर खिंडी बक पाड़ू सुनू आद ने
0: सुनू आज ना
1: हाँ
0: बल्ले ने उमन के बेचो पीला बेरा सुन तो काज खूबे हरिक लागे से
1: हाँ
0: आमी आगे बोल दगत रोन ने गांव
1: हाँ
0: चो जोन सियान सजन मन होत पीला
1: हाँ
0: मन के आप लोग बसन बाती मस्त कहानी असन ठसा असन संगत ने
1: हाँ
0: और पीला मन बढ़िया ध्यान दे उन कहानी के ठसा के सुनोत
1: हाँ अरुदला जो सुन लो भी दिखा है कि सुरता बल रहे से
0: सुरता बोल रहे से
1: हाँ के भी भूल कुक नहीं हुए
0: नहीं होए
1: और
0: ना
1: आमी बाढ़ लो बेरा जुआन हो लो बेरा कई चिपल गोट के सांगल उनका एक कान ले सुन एक कान निकरान दे उनको
0: हाँ
1: ऐसे ने
0: पीला बिरा चोप जोन मन होए से दिमाग होए से बढ़िया शांत रहे से
1: हाँ
0: और थोड़े बाढ़ लेने दुनिया भर जो काम धाम बल होए ना ने जिम्मेदारी
1: हाँ
0: बल होए से उन्हें ने उतना ध्यान नहीं दे सो
1: हाँ दक ये कई नहीं धंधा और जो न ये ठसा बलुआत नहीं
0: है ना
1: ये गोटक तो सुन तो काजे अच्छा लागे मानते रहे था कितलू ज्ञान च गोट मन रहे से
0: हाँ ना
1: हाँ बल्लो ने दक असन ज्ञान च गोट मन के उता ज्ञान मीरे से जे के आमी सीकुन रोलन का है कि उन सियान सांगलो गोट और कुकुर सुंगलो भील बलुआत नहीं
0: हाँ ना
1: कुन बड़े काम है तो बीती चीज आए
0: सही बोलिस ना
1: हाँ दक कोनी कोनी बोलू बात की जसन की ये घरे रांदा नहीं दुआरे भैंसा बांधा ने
0: हाँ ना
1: ये बोल कितलो काम चो गोट आए आम चो लगे जितलो ये पैसा कोड़ी नहीं आए आमदनी नहीं आए उन चो ले अगर आम ये गाड़ी घोड़ा घेनवा और दुआरे उन मंडान दे उरुआ और घरे रान तो काजे काई नहीं आए बोलो नहीं ये बोल कोटो का अड़ा गोट
0: और
1: आए
0: रा
1: ने
0: घोटा है ना बोले जो सियान मन चो सांगलो जो बोलसी नहीं ठसा है कि धंधा उन
1: हाँ
0: कह नहीं जाए
1: हाँ
0: आजकल जो हम देखो उसने लेका
1: हाँ
0: मन
1: हाँ
0: घरे खातो पीतो का जो मन तो घरे कहीं नहीं आए
1: हाँ
0: और मन जो दखावत का जो लोग बाग के दुनिया
1: हाँ
0: भर जो काय का सजमन घेन सोत बोले
1: हाँ
0: ने घरे भैंसा बांधा
1: हाँ
0: दुआरे रांधा
1: हाँ
0: ये बोले ने पक्का भीड़ ऐसे मन का जे ने
1: ऐसे नीचे कई किस्म जो गोट मन रहे से जो उनके आम के पीला मन बोल सांग तो राय और उता जो ज्ञान जो गोट के बल आम के धर तो
0: धर तो
1: राय
0: राय और समझ तो बोले है ने
1: हाँ। ये बेचो लोग मन का है बेचो पढ़ा लिखा लोग मन बोले हाँ ये बेचो कहाँ ये बेचो नोआ जुग आए और मोबाइल जमाना है असना है उसना है बोलिंग बार खिंड का लहरा नहीं उड़ तो कोशिश करू आद ने
0: हाँ ना
1: हाँ लहरा नहीं उड़ लो ने तो आम के का है एक आध दिन जहाज ने बोल उड़ू वहां तो जहाज नसलन घसरुची हो दे
0: घसरुखची होए दे
1: तो उसने नाम के जहाज ने वधिक जुगे उड़तर नो है आमी खिंड के आप लोग पाए ने खिंड बाट रेंगल उनका है कि आम के घसरुक बोलनी हुए
0: हाँ
1: और आम चो जीव जीव ना हरी कु दिन रहे थे
0: बल्ले ने बोलते बीती गोट ए आए
1: हाँ
0: आदमी आप लोग मेहनत ले धीरे धीरे चेक लेने उनके
1: हाँ
0: भी घसरे नहीं
1: हाँ
0: बोले ने और एक खैर ऊपर डगायन बोले ने खाले बल
1: हाँ
0: घसरुन जाए से
1: तो
0: ने
1: असन गोट मन के लेक कर तो रहे ने
0: हाँ
1: हाँ दक ये तो होली नगद गोट मन ने एदाए आम चलक का है कि और बोले नगद गोट मन आसे आले ये गोट मन के सुनू
0: अलग सुनो ना
2: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाए कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोय लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एच एस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा। कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़ा नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी ना पर्रो मुन्नीटा लेकेन 8% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 8% GST मोला देने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता
6: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: हाँ दादा,
1: हाँ दग बंड को
0: एक है सुंदर जहला रली ना ने
1: हाँ हाँ जहला मैं अमरान दिलु ने हाँ मंत्र दक्के दाय आम चलके आज दरुनी नहीं हुआ हम दीनी साहब ने कानून जो गोट ने
0: गोट
1: आले एक बले सुनु था फिर भाई बहन मन चलके कसन लागली है के सांगवा
0: सांगवा आले

0: श्रोताओं नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारा विषय है घरेलू हिंसा और समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं श्री मयंक सिंह ठाकुर, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल धमतरी से है। तो मयंक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मयंक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा क्या है और इसके क्या क्या प्रकार है।
1: जी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं मुझे अपनी ये मंच प्रदान किया अपनी बात रखने के लिए।
0: जी
1: घरेलू हिंसा बहुत कम लोग समझते हैं कि होता क्या है। मेरा ये कहना है कि घरेलू हिंसा को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां कुरीतियां स्थापित हैं। घरेलू हिंसाओं से सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं वो महिलाएं हैं। घरेलू हिंसा में हम ये जानते हैं कि घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो घर के परिप्रेक्ष्य में रहती हैं, उनके साथ विभिन्न प्रकार के शोषण किया जाता है, जिनसे उनको स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन और मानसिक और शारीरिक कई प्रकार की अपहानि होती है।
0: जी
1: शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक हो, भावनात्मक हो या आर्थिक दुरुपयोग भी इसकी श्रेणी में आता है।
0: जी
1: जिसके में हम विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिसको अगर हम कहें तो शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में होता है मारना, पीटना, धक्का देना, बाल खींचना या विभिन्न प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाना, ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। मानसिक और भावनात्मक शोषण भी अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफदायक है महिलाओं के लिए, कि लगातार अपमानित करना कि आप समाज में मुख्य धारा में रहने लायक नहीं है, या बुरा भला कहना, या धमकाना, घर से निकालने की कोशिश करना, दहेज के लिए ताने मारना, बच्चा ना होने को लेकर उन्हें बातें कहना, कम पैसे अपने मायके से लाने को लेकर कहना, या रहन सहन, खान पान, कपड़ों को लेकर ताने मारना, यह मानसिक शोषण के अंतर्गत आता है।
0: जी
1: यौन हिंसा में हम कह सकते हैं कि महिला की मर्जी के बगैर उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करना या जबरदस्ती करना यौन हिंसा के अंतर्गत आता है।
0: जी
1: इसमें आर्थिक शोषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि महिलाओं को नौकरी करने से रोका जाता है। अगर वो कमाई करती है तो उसकी कमाई को छीन लिया जाता है, कि घर खर्चे में डाल दिया जाता है और उसे उसकी कमाई अपने पास रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। घर खर्चे की जो बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक महिला को, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कई प्रकार की धारणाओं से ग्रसित रहती है और आर्थिक रूप से हमेशा अपने आप को कमजोर और पिछड़ा महसूस करती है।
0: जी तो मयंक जी, जैसे आपने बताया घरेलू हिंसा के बारे में महिलाओं को लेकर, तो इसमें क्या महिला ही पीड़ित हो सकती है?
1: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो बनाया गया है, इसमें पूर्णतः स्पष्ट किया गया कि केवल एक महिला ही जो है घरेलू हिंसा की पीड़ित हो सकती है।
0: अगर जो पीड़ित महिलाएं हैं स्वयं घरेलू हिंसा की सूचना न दे पा रही हो तो कौन कौन महिला की ओर से सूचना दे सकती है?
1: जी सबसे पहले तो महिला खुद अगर स्वयं अपनी जो साथ जो गलत हो रहा है वो बताए तो ज्यादा बेहतर है, परंतु अगर उसे घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, या वो डर रही है, या बताने को हिचकिचा रही है, या किसी प्रकार से नहीं बताना चाह रही है, तो कोई व्यक्ति है जो उसका, चाहे उसका पड़ोसी हो, नाते रिश्तेदार हो, या किसी प्रकार से कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे इसकी जानकारी कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो वह आकर इसकी सूचना थाने में दे सकता है, सखी सेंटर में दे सकता है, नवाभिहान में दे सकता है, ताकि किसी प्रकार से ये एक सही चैनल में अगर आता है तो उसके बाद वो महिला को का हम संरक्षण कर सकते हैं और उसको हम बचा सकते हैं कि घरेलू हिंसा से उसके पीड़ित रहने की आवश्यकता नहीं है, समाज उसके लिए बेहतर करना चाहता है और कानून उसके साथ है।
0: अच्छा, घरेलू हिंसा के कोई ऐसे प्रमुख कारण होंगे कि घरेलू हिंसा आखिर होती क्यों है, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी घरेलू हिंसा के मूल कारण अगर हम कहें तो एक जो पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, सत्ता जमाने की जो इच्छा है कि मेरे नियंत्रण में ही पूरा घर रहे, ये जो पुरुष की एक संकीर्ण मानसिकता हम कह सकते हैं कि वो अपनी पत्नी को या अपने घर में जो महिला है उस पर पूर्णतः अपना अधिकार समझता है, उसे एक वस्तु की तरह प्रयोग करने का प्रयास करता है। ये जो पुरुषवादी मानसिकता है कि लड़कियां या महिलाएं जो है वो कमतर हैं, या दहेज को लेकर उसकी जो लालसा है कि मुझे कितना पैसा या क्या संपत्ति मुझे शादी के माध्यम से प्राप्त हो जाए, या जो शराब की जो लत है, या जो अन्य प्रकार के नशे जो हम देख रहे हैं समाज में जो व्याप्त हो रही है, उस नशे की वजह से जो संकीर्ण मानसिकता आ रही है इंसान के अंदर, ये हो सकता है। और विवाह के दौरान जो संबंध अलग स्थापित किए कर रहे हैं लोग, जो अपनी पत्नी के अलावा जो गैर संबंध बनाए जा रहे हैं, या जो यह शक करना अपनी पत्नी के ऊपर कि इसका कहीं और संबंध है, और उस कारण से महिला को जो शोषण कर रहे हैं कि मैं इसे मारना, पीटना, चिल्लाना, पैसे ना देना, अन्य प्रकार से जितनी भी तकलीफें महिलाएं जो आज फेस कर रही हैं, उनका मेन कारण ये है कि पुरुष ये मानने को तैयार नहीं है कि महिला उसके बराबर की व्यक्ति है।
0: जी तो मयंक जी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला कैसे सहायता प्राप्त कर सकती है?
1: घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है वो चाहे तो अपने पास के थाने जा सकती है,
2: हाँ।
1: वहां जाकर बोल सकती है, कोर्ट आ सकती है, न्यायालय आकर अपनी व्यथा बता सकती है, या विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में स्थापित है वहां आकर अपनी पीड़ा बता सकती है। सखी वन स्टॉप सेंटर जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है जो हर जिले में स्थापित है वहां जाकर अपनी व्यथा बता सकती है, या वो चाहे तो नवा बिहान जो हर जिले में संचालित है वहां जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वहां बता सकती है। महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, वहां कॉल कर सकती है और स्वयं भी कर सकती है। कोई भी इंसान बता सकता है कि इस महिला को यह तकलीफ हो रही है और उसको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की जाती है।
0: जी, जैसे मयंक जी आपने जिक्र किया अभी कि जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है उसके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से कौन सी योजना है जो चलाई जा रही है?
1: जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2005 में एक योजना शुरू की थी, नवा बिहान योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता एवं आश्रय सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत एक महिला अफसर जो संरक्षण अधिकारी के तौर पर कार्य करती है, यह धारा 8 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संरक्षण अधिकारी जो एक महिला ही होगी वह इसकी देखरेख करती है और पूर्णतः महिला को सपोर्ट करती है, उसका समर्थन करती है, उसे न्यायालय तक लाना, मजिस्ट्रेट के सामने उसकी मदद करना, केस फाइल करने में मदद करना, थाने में जाकर के उसकी मदद करना, उसको आश्रय प्रदान करना। तो हर प्रकार से एक तरह से संरक्षण जो शब्द है ये शाब्दिक रूप से महिलाओं को संरक्षण देने हेतु संरक्षण अफसर ही उसको पूर्णतः समर्थन करता है।
0: जी जी, मयंक जी अभी आपने जिक्र किया था कि सखी वन स्टॉप सेंटर, तो इसमें सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती है उसके बारे में बताइए।
1: जी, जैसे कि नवा बिहान योजना जो पूर्णतः घरेलू हिंसा को लेकर ही फोकस्ड है, परंतु जो सखी वन स्टॉप सेंटर है जो केंद्र सरकार की योजना है इसके अंतर्गत महिलाएं या लड़कियां जो घरेलू हिंसा से हो, चाहे यौन हिंसा से हो, चाहे वो बलात्कार पीड़ित हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार से पीड़ित हो, किसी भी केस में वन स्टॉप सेंटर में आ सकती है। वन स्टॉप मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो भी तकलीफ है वो सखी वन स्टॉप सेंटर में हर जिले में जो उपलब्ध है वहां आ सकती है, वहां पहुंच सकती है और वहां पर 5 प्रकार की सुविधाएं ले सकती हैं।
0: इनका भी कोई संरक्षण अधिकारी होता है?
1: जी, ये संरक्षण अधिकारी जो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नवा बिहान में घरेलू हिंसा के लिए विशेष तौर पर हैं धारा 8 के अंतर्गत, वो तुरंत इनकी सहायता हेतु तत्पर रहते हैं, उन्हें इनकी सूचना दी जाती है और वो कानूनी सहायताएं प्रदान करती हैं उन्हें और मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में मदद करती हैं कि किसी प्रकार से न्यायालय में ये केस जाए और इन्हें विभिन्न प्रकार के अनुशासों का लाभ मिल सके।
0: जी मयंक जी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोषों के आदेश अभी प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी, धारा 12 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम में धारा 12 में कोई भी व्यथित व्यक्ति से मेरा कहना है जो महिला है जिसके साथ जो पीड़ित है जिसके साथ जो गलत हुआ है वह संरक्षण अधिकारी के समर्थन के साथ व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत एक से अधिक अनुतोष प्राप्त कर सकता है, चाहे वह घर में रहने का अधिकार हो जहां वो शादी होकर गई है, चाहे उन्हें किसी प्रकार का धनी लाभ लेने की आवश्यकता है वो है, चाहे स्त्री धन है। जैसे स्त्री धन को मैं यहां बताना चाहता हूं सर, स्त्री धन महिलाओं का अधिकार है। शादी के दौरान, शादी से पहले, शादी के पश्चात जो भी धन संपत्ति महिला को मिली है या उसकी पूर्णतः उसकी संपत्ति है, इस पे किसी प्रकार से ससुराल वालों का अधिकार नहीं है और महिला को इसे रखने का अधिकार है। अगर स्त्री धन महिलाओं का उनसे लिया जाता है ससुराल वालों के द्वारा तो ये उसे वापस पाने का अधिकार रखती है, जिसके लिए वह मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष आकर अपना आवेदन दे सकती है और अपनी स्त्री धन को वापस प्राप्त कर सकती है एवं अन्य मूल्यवान वस्तु जो भी उसके हक से वापस लिया गया है उसे दिया जा सकता है।
0: जी मयंक जी, जो पीड़ित व्यक्ति है वो धनी अनुतोष किस प्रकार प्राप्त कर सकती है?
1: जी, अनुतोष इस प्रकार से प्राप्त कर सकती है सर, धारा 12 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिला है उसे किसी संतान के व्यय हेतु या खुद की हानियों में जो उसे तकलीफ हुई है, मानसिक या शारीरिक जो उसे तकलीफ हुई है, उसके लिए कंपनसेशन ये अनुतोष प्राप्त कर सकती है। न्यायालय उसमें स्पष्ट निर्देश कर सकता है कि इतने पैसे या 1,000 रूपये, 1,00,000 रूपये, 50,000 रूपये जो न्यायालय को उचित लगे उसे पैसे दिलवा सकता है ताकि उसको जो तकलीफ हुई है उसके लिए उसे अनुतोष प्राप्त।
0: मयंक जी, घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है?
1: जी, पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। सबसे पहले तो जैसे सखी सेंटर है वहां पूर्णतः महिला स्टाफ होता है
0: जी।
1: अगर कोई तकलीफ है महिला आकर बताती थाने तो महिला स्टाफ उसे पूर्णतः देखेगा
0: जी जी।
1: जो संरक्षण अधिकारी वो एक महिला होगी, मतलब महिला अफसरों को ही पूर्णतः नियुक्त किया जाता है कि महिलाओं को जो तकलीफ हो रही है उन्हें वो अपने विचार रख सके, क्योंकि बहुत से हमारा जो समाज है वो महिलाएं अभी भी घूंघट में रहना या जल्दी समाज में खुलकर बोलने से अभी भी हिचकिचाती हैं। तो इस वजह से महिलाओं को ही इसका दायित्व दिया गया है कि वह अपनी बातों को जो महिलाओं को ही बोले ताकि जो महिला अफसर है उनका पूर्णतः समर्थन कर सके
0: जी। जी मयंक जी, महिला और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी हेल्पलाइन उपलब्ध है इसके बारे में बताइए
1: जी। हेल्पलाइन नंबर मैं बोल देता हूं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में 1500 में आप कॉल कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 में आप कॉल कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन पुलिस नंबर है 1091 और सामान्य पुलिस इमरजेंसी है 112। आप इनमें से किसी भी नंबर में कॉल करके अपनी व्यथा बता सकते हैं और आपको त्वरित आपको समर्थन करने के लिए आपको ध्यान रखने के लिए पुलिस और अन्य जो हमारे प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए उपस्थित रहेंगे
0: जी। जी क्या घरेलू हिंसा के मामलों में समझौता और काउंसलिंग की भी व्यवस्था होती है?
1: जी बिल्कुल, काउंसलिंग की व्यवस्था सखी सेंटर में भी है, काउंसलिंग की व्यवस्था न्यायालय में भी है। न्यायालय भी आदेश करता है कि काउंसलिंग के माध्यम से केस को किया जाए, समाप्त किया जाए, क्योंकि राजी खुशी रहना ही समाज में मुख्य उद्देश्य है। न्यायालय ये नहीं चाहता है कि पति जेल ही जाए, न्यायालय का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो पीड़ित है, जो अपनी व्यथा बता रही है, उसे न्याय मिले और न्याय मिलने के पश्चात वह खुशी खुशी दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहें। अगर काउंसलिंग के माध्यम से संभव होता है तो काउंसलिंग की जाती है, लेकिन अगर ऐसा लगता है ये इसने बहुत ज्यादा तकलीफ दी महिला को और इसने जो हम कह सकते हैं क्राइम किया है, तो उन परिस्थितियों में फिर जेल जाने का भी प्रावधान रहता है। पर यह पूर्णतः महिला पर है कि वो क्या चाहती है, कि अगर वो क्रुएल्टी में केस कर रही है सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में, या घरेलू हिंसा का केस कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही है, तो अन्य या दहेज प्रताड़ना का कर रही है, या फिर मेंटेनेंस प्राप्त करना चाहती है। यह भी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि मेंटेनेंस का जो अधिकार है महिला का, ये बुनियादी अधिकार है। शादी के पश्चात हस्बैंड की ये जिम्मेदारी है कि उसे वो मेंटेनेंस के पैसे दे ताकि वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके
0: जी। अंत में रेडियो श्रोतागण है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है श्रोताओं से कि आपको घरेलू हिंसा रोकना होगा। आपके घर में हो रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रोकना होगा। रोकने का एक ही तरीका है, हर इंसान अगर अपने पड़ोस में क्या हो रहा है ये देख लेना कि क्या मेरे पड़ोस में जो दीदी या भाभी माता हैं उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, तो उसे टोल फ्री नंबर में अगर हम कॉल कर दे 1500 181 10 91 या 112, आपका एक फोन कॉल उस महिला का जीवन बदल सकता है। आपको ये जो हमारी धारणा है कि हमारे घर में नहीं हो रहा है हमें क्या करना है, इससे समाज नहीं सुधरेगा। समाज सुधरने के लिए श्रोताओं को ये जागरूक होना होगा कि हमारे बिल्डिंग में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में ये ना हो। और एक बार ये कुरीति समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे कि महिलाएं और भी ज्यादा खुशी से समाज में योगदान कर पाएंगी
0: जी। तो मयंक जी, आपने घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता विषय पर इतनी विस्तृत से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, आज का अंक हमें यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:27 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आमचो गांव।

0: हाँ जुहार बोंडकू जुहार
1: जुहार ना लजरा जुहार अमर
0: और
1: लिसने
0: अमर लिखा है एची संग संगे आम चुगाओ कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संगवारी मन के मैं लूला
1: मैं बोंडकू
0: हमें दोनों करूं से
1: जुहार। तो लूला दादा
0: हाँ हाँ
1: अमी जोन रेडियो सुन सो दादा दीदी मुन्ने
0: हाँ
1: ओमन काजे राज्य दिना चौसन नगत नगर गोड मन धरु नमरु आउने
0: हाँ और उसकी चिंतक पीला मन के बले आम चो दोनों चो बाटले खूब
1: खूबे
0: माया
1: तो ने हाँ। आम रेडियो सुन तो दादा दीदी मन बोल सो उमन बोले ना याजी लूला और बॉन्ड को अमर लास ने
0: हाँ हाँ
1: कहीं नगर घोट धरु अमर लास वे बोल सो बे ना ने
0: हाँ हाँ अर्धक तो ही बोलो मकसूर ताई लिखी है जेठ समय आए ने
1: जेठ समय आए
0: हाँ और जेठ समय आन बोलो नहीं बोले कितने जान किसान भाई मन जो मन लगे सिंचाई चो जो साधना से हुन मन ये भी बोले का है कि खेती बाड़ी की कर सब चीने और जो भाई मन लगे सिंचाई नहीं आए बोलो हुन मन और बोले काम बुता के करूं भाती बोलो बेड़ा खाड़ा चो तैयारी कर सब चीने कसन बोलो ने खिंडिक दिन पाचे का है कि बुनाई और रोपाई ये भी बोले चमा समर तो बोले समय अमरी से
1: बोले ने आम चो जोन दादा दीदी मन चो मूर्ख मन बोले खेती बाड़ी है ने
0: खेती बाड़ी
1: और खेती बाड़ी करून आप लोग जोन गुजारा बसारा नगद कर सो
0: हाँ
1: और हम जो गर्मी समय ने बोले जो खेती बाड़ी करूं से
0: हाँ।
1: उन काजे आम के ने भूई के अच्छा गुलगुला जपुक लागे ना ने
0: हाँ, हाँ।
1: बल्ले ने जपले ने गुलगुला जपले ने खाले चो जो ढेला उतके से ढेला जो कीड़ा मकोड़ा रहे जो मन चो गार वार रहे देने ऊपर
0: हाँ।
1: उतक लेन फिर का हो ना जसन सूर्य चो बेर चो का चो उजारा है नहीं
0: हाँ।
1: तो उन घाम ने उन कीड़ा मकोड़ा बोल मरुन जाए सो
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: और संगे संगे जो लाटा बुटा बोल रहे से ने
0: हाँ।
1: बेड़ा खड़ा ने
0: हाँ।
1: उन बोले मरुन जाए से
0: हाँ दक ये का है कि घाम बेरा चो बोल खोजाकारी भाई मन सांगला से कि असन जेठ समय ने का है कि बोलो नांगर जोप तो काम
1: हाँ।
0: नांगर जोप तो काम हो ना फिर ये लाटा बूटा के पारी के बल छोल तो काम हो ये सब आई कर रोले का है कि आप चो लाटा बूटा बल सुकुन जाए से और संगे संगे भी बोल लीज के उतक कई किस्म चो बोलू आत की रोग मन जोटा तो बीती कीड़ा कीड़ी मन गार दे रहे सर
1: हाँ।
0: उन गार मन का है कि घाम पाउन भती उन मरुन जाए सर
1: मरुन जाए से
0: जे चले का है कि असन जेड बेरा असन तैयारी कर रोले ने का है कि जमीन तो डहा जाए से ची और संग संगे रोग रही बल कम
1: कम हो सर और आमी आगे बोलाम चो जोन घर चो दादा दीदी मन रला ने
0: हाँ,
1: आम
0: हाँ,
1: चो घर चो सियान सजन मन बोले
0: हाँ,
1: उमन बोले जसन धान बुनाई बोले अमर तो पहले है नहीं ना बेड़ा के कर खाप होत ने
0: हाँ, हाँ,
1: बोले ने खाप लेन काय होए बोले जोन नीचे ले नहीं जोन ढेला उतके दे
0: हाँ,
1: उन नीचे ले जो सूर्य चो जो रोशनी आए
0: हाँ,
1: घाम उन नीचे तक उनके ढेला नीचे ले जाए दे
0: हाँ,
1: और जमीन चो जोन भाप आए उन बोले निकरे दे
0: हाँ
1: असन बोलन बाती आगे ले बेड़ा के जप होता और एकदम गुलगुला मना संगा होत ने
0: हाँ हाँ और ये सपाए बोलो ने आगे जुक चो सियान मन के बोले सपाए जानकारी रहे और उदलाए बोलो ने आम चो सीतकार खापी बोलते रहो
1: हाँ।
0: सीतकार बेरा नांगर जपते रहो बैला नांगर ये भी तो मशीन मन होली मंत्र देख उस नीचे ये भी बोले आमी का है कि आम चो किसान भाई मन का है कि गोटक आगे चो जो सियान मन चो सांग लो गोट खेट ध्यान नहीं दे सत जैसे धान काटला बोलन कुन कुन किसान भाई मन उन सीतकार बेरा बल नहीं खाप सत और उन रहे से और तुरंत रोपा होली बलन उदली दाए पर दूड़ा तीड़ा बनान मर करुन दे तो उन्हें कहा है कि जन रोग रही बोलो ऐसे कीड़ा कीड़ी बोलो ऐसे उन किंडी के अधिक जोंटे से
1: जोंटे से
0: तो ये सफाई गोट के लेख कर लो उनका है कि जन पुराना बोलो आगे जुगले जो न खेती जो तरीका है सियान मन कितलो अंताज रहे
1: हाँ ना
0: तो उन अंताज के बोला हमके ध्यान देते रहे और खेती बाड़ी की करते रहे और ये बेचो जो आधुनिक कृषि बल सत नहीं
1: हाँ।
0: उनके बोला हमके लेख करते रहे
1: हाँ। उनके धरुन नहीं जेले नाम फिर एकदम पीछे रहो ने और ये समय बदले से तो समय अनुसार आम के बोले बदलुक लागे ना ने और बोल खेती बाड़ी मल्ले थोड़े बदलाव तो कर तो रुचि आए और जो नम लगाओ से जो साग सब्जी आए जोन बल्ले आए उनके असन लगा तो रहे कि आम के गर्मी ने कितलो दिन साग सब्जी लगा लेन होए दे तेबे आम जो बरसात अमरू हम दूसरा साग सब्जी लगावा गोट की साग सब्जी बोल लगा लेना आम जो खेती अच्छा उपज नहीं दे से ना तो आम के दकुन दकुन आम के जो साग सब्जी बोले होली कुछ पाना डारा बोल होली उनके बदलाव करते रहता है बोले ने इस
0: हाँ।
1: बार ये सब्जी लगा ले तो दूसरे बार और भी दिख लगाओ
0: हाँ।
1: तीसरे बार कहीं और के लगाओ ने
0: हाँ, हाँ, हाँ। तो असन गोट मन के लेख कर तो रुचि आजकल तो खोजाकारी भाई मन बोले सांग सोत की जितलो आमी ये जो रासायनिक खाद बल सत नहीं
1: हाँ।
0: हुन के बोले जुगेल जुगे देश कुन कुन किसान भाई मन देश की जितलो अगर देव उतलो अच्छा फसल हो बल सत तो असन ने कहा है कि जमीन बोले न सुकले सके उन जितलो उनता बोलो ने रासायनिक खाद आए उन नाप चु देते रहे और खिंडी काम के कम करते कोशिश करते रहे और संगे संगे गोबर खाद होली ये पाना डारा भी थी खत होली और संगे संगे केचुआ खत जैविक खत बलसत और जुगे करूंगा प्राकृतिक खेती बलसत खोजाकारी भाई मन तो ये चीज ने कहा है कि आम चु भूमि बाड़ी बोलनी न से और खातो भी थी जोन जो अरन है जोन साग सब्जी है उन पक्का बल्लो ने स्वाद लागे से और देह हाथ पाए काज खूब नंगत हो आम ये भी जितलो आगर ले आगर हम खत मन के देव देवा और जितलो आम उपजन धरवा उन तो लाभ तो दे दे आम बिक्री भांजरी करून भाती आमी उनके पैसा तो कमाओ मानता राम जमीन नसलन पर पासे फिर कुन लगू तो भेंडा नहीं पाकली बोलो नाम चाहिए घाटा हो दे
1: है ना ये नंगत गोड़ बोल दिस ना बोले ने जो जमीन आम के आम चीज बेरा कमातर नो है आम चो पीला झिला बेरा आम चो पीला झिला जो पीला झिला बेरा बोले उन्हीं जमीन ने मन कमा दे तो आम के जमीन के एकदम नसातर नो है अधिक ले अधिक आम के गोबर खत के उपयोग करते रहे आ गोबर खत तो जो साग सब्जी आए धान पान आए उन खातो ने बोले अच्छा स्वाद लागे से और आम के रासायनिक खाद बोले यूज कर ले बोले थोड़े कम करते रहे काय काय जे बोले ने तो रासायनिक खाद ले आम चो जमीन नसे दे तो अच्छा नहीं होए
0: तो ये गोड बात के बोले आम चो खेतियार भाई मन लेख करत और आम चो भूमि बाड़ी नंगत रेली बल्लो ने फिर ये तो समय आचो पीला झीला बोले हरिक ने रदे और उन मन चो दे हाथ माए बोले हरिक रह दे
1: ना
0: तो ये तो होली ने
1: मैं बोलते रहे ना ये नंगत गोड के तो आमी अमरालू ने तो आम चो लगे और नंगत नंगत गोड बोले आसे ने आई नंगत गोटाई हलवी नाटक आई तो नाटक आई सोर माँ पाचे मंचो सांगवा पहले सांग तो बिता मंचो नाव के पाचे सांगवा और पहले सुनू ना दादी मुझे सुनाओ
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड
3: आपने तो बचा लिया दीदी
2: काम से नहीं
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
6: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
0: हाँ ये तो रही नगद गोट मन ने हम पनाइबल बोलते रहूं कि हम चल गए गोटक हल्बी नाटिका से और ये चुनाव है सोर अली हल्बी नाटिका के आम चल गमराला से बलवीर सिंह कच और एक लिखुविता भाई सदन सिंह नाग आले केवल सुनुता पास फिर भाग धरलो भाई बहन मंच नाग पास सांग

0: कमला दीदी, घरे आशीष री, कहा गेलीस?
1: ओय, ऐसे ऐसे घरे आसे। आओ आओ मन की के बेलीस
0: एबे तो
1: मास्टर इन होतो के ए बाटे एक भूलक लिस नोनी। आओ आ बस।
0: हाँ काय दीदी, सुरता है तो के बल्ले जाऊं दखे दे दीदी लगे बलू।
1: अच्छा कर लीस
0: कसन सपाय लोग ढंगत आसत का?
1: हाँ नोनी, सपाय लोग नंगत आसुरी। तू बस नोनी बस, ये दे लक्ष्मण जो बाबा हाट बाटे जा दे।
0: हाँ
1: हाँ, होनी काजे भाजी तुला तो काजे हरबर होन गेले से मैं। तू बस है।
0: हाँ।
1: मैं यही लगे भाजी के आनु तुला आन दे। एबे होता है आशीष ने नोनी?
0: हो दीदी होता है चियासे का है। अच्छा साक के रान से दीदी।
1: हाँ का
0: आन यही लगे आन, मैं बल करुक लागे दे।
1: रहो बे नोनी। ए दे एबे होए दे झटपट तुलाते तुला आन दे का।
0: मांतर दीदी एबे तू ही भाजी के तो आन लीस।
1: हाँ।
0: काट तो काजी ने
1: होका
0: धो तो काजी पानी जे।
1: ये नोनी धोद लो नहा ले काय कोनी साग के रांधु आतरी, काट तो पाछे फिर धोए दे भी जानो।
0: नहीं दीदी मैं हुनके नहीं बले री।
1: हाँ।
0: काट तो पाछे तो धोचे अस काय।
1: हाँ।
0: मैं काट तो पहिल धो तो के बले से।
1: काट तो पहिल बले भाजी के धोवात। आमी तो के बे काट तो पहिल नहीं धोलू से और पहिल धो के पाछे धो, काय फेर फरक पड़े देता नोनी? रान तोर ची तो आ
0: ए दे दीदी तू ही फेर बल से।
1: हाँ।
0: कि लेकी मास्टर इन होली गुनक मौके समझाए से।
1: नाई नाई
0: मानता दीदी।
1: हाँ।
0: काई बले ज्ञान चो गोट होलो ने उनके सांग तोर ची आए मने।
1: ये भाजी तुला तोर बले ज्ञान चो गोट सना जाले सांगुन देख लो नी, मैं सुनुन देखें दे।
0: हाँ दीदी एदे सुन।
1: हाँ।
0: भाजी ने खुबे बल बुपू गुण जिनिस मन भीतरे रहे से।
1: हाँ हाँ।
0: आमी जसन हुन के कार्टून पानी ने धोऊं से उदल दाए आदो बाग उन सकत बीती जिनिस मन पानी ने जाए से।
1: भोरे से ने।
0: हाँ। और हुन के ही नहीं आमी जसन आगे धोऊं से काय मजा लगड़ून भाती। फिर पाछे काटू से जाले हुन बल बुपू बीती जिनिस मन फोखा नी जाओ।
1: हाँ हाँ
0: साग ने चित रसो।
1: ऐसे ने
0: हाँ
1: असना
0: असना।
1: जाले मैं एक गोट के नी जानते रहे नोनी, खुबे नगद गोट के सांगलिस नोनी, मानता नोनी?
0: हाँ दीदी काय है?
1: आमी तो दूसर साग जसन की आलू कुंदरू बांगा करेला ये सब पाए के आगे काटू से ने फिर पाछे धोऊ से,
0: हाँ
1: काय ये साग मन के बले आगे धोते रहे फिर पाछे काटते रहे?
0: खुब्बे नंगत गोट के बदलीस दीदी। सब पाए साग के आगे धो तो राय फिर
1: हाँ,
0: काट तो
1: राय। हाँ,
0: असन कर लो ने हुंचो भीतर चो बल बपू तो फोखा नीचे जाए।
1: हाँ,
0: संगे संगे और बले गोटो फायदा आए।
1: थे नोनी मैं पानी आने से ता है धोन तुलाते तुलाते तुझ गोट के बले सुने दे।
0: आले आन
1: ए दे काय नोनी, काली गोटक नुआ नखी घेन ले से ए थाने पानी आने से।
0: आन अच्छा तो आसे आन आन
1: ए दे ए नखी तो आए।
0: हाँ
1: अबर सांग साग के आगे धो तो राय ने, और दूसर फायदा काय आए हुंचो?
0: ए दे दीदी दक।
1: हाँ।
0: ए भाजी कहाँ है नहाले कहाँ है मंडाउन रला
1: रला
0: कसन हाथे छिवला कसन नहीं बेड़ा ले निकराउन एता हुता बुला लावे। कौन लगचो माटी और कौन लगचो चिखल काई जाई हो रहे।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: आगे धो तो के हुन सब पाए निकरुन जाए से
1: जाए हाँ, हाँ,
0: कसन
1: हाँ।
0: कार्टून भाती धोलो ने हुत्रो सफाई कहाँ ले निकरे दे कसन दीदी।
1: हाँ,
0: तू इच विचार कर और सा।
1: हाँ नोनी सत्य बोल सी नोनी तुई।
0: और नहीं दीदी
1: हाँ
0: कोनी कोनी बेड़ा ने दवाई बले छितु रसोत।
1: छिछोत का?
0: हाँ बेड़ा ले आनून बिकसोत उदल दा एक के हार काट लो ने साग ऊपरे पड़ लो दवाई बले तो एक के हार नी निकरे।
1: तु सत्य बल सिस नोनी, अदा मैं कहीं ची साग हो आगे धोएं दे পাচে ফের কাটেন দি।
0: এ দিদি, তুই চো পারা চো দুই চার ঝন মেহরার মন কে মনুক মন কে সঞ্জবে রখেন্ডি হাঁক দে সে
1: কাই কাজে
0: মই অসনি গোট মন কে নাই সাঙ্গু এন দে।
1: হ্যাঁ আচ্ছা গোট সাংলিস ননি
0: আলে তেবে এবে মে যায় সে
1: পানি বলে তো পিউতিস ননি
0: কাই নি হয় দিদি পাছে কে তো এন দে চে তেবে পিয়ে দে
1: এসে যায় সে হাও এসে এসে
0: হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

0: असन
1: हो
0: असन आए जाले मैं बोले पाए धोने से आले मैं बोले अमरले ये मन की नोनी ये काय काय सोर जो सांगे तो जाले मैं बोले सुनुन दकेंता ना
2: बस बड़ा है बस
3: बड़ इले का
2: हाँ
3: काय गोटा जल सा
2: अले सपा सुना मन ने नोनी यू रहे
3: मास्टरी
2: हाँ मास्टरी नोनी हुदन दाए हुन सांगली कि नानी गोट होले बले जीवना ने नानी गोट के समझ ले बले हुन जीवना का जे बड़े हुन जाऊआ है कसन जानास
3: जानू
4: कसन
5: कसन आई यार ने
2: हुन असन हुन के मैं सांगे से आमी साग काटू से नहीं पाछे तो धोऊं से है हुन ने साग चो बल्ब फूबी जिनिस मन पानी ने बहुरुन जाय से हुनी का जे आगे साग के धो तो रहा है मने पाछे काट तो रहा
3: है जानू
2: ए गोट के आजी मके मन की नोनी सांगली
0: अच्छा गोट
3: हाँ नोनी आमी जाले असन नी जानू रलू जाले असन नानी सुनी गोट मन के सांग काय
2: ए दे मन की सांग
6: ए दे सुन बड़े आया और सपाय सुना कमला दीदी तो गोटो गोट के समझ ली
2: हाँ।
6: असनी आमी सप्पाय के समझुक लागे दे
3: हो काय नोनी अल समझाओ काय
6: देखा ए तो रहे साग काट तोर गोट अदाय भात चो गोट के बले सांगुन देन
2: भात चो गोट के बले सांगुन
3: सांग
6: हाँ भात रांधु से आमी हुन के पसिया गारू से
3: हो
6: हुन्ने बले हुता चो बल बुपू जिनिस फोखा जाए से यही काजे पसिया नी गारून हुनके असनी आटा तोरा हाँ
3: उन चुआ भात बोलू आजे उसने बीतिया
6: हो बड़े आया
3: है आगे जुग ने तो रांते रला
6: हुनने वाले देह के आगर सकत मीरे से
3: हाँ
2: हो तो काजे तो रोज जे दिना चो गोट है नोनी मानतर असन वाले आए ने
6: हाँ दीदी हाँ ये भी और सुनाता
3: और रास्ता मन
2: आले आले सांगते बे
6: राना बाड़ा करू से हाथ तो बले साफ सफाई रतर चे आए कसन मांतर दखा आमी काके ही बले देतो काजे पानी निकराऊं से कसन निकराऊं से काय ने निकराऊं से
2: फिर गिलास ने नहले
3: नाले उन कसन ने ढबक कनाए बुढ़ाऊं से कसन
2: उसे कसन लाने
3: हो
6: सबसे हाँ हाँ उनके ही तो जानुक लागे से दीदी हैं गोटोक बेला नहाले गोटक मगा महा नहाले डांडी बीती डूमनी कसला मीरे से सुन ला हुनके केबे ही बले पानी निकरा तुर काजे
2: डूम तो राय बोले
6: डूम तो राय सुन ला असन कर लो ने हुन पानी ने हाथ चोबरी नहीं होए डुबुक करते
3: हो सब ते बल्लीस भाई
6: और पानी बले छुक छुक का रहे से और पियो तो लोग मन के बोले छुक छुक का पानी नहीं रहे से
3: सबते सांग दी मास्टरी तो आस ने
0: मानतर तू ही पक्की गोट के सांग लिस नोनी ऐदाय हार गेलो ने मैं बोले डांडी बीती कसला आने देना
1: ओए मैं बोले आने देना मानतर गोट गोट तो आए
6: काय गोटा
2: काय गोटा
1: ये दे ये बे स्वच्छ भारत अभियान चले से जे
6: हुन
1: ने सफाई के सांग सोत साफ सफाई रहा घर द्वार के नीको संगावा गांव खोर के नीको संगावा झाड़ा खोली बनावा बाहरे बाटे झाड़ा नी जा बोलून झाड़ा खोली ने जा बोल सो ने ये सफाई तो नंगत गोठा है मानतर साफ सफाई बोले सफाई बाटे लागे से रांधा सार ने बोले साफ सफाई लागे से ए गोट के जाले मन की नौनी सांगली मके मन के भावली
2: मास्टर नी होली
0: होय ना बोंड का मन की नोनी मास्टरिन बनून बाती खुबे ज्ञान चो गोट के सीख ली समझ ली ना और आम के बोले सिखाय से कितलो नंगत गोट आए ना आले ए कमला इलो लोग मन का जे खिंडिक चाह होले ने अच्छा नहीं होती
2: चाह का जे बल ले का मानतर आजी मन की चो मन कर लो

0: गुड़ बना के तू पीऊन देखा
1: हाल वाला हाल बना बना अच्छा बना ली सुनोनी
0: आले पिया
2: अच्छा होली दीदी।
0: हाँ।
2: देह पाए काजे असनी नंगत सीतर जिनिस मन तो नंगत रहे से। आले सपाए के मैं वाले बाटुक लागे से आले आना
1: तू बस नोनी आमी डोकरी लोग देवक लागू दे तू तो आमचो मास्टर नी आसकाय आम के नंगत ज्ञान के सिखाईसी तू बस आमी बाटू दे
0: मैं बाटे से बस
2: आले बड़े आया आले

0: नंगत सोर्च गोट के सांग रहे दू तीन जन के हुन सांगली फिर आप लोग ड्यूटी ने गेली तेबे आमी बोले आम जो ड्यूटी ने निकालू से समझ लीस
1: बोलो ने बड़ा है मन की नोनी चो तो ड्यूटी मास्टर इन ड्यूटी आए मात्र तुम चो काई ड्यूटी आए गुने
0: ए कमला ये भकवा के तू इच्छी समझाओ बे
1: आले बहु तुम इच समझावा ये बड़ा है मौके समझाओ नहीं सके
2: ए दे बाबू गोटक दिया ले दूसर दिया के बारलो ने दूसर दिया बोले बड़े से कि नहीं
1: हो बड़े से
2: हुन दिन मन की नोनी आमचे घरे ज्ञान चोगोट सोर चोगोट साफ सफाई चोगोट सांगली की नहीं है दिया बारली की नहीं
1: फिर
2: काय हुन आम के सांगली फिर हमी समझुन भातले बे सफाई मी सुन भाती दूसर मन के सांगुन दे हुन चिका जे नी सकलू से असने असने गोटो गोटोक दिया बरते गेले गुलाय गांव ने उजर होए दे की नहीं
0: ए बार समझ लीस भकवाले का
1: हो बड़ा है समझ ले खूबे नंगत करा साथ जाले मैं बोले मोचो हिसाब ने असने चुक चुका सोर चो गोट के सप्पा के सांगते जाएं दे
0: ये ले का तू ही तो बलसी सप्पा के सांगें दे मंतर गोटो गोट के तो सांग
1: काय गोट बड़ा है
0: तू चो घरे झाड़ा खोली तो बना लीसिस
1: हो
0: फिर बिहाने बिहाने झाड़ा खोटी के धरून कौन बात जाते रही
1: फोन नहीं होता होता जाओ कुनी भाई
0: है जाओ कुनी भाई माने तू ही सुनो रा ये बर तू के बिहाने दख ले कहाँ है बाहर या जा तो बाटे फिर दख ये बे तो आमी मेहरार मांदी गांव ने उजर काजी दिया बारुक निकालू से उदल दाय आमी सब पाए दूसर हिसाब ने दिया बारवा दा
1: नहीं नहीं अबर नहीं रांधा सार ले धरुन गुलाय गांव कहाँ गिन गिना नहीं रहे दे ये दे मैं आप लोग कान के धरे से झाड़ा खोली चो टक्कर करें दे झाड़ा कोंडी धरुन कहाँ है बाहर या नहीं जाए
0: ये फर समझ लिस ने
3: ये बोंडको
4: है ना
3: दक कितलो ये बोलो ने हल्बी नाटक सोर रहे ने
4: हाँ।
3: एक तो अमरावरुलु हाँ। और एक लिख बिता भाई रो सदन सिंह नाग और एक आमचो लग अमरावरला एक बलबीर सिंह कच्च अले तक कौन कौन काम कर रहा ये मंचो गोट के बले आर सांगु नाव के सांगुन देस
5: ये तो रला विजय कुमार सोनी श्री रमझम कच्छ
3: हाँ।
5: श्रीमती लक्ष्मी मंडल
3: हाँ।
5: भूमिका दास निषाद सुश्री सरस्वती रायकवार
3: हाँ इतलो लोग मने हल्बी नाटी का सोर ने काम कर रहे ने
4: हाँ।
3: तो ये तो रही ने मंत्र दक आमचे लगे समय आसे और समय दकुन मर का है कि पीला जिला उनके गीत सुनाल खिंडी हरिक हुआ ने आले गीत के सुनुता फिर गावल भाई मंजनाओ के पास सांगवा

0: हाँ दक बोंड को
1: है ना,
0: दक कितलो बोलो ने पीला मंच हाथ के धर नाच तो संगीत रहे ने। हाँ
1: है ना,
0: अरे कित के गाव बीता भाई रोत लगेसर खुदरा मारुन मंच
1: मंचो
0: संगवारी।
1: संगवारी मा,
0: हाँ दक गीत गोविंद के काहे कि आमी सुना चिरु हमने।
1: है ना।
0: हाँ और आम के काहे कि गांव करी किसान भाई मन के बोले आम के लेख करतर मारी बोलो ने मन लगाउन भती किंडिक सुन तो रहे
1: सुन
0: ने।
1: तो राय और ज्ञान ध्यान चो गोड़ी बोल सुन तो गीत गोविंद बोल सुन तो राय।
0: सुन तो रहा
1: हाँ
0: है।
1: तो ल दादा
0: हाँ
1: आम चो जा तो समय बोल होए से ना ने
0: हाँ
1: तो तुई मनरा घर रख सकल मैं
0: हाँ
1: विदा मांगे से।
0: हाँ समय ने बोलो ने जाऊन रोले फिर खाली फिर समय ने अमरुक लाए
1: हाँ
0: होए दे आले।
1: तो ए चीज संगे आम चो गांव कार्यक्रम सुनतुर सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संग जो रहे संगवारी मन के मैं बोंड को
0: और मैं लूला
1: हम दोनों करों से
0: जोहार।
1: जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमचो गांव, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का हल्बी अनुवाद।
1: मचो देश चो सपाई लोग मन जुहार, मन की बात ने फिर गोटोखार तुम चो संगे मिसुन भाती मके खूबे हरिक लागे से। देश चो भीने भीने ठान ने आम चो देश चो लोग मन, देश चो लाभ काजे, समाज चो लाभ काजे असन कैक अचरिच करतो असन काम मन कर सोत और जिदल दाए आमी हुन मन चो गोट के सुनू से तेबे आम के नुआ शिक्षा मिरू आए। आजी कार्यक्रम चो मुरबेरा मैं दौड़ बीती खेला कूदा चो गोट संगे संगे मुर करेंदे जे आमचो देश चो मान बीती छीना होली से। खिंडिक दिन पहल छी झारखंड चो रांची ने राष्ट्रीय स्तर चो बल्लो ने नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता होली। यथा 800 महाखिलाड़ी मन भाग धरला, गुलाय देश भर ले एउन रला। ए मौका ने 4 ठन भिने भिने प्रतियोगिता होली, हुता 4 ठन राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटली। गुरु इंदर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार ए संगवारी मन भीने भीने खेल मन ने नुआ रिकॉर्ड मन बनाला। मैं सबले पहिल इस सपाए लोग मन के खूबे खूबे बधाई दें इसे। संगवारी मन गोटोक प्रतियोगिता जे चो देश भर ने खूबे गोट बात हो इसे होनाए 100 मीटर चो रेस। सोजे 2 दिन चो भीतरे मनुक मन चो 100 मीटर चो रेस ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड 3 हार टूटली। जे 2 झन परातो खिलाड़ी मन असन खेल दखाला हुन मनात गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं विचार कर ले कि एहार मन की बात ने ये 2 झन खिलाड़ी मन संगे गोट बात करतो रहो। हाँ अनिमेश जी जुहार, गुरविंदर वीर तुमके बले जुहार, सत श्री अकाल।
2: जुहार सर, जुहार।
3: जुहार सर, जुहार।
1: आले भाई तुम्ही तो खूबे बड़े नाव कमातो काम करला सास, तुमचे जोड़ी बले खूबे नंगत काम करली। आमी संगीत बाजा ने मिसुन पाड़ धरते दखलू से मानतर हारा जीता ने बोले संगे मिसुन गोटोक हार गोटोक खुरलाए से जाले दूसर हुन के धरुन करुन दखाए से पाछे तीसर हार करुन दखातोर ये खूबे मन के भाव तो असन विषय रली। मचो मना से कि मन की बात के सुन तो लोग मन बोले जानो कि तुम्हें काय काय करुन दखाला साहस।
3: जुहार सर, मोच नाव अनिमेश कुजुराय। मैं 200 मीटर और 400 मीटर चो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना ले से और मैं छत्तीसगढ़ चो आए और सर एबे मैं उड़ीसा ले खेले से मैं पोरू एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चो मेडल धरुन इले और मैं परातोर खेल के बरक 2021 ले मूर कर ले। मैं जिदल नाए स्कूल ले पास हो निकर ले। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर ने पढ़ ले से और जिदल दाए मैं फुटबॉल खेलते रले और कोरोना बेरा बले मोचो आया बाबा मके खिंडी खेल तो काजे छूट देते रला और जिदल दाए कोरोना सरली तेबे मोचो संगे फुटबॉल खेल तो संगवारी मन मके बल्ला कि राज्य स्तर चो प्रतियोगिता होए से तुई जा उता भाग धर और मैं उता भाग धर ले और मैं नी जानते रले कि उताले राष्ट्रीय खेल खाजे सिलेक्शन होए से। मैं उताले राष्ट्रीय खेल खाजे चयन होले और आजी मैं भारत काजे खेले से।
1: हाँ और गुरिंदर वीर जी कसान।
2: जुहार सर, मचना गुरिंदर वीर आए और मैं इंडियन नेवी ने पेटी अधिकारी आए और मैं भारत चो सबले तेज धावक आए बलो ने परातो खिलाड़ी आए। एबे मैं 100 मीटर रेस ने 10.09 चो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना ले से और मैं पहिल भारतीय आए जे 10.1 चो बैरियर चो खाले परा ले से और मैं कोशिश करें से कि मैं ट्रैक और वर्दी ने बले आप लोग देश चो सेवा करें दे। मचो बाबा और दादा दोनों खिलाड़ी रला तेबे आम चो भारत चो गोटोक रुसुम होई से जसन की राजा दियारी ओहो नुआ बरक ओहो तेबे आमी आप लो घर के सारा बाड़ा छुक छुका करूं से तेबे मैं आप लो बाबा चो इनाम मेडल मन के साफ सपक करें तेबे मके खूबे हरिक लागे और तेबे जिदलदाय मैं कोनी मेडल नाले कप के सफाई करतो बेरा पूछे कि ए इनाम के कहाँ ले जीतलास, ए फोटो केबे चुआए। तेबे हुन मन मके आप लोग कहानी के सांगोत कि मैं एथा खेलुक गेले हुता खेलुक गेले ए भीती राष्ट्रीय पुरस्कार जीत ले और आप लोग दल के जितालो बलते सांगोत। तेबे मैं बले उन मन के बले कि मके बले असनी खेल तो मन ना से उन बिहाने पराउक जाओत। तेबे मैं बले कि मके बल संगे निया आप लो संगे। तेबे मके बले आप लो संगे नेवात उदल दाए उन आप लो खेल तो बेरा जे गोट सिखुन रला उनके मके बले सिखाओक मुरियाला। तेबे मचो बले मन लागते गेली मैं हुसैन बोल्ट चो वर्ल्ड रिकॉर्ड के टूटते दखले तो असन हाँस तो आसन कहानी आए। मैं टीवी देखते रहले तेबे आया उनके बंद करून दिली और बल्ली की बेटा ये भी पढ़ तो समय आए तुई पढ़। मैं बल्ले कि आले तुई मके टीवी दकुक नी दिलीस गोटोक दिन असन बले ए दे तुई मके टीवी ने डगरा से आया। बल्ले से कि दखा हो दे गुरिंदर पर आए से बलते तेबे मके बले हरिक लागे दे ए दाए मचो आया मके टीवी ने परा तो बेरा दखो आए।
1: वाह वाह वाह खूबे सुंदर गोठा आए हो तुमचो।
2: जी असनी आमचो कुटुंब आए सर। फिर मचो बाबा बले वॉलीबॉल खेलते रला घर चो चिंता फिकर ने उन खेलुक छांडला उन मनचो सपना पूरा ओक नी सकली। तेबे उन मचो भीतरे उन सपना के दखला कि मचो बेटा उन सपना के सत करुन दकाय दे। तेबे मैं हुन मन संगे गोटियाए और सुने कि मिल्खा सिंह इतलो मसागत करोत। तेबे मैं हुन मन के बले कि मैं बले गोटोक दिन उन सपना के सत करुन दखाय दे। तेबे बलोत कि सपना असनी सत नी होए उन चो काजे खूबे आगर मसागत करुक पड़ुआए। मिल्खा सिंह जी लहू लहू ओक्यातोत घाम ने पराओत दिन दिन भर सीखोत। तेबे हुन तीज मन मचो भीतरे मके चेता तो काम कर ली मचो बाबा मके हिम्मत देओत कि मैं परायन दे जाले मचो देश काजे मेडल आने देश काजे जीते और ए बले रली कि जिदल दाए मैं 100 मीटर रेस ने परा तो काजे तैयार होले। तेबे सपाय मके बलोत कि तुई 100 मीटर ने भाग नी धर 100 मीटर भारत चो लोग मंचो काजे नोहाय भारत छो लोग मन चो देह सो 100 मीटर काजे नी बन ली से। तेबे मके मचो बाबा आमदिया एई बले कि गुरिंदर आमी एकई धरलो से और एके नी छाणू पाठ गुचा नी जाऊं जे मन आम के बलवात कि आमी करुक नी सकूं उन मन के आमी करुन दखावा और तुई करुन दखा से मके तुचो ऊपरे विश्वास आसे। तेबे जिदल दाए मचो बाबा मचो ऊपरे विश्वास करला तेबे मैं हुनी विश्वास के आप लो हिम्मत बनाऊन बाती पूरे हिंडले और आजी भारत चो सपाय लोग बलसोत की तुई नानी दुरिया चो रेस नी भागदर।
1: हाँ दखा तुम्ही दोनों खूबे बड़े मान चो काम करला साहस और सोजे 2 दिन चो भीतरे तुम्ही दोनों 3 हार राष्ट्रीय रिकॉर्ड के टूटालास। 100 मीटर चो रेस ने परात और जसन की गुरिंदर वीर बल्ला कि लोगमन बलुआत कि भारत चो लोगमन चो देहे एक काम काजे नोहाय इतलो कठिन होले बले तुम्ही असन काम के करून दखालास। जाले मैं तुम्ही दोनों ले पूछे से और मन की बात के सुन तो लोगमन बले जान दे कि असन काय बरसक विचार रली काय जिद रली और ये काम कितलो कठिन रली होती।
2: जी सर जिदल दाए मुरबेरा मैं खूबे मसागत कर ले करते।

0: रले तेबे कए खार असन बले लागली कि मैं इतलो मसागत करें से मचो एक काम नंगत आए कि नी आए मांतर मैं नंगत बाटले धरले कसन बल्ले अमदया तुम्ही जीतुक नी सकास कोनी कोनी बेरा काई सिकुक मिरुआए जिदल दाय मैं नंगत फराउक नी सकते रले काई दंड होले मचो घर चो लोग मके खूबे साथ दिला बल्ला की गोटोक दिन गेली गोटोक बरक गेली जाले काय होली एचोले जीवना तो नी सरे सपना के दखुक नी छांट तो राय मचो गुरु बले मके यही सिखाला कि तुई नी करुक सकलिस जाले कोनी दूसर बले एके नी करुक सक असन आम चो लगे लगे चो लोग मन जिदल दाय आम के हिम्मत देववात तेबे हम चो मन चो सकत के भाई नी टूटू आए।
1: हाँ अनिमेश जी
2: सर मके तो सपाई लोग बोलोत कि मैं जिदल दाय बरक 2021 ने मूर कर ले पराउक लाए तेबे मके बोलोत कि दख ये नुआ ठाना है तुई करुक सकसे कि नहीं तेबे मैं बल्ले कि एदाय मैं ये ठान ने ओल्ले से जाले एके करुची आए मोचो बाबा मके बोलोत कि तुई ये ठान ने ओल्लीस जाले पाटे के भई उल्टू नी दख कसन बल्लो ने सफाई बलुआत कि ये कर तो राय ऊन कर तो राय मांतर करुन दखा तो लोग आगर नी रहो तुई एके के भई नी छांड यही बाट ने पूरे हिंटते जा तुचो काजे सपाय बरंचो सहायता आमी करवा कुटुंब बाटले हो कि पैसा खर्चा हो सपाय आमी कुटुंब बाटले हो कि पैसा खर्चा हो सपाय आमी करवा तु सोजे मसागत कर और भारत चो लोग के करुण दखाओ कि भारत चो लोग मन बले पराउक सकोत कसन बल्लो ने मके बले लोग मन बलोत की भारत चो लोग मन चो खेल असन नो आए एथा चो लोग मन सपाय 10.1 चो भीतरे पराउक सकोत नहाले कोनी बले असन नानी रेस के जीतुक लाए नी सकोत मांतर ये बे आमी दुनो असन करुन दखालू कि भारत चो लोग मन बले असन करुक सकोत ये आम चो काजे कठिन नो है आमी करुक सकू ये सपाय गोट मन मके ताकत देवाए और जसन की आमी प्रशिक्षण धरू से और समयाचो अंतर के टूटाते जाऊं से आप लो संगे दूसर लोग के बले ये दखा दे ऐसे कि भारत चो लोग बले एक करुक सकोत और आमी एवे बले करुन दखावा सर एवे आमी दुनो चो सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स काजे बले होली से जाले हुता ये तो प्रतियोगिता मन ने और नगद खेल दखावा।
1: अच्छा दखा मचो मन ने बले गोटक गोठा से और लोग मन बले बोलसोत होती कि तुम्ही दोनों पक्का संगवारिया हास तुम्ही दोनों काई पक्की विचार करू रलास कि तुई मचोरी काट के टूटा लीस एदाय मैं तुचो के टूटा दे कसा ना निमेश पहिल तुम्ही सांगून दखा।
2: सर जी आगे रिकॉर्ड 10.18 चुरली जे मचे रली और पाछे उनके गुरिंदर वीर दादा सेमी फाइनल ने टूटाउन दिलो 10.17 करुन भाती पीछे मैची फेर उनके सेमीफाइनल 2 ने 10.15 करुन टूटाउन दिले तो उदल नाय जेबे मचो सेमीफाइनल होली तेबे आमी दुनो ची हरिक रलु कि अच्छा होली आजी रिकॉर्ड टूटली और आमी दुनो मिशन टूटालू कसन बल्लो ने उदल नाय प्रतियोगिता चलते रली मांतर आमी दुनो आगे लेची पक्की विचार करून रलू उंचो पहिल आमी दुनो सऊदी अरेबिया बले जाऊन रलू प्रतियोगिता ने भाग धर तो काजे तेबे हुता बले आमी दुनो गोट की बाकरा ने संगे रलू तेबे आमी दुनो हुता बले गोठियाओं की भारत चो कम दूरिया ने परातोबिती खेल के फूरे नेतोर आए और आमचे हाथ ने हुन तीज रली कि जेके आमी करुन दखावा हुन देश चो सपाय लोग काजे सिक्या देसे।
1: गुरिंदर वीर तुम्ही काई बोला से
0: आमी दोनों पक्की विचार कर लू कि आमी दोनों नंगत परावा और जिदल दाए बले गोटक दूसर के काम पड़ ले जाले गोटक दूसर काजे उभर रहू से जसन की अभी रिकॉर्ड करते बेरा पहल में कर ले पाचे अनिमेश कर लो जिदल दाए आमी अभ्यास करते रहू ते मैं अनिमेश के सांगते रहे एबे अनिमेश हुन ठान नंगत आसे उता जाऊन बस एबे लाम लाम डाका पका तो अभ्यास करते रहा आमी एथा अभ्यास करवा एथा नंगस अभ्यास करू ओय दे असन आमी गोटोक दूसर के सहायता करते रहू से। ये चोले खेल ने नगद सुधार बोले दखा देवाय जाले मीत बोले होतो राय आमी खेल बाटा चो बहरिया रहू से तेबी संगवारी मीत असन रहू आए और जिदल दाए खेल बाटा जाऊं से तेबे गोटक दूसर संगे प्रतियोगिता करू से। तो ये हो आए कि मैं ए चोले आगर पराऊ आए मैं ए चोले आगर पराऊ आए।
1: हा दखा तुम्ही जे प्रतियोगिता करला साहस जे हुन देश चो मान बढ़ा तो काजे करला साहस देश के ए तो समयाने असन ठाने अमरा तो काजे करला साहस मान बढ़ा तो काजे करला साहस ए तो समयाने देश के असन ठाने अमरा तो काजे करला साहस और गोटोक नंगत विचार ले करला साहस। और मैं माने से कि ये जे तुम चो खिलाड़ी भावना आसे हुन बल्लो ने खेल तोर बले आए गोटोक दूसर के आर दखातो राय और पूरे जातो काजे कोशित करतो राय और फिर पूरे जातो काजे आप लहान के सहायता बोले करतो राय ये सपाय अचरीच करतो काम के तुम्ही करला साहस मच बाटले तुमके खूबे खूबे बधाई खूबे खूबे शुभकामना तुम्ही देश चुनाव के पूरे निया से मके विश्वास आसे असनी मसागत करते रहा खूबे बाढ़ती हो दे खूबे खूबे शुभकामना मच बाटले।
0: धन्यवाद सर तुमके खूबे खूबे धन्यवाद
2: खूबे खूबे धन्यवाद सर
1: खूबे खूबे धन्यवाद। मचो देश चो सफाई लोग मन एवे आम चो देश चो आगर ले आगर ठान मन ने खूबे डाह पड़े से चढ़ चढ़ा घाम तपलो लेहरा असन समय ने आप लो देह चो ध्यान देव पड़े से पानी पीते रहा घाम ने कहा जातोर होलने खिंडिक लेख करून भाती जहा ईश्वर ने सरकार चो भीने भीने विभाग मन जे चेतानी गोट जारी करला से हुनके बले निभुल का संगवारी मन आम चोठान ने डाह के गुचात वाट कए खार रांदा खोली ने मीरू आए तुम्ही बले दखला साहस होती कि जसन जसन डाह बाढ़ते जाऊ आए उसनी उसनी घर चो रांदा बाड़ा चो सुवाद बले बाढ़ते जाऊ आए बानी बले बदलते जाऊ आए कहाँ हांडी चो पानी दखा दे आए जाले कहाँ दही पाड़ुआत कहाँ काचा आमा के उसउआत और फिर मुर हुआ देसिया वाट चो पीऊ तो बानी मन ए मन चो समया देसिया पीऊ तो तीज मन के तो तुम्ही जानास जी तुम्ही उत्तर भारत ने गेलास जाले खूबे ठान मन ने तुमके आमा चो पना मीरे दे काचा आमा चो सुवाद और डहाले अस्थिर बले लागू आए पंजाब हरियाणा जहा हुता लस्सी लस्सी मीरे दे बड़े गिलास बीती लस्सी राजस्थान और गुजरात ने छाछ तो सपाय खातो बानी चो संगवारी होन जाऊ और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश ने सत्तू चो शरबत हुन चो सुवाद के निसांगा पेट भले भरे दे ताकत भले मीरे दे कोंकण और गोवा ने कोकम शरबत सोल कढ़ी दक्षिण भारत ने पानकम निर्मोर सांबाणम और उड़ीसा ने बेल चो पन्ना इस सपाय पीऊ तो बानी ये पीऊ तो बानी ची नहाए भारत चो भिने भिने ठान चो भिने भिने रुसुम मनाए और यथा कएक भारत श्रेष्ठ भारत चो भावना चो झलक बले दखा दे हुआ है और यथा एक भारत श्रेष्ठ भारत चो भावना चो झलक बले दखा दे हुआ है और गोटो गोट के अमदिया सुरता करा से कि ए मन ने आगर ले आगर तीज मन आम चो आप लो रांदा खोली लेनी कर ली से आम चो बेड़ा खाड़ा लेनी कर ली से कोनी बले बड़े कंपनी कारखाना चो नोहाय मानतर कएक पीढ़ी चो जान लो सीख लो गोटमन हुता मिजली से तुम्ही बले डहा बतरबेरा देसी बीती पीऊ तो बानी मन चो खूबे मंजा धरा संगवारी मन जेठ एते खन और गोटो गोट सपाए घरे घरे मुर हुआ और हुनाए आमा आमा के सपाए लोग मन मन करुआत और सपाए घरे घरे एचो गोट गोठिया हुआत सपाए ठान मन चो आमा चो आपलो सुआत और आपलो मंग मंग बास महाराष्ट्र और कोंकण चो हापूस अल्फोंसो गुजरात चो केसर ये तो आमारस चो जीव आए उत्तर प्रदेश चो दशहरी और मचो काशी चो लंगड़ा असन तो लंगड़ा आमा चो गोटो खास गोट रहे से पाक तो पाछे बले कए खार हुंचो रंग हरा चीर हुआ है बिहार चो जरदालू जे चो बास खूबे लाफीले चिताव हुआ है चौसा मालदा सपाय नाव संगे लोग मन चो गेलो समिया चो सुरता मिसली से दक्षिण भारत गेलो ने बैंगनपल्ली तोतापुरी नीलम मलगोवा बंगाल चो हिमसागर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश चो सुवर्ण रेखा बलो ने ठान बदलो ने हुंचो रंग रूप और नाव संगे स्वाद बोले बदलू आए और संगवारी मन आम चो ये यात्रा एदाए गांव ले संसार चो हाट बाजार ने बले अमरते जाए से आजी मन की बात ले मैं आमचो उपजन्य मिसलो आप लोग किसान भाई बहन मंचो सहरानी करें दी।

0: अभी आप सुन रहे थे मन की बात का हल्बी अनुवाद। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम पीला मन का जे गोट। प्रस्तुति है अनीता निर्मल की।
1: नावा नेल्लोर देशम तोरी जोहार। मन की बात तक

କି ମୋଚ ବାଟଲେ ଖୁବେ ଖୁବେ ମାୟା ଅର୍ ଲାଡ଼। तो पिलामन तुम्ही तो सप्पा जाने साहस आमचो देश ने कैक ठन महापुरुष रला और आमचो देश के अंग्रेज मनचो गुलामी ले आजादी का जे जीवन भर लड़ला। कई दिन कई राती जेल में रहुन तकलीफ के बले सहला और आमचो देश चो आजादी का जे आप लोग जीव के बले दिला। तेबे आजी हमी स्वतंत्र आसू हुसनी गोटक महापुरुष रला सुभाष चंद्र बोस। तो पिलामन तुम्ही सपाय सुभाष चंद्र बोस के जानसा तो पिलामन आजी सुभाष चंद्र बोस चो गोटमन के जानू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चो जन्म 23 जनवरी 1897 के उड़ीसा चो कटक गांव ने होन रहे। ए मंचो माय चो नाव प्रभावती देवी और बाप जानकी दास बोस रला। ए मन कटक चो वकील रला। 14 भाई बहन ने सुभाष चंद्र बोस 9वां नंबर चो रहोत। बंगाली परिवार ने जन्म लो सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई ने खूबे नंगत रला। आप लो गांव चो स्कूल ले मूर चो पढ़ाई करला। एचो पाछे 1916 ने कलकत्ता चो प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज ने दाखिला धरला। सुभाष चंद्र बोस के भारतीय सिविल सेवा चो अफसर बनाओ चाहते रहोत। एई काजे कॉलेज चो पढ़ाई पाछे ए मन के सिविल सेवा चो पढ़ाई काजे इंग्लैंड चो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भेजला। ए समय ने भारत ने अंग्रेज मन चो शासन चलते रहे। सिविल सेवा चो परीक्षा ने ए मन के चौथा स्थान मिलली। कई दिन तक ए मन ए नौकरी के करला। मानतर मन ने देश और आजादी भरू रहे तो 1921 ने एमन ए नौकरी के छाड़ून भारत इला। तो भारत एवं राजनीति ने उतरला और स्वतंत्रता चो लड़ाई लड़तो काजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शामिल होला। महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास संगे काम करू मुरियाला। ए मन के कई हार जेल जाऊ पड़ली। चित्तरंजन दास के ए मन आप लोग गुरु मानते रहोत। 1921 ले 1941 चो समय ने ए मन के 11 हार जेल होली। अंग्रेजी सरकार ए मन चो ऊपरे कई मुकदमा चलाला। जेल ने रहुन भाती बले ए मन आप लो लक्ष्य ने नी भुलकला और भारत चो आजादी काजे काज करते रला। आजादी चो लड़ाई काजे आप लो सर्वस्व न्यौछावर करतो असन महापुरुष चो नाव के सुनून आम के गर्व महसूस हुए से। ए मन वीर सैनिक योद्धा महान सेनापति और कुशल राजनीतिक गिरला। ए मन देश के आजादी मिरो एचो काजे खूबे संघर्ष करला। ए मन भारत चो महान क्रांतिकारी रला। गुलाम भारत चो आजादी काजे ए मन आजाद हिंद फौज चो गठन करला। असन तो ए मन कैक ठन नारा लिखला। ए मन चो ए प्रसिद्ध नारा आए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और गोटो गाय दिल्ली चलो। तो सुभाष चंद्र बोस जो बाल चुनाव रहे एमिली सेकल और एमन जो बेटी चुनाव रहे अनीता बोस। सुभाष चंद्र बोस के नेताजी और देश नायक जो उपाधि कसन मिरली आल एके जानू। तो पिलामन जर्मन जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस के सबले पहल नेताजी बलून रहे। एचो पाछे सपाय ए मन के नेताजी बल्ला। नेताजी संगे संगे ए मन के देश नायक बले बल्ला। सुभाष चंद्र बोस के देश नायक चो उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर देव रहे। स्वतंत्रता संग्राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभातो बीता नेताजी चो 18 अगस्त 1945 ने गोटक विमान दुर्घटना ने ए मन चो मृत्यु होली। तो पिला मन दखा तुम मन तो सुभाष चंद्र बोस जो कितलो अच्छा देश ने काय काय काज करला ये गोट मन के तो जानलास। अब पिला मन दखा तुम्ही बले असने नंगत पढ़ा लिखा हुआ और नंगत पढ़ुन भाती आप लोग माए बाप चुनाव के और आप लोग गाँव चुनाव के और संगे संगे आप लोग देश चुनाव के बले आगे बढ़ावा। तो पिला मन दखा ये गोट के तो सुन लो मंतर अदाए तुम मन का जे गोट गीत आन ले से ताले एक गीत के बले सुनू।

0: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन

0: साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए, मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता से संवाद पर आधारित कार्यक्रम मन की बात का गोंडी अनुवाद।
5: మన్ కీ బాత్ తగా వెండోండాం మీ సంగే జుడే మాస్ నాకి నక్కై వేడక లగే మాయంత దేశేంత అడకడక చెప్పానాకే మన్వ దేశేంతోర్ మానేర్ దేశేంత నెలాత్మైదే సమాజత నెలాత్మైదే నెక్కై నెల నెలత కాంబూత కియంతోర్ అదేన్ కేంజిత్కే మాకి నెక్కై వేడక వాయంత నేట కార్యక్రమ తగా నన్న ఎథ్లెటిక్స్ తే దేశేంత ఈసొంత దే ఉపలబ్ధికిన్ కెతితాన్ చుడున్ దిన మున్నే జార్ఖండ్ త రాంచీ తగ్గా నేషనల్ సీనియర్ ఎథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ హారాజీత కార్యక్రమ ఆస్మత్త అగ కమ్తకమ్ 800 ఎథ్లెటిక్స్ ఖిలాడిర్ వాస్మత్తోర్ దేశమెంట్ తిన వాస్మత్తోర్ అచూట్ 4 అడ్కేడ్కే కర్సాన్ తగ్గా 4 రాష్ట్రీయ రికార్డ్ టూటే మత్త గురిందర్ వీర్ సింగ్ విశాల్ టీకే తేజస్విన్ శంకర్ దేవ్ మీణా ఆడ్ కుల్దీప్ కుమార్ వేర్ అలగ్ అలగ్ కేటగిరితే ಪೂರ್ಣ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬನ್ನಾಕಿತ್ತೋರ್ ನನ್ನ ಸೊಬ್ಬೇಡಕ್ ಮುನ್ನೆ ವೇರ್ ಕೊಂಡೇಕಿ ನರ್ಗೆ ನರ್ಗೆ ಬದಾಯಿಯಂ ತಾನ್ ಸಂಕ್ತೋರಿ ಈದ್ ಕರ್ಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾ ದೇಶೇಮೆಂಟ್ ತಗ ನೆಕ್ಕಾಯ್ ಚರ್ಚಾ ಆಯಂತ ಅದ್ ಬಾತಿತ್ಕೆ 100 ಮೀಟರ್ ಮಿರ್ರನದ್ ಖೇಲ್ ರೆಂಡ್ ದಿನಾತ್ ಲೋಪ ಮಾನೇರ 100 ಮೀಟರ್ ಮಿರ್ರನದ್ ಖೇಲ್ ತಗ ನೇಷನಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮೂಂಡ್ ದಾಮ್ ಟೂಟೆ ಮತ್ತ ಈದ್ ಬೂತಾ ಕೀಸ್ ತೋಹ್ತೋರ್ ಗುರಿಂದರ್ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ನನ್ನ ಆಲ್ಸ್ತಾನ್ ಈದಾ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ತಗ ನನ್ನ ವೇರಸಂಗೆ ವೆಹತಿತಾನ್ ಅನಿಮೇಶ್ ಜಿ ಜೋಹಾರ್ ಗುರಿಂದರ್ ವೀರ್ ನಿಕಿನ್ ವೆಂಡ್ ಜೋಹಾರ್ ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್
6: ಜೋಹಾರ್ ಸರ್ ಜೋಹಾರ್
5: ದಾದಲೋರಿ ಮಿಡ್ ನೆಕ್ಕೈ ನೆಲ ಕರ್ಸಿ ಮಂಜ್ ಸಫಲ ಅತ್ತೀರ್ ನೀವ ಜೋಡಿ ವೆಂಡ್ ನೆಕ್ಕೈ ಕಮಾಲ್ ಕೀಸಿತ್ತ ಮಮ್ಮ ಪಾಠ ಡಾಕತೆ ಇಡ್ವಿಡ್ ಏಂದನದ್ ಉಳ್ಸ್ ಮತ್ತೋ ಮತಿ ಕರ್ಸನಗ ವೆಂಡ್ ಇಡ್ವಿಡ್ ನೆಕ್ಕೈ ನೆಲ ಕೀಸ್ತೋತ್ತೀರ್ ನೆಕ್ಕೈ ನೆಲ ಕಿತ್ತಿಡ್ ಮಿಡ್ ನನ್ ಚಾಹೆ ಮಾಯಂ ತಾನ್ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೇಂಜನೋಡ್ಕಿನ್ ಪತ್ತ ಚಲೆ ಮಯ್ಯರ್ ಕಿ ಮೀಡ್ ಕಿತ್ತ ಭೂತಾನ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಕೊಂಡೇಡ್ಕಿನ್ ಅಯ್ಯರ್
6: ಜೋಹಾರ್ ಸರ್ ನಾವ ಪೆದ್ದೇಳ್ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ನನ್ನ 200 ಮೀಟರ್ ಅವ್ರ 400 ಮೀಡ್ ಮಿರಾನ ಖೇಲ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಜಿಡ್ತಾನ್ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ತೋನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಇಂಜೆ ನನ್ನ ಒಡಿಶಾ ತಿನ್ನ ಕರ್ಸ ಮುಂತಾನ್ ಸರ್ ನನ್ನ ನೀರೆ ಏಷಿಯನ್ ಮೆಡಲ್ ಆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ವೇಣ್ ಜಿಡಿ ತತ್ತಾನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಎಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 2021 ದಿನ ಮುದುಲ್ಕಿತ್ತಾನ್ ಅಚುಟೆ ನನ್ನ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಸ್ ಆಸ್ ಮತ್ತಾನ್ ನನ್ನ ಸೈನಿಕ್ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಬಿಕಾಪುರ್ ತಿನ್ನ ಪಾಸ್ ಅತ್ತಾನ್ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಮುನ್ನೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕರ್ಸೋರ್ मत्तान और नालोत्तर कोरोना तय समय ते नाकिंग उचूर छूट इतोर की निम्मा अंज मिर्राना खेल करसा अचूटे कोरोना मारान पै नाना फुटबॉल तोर संगतोर केत्तोर की स्टेट मीड आयना मिंदे निम्मा अंज अग्गा शामिल आईम नन्ना अंज शामिल अत्तन नन्ना कुनवा मत्तान की अगा नेशनल स्तर तक सिलेक्शन आया मुंता नन्ना अगा नेशनल ते सिलेक्ट अत्तन और नेड़ नन्ना भारत ताकेड़ कर समुंतन अंतरराष्ट्रीय स्तर ते कर समुंतन
5: और गुरिंदर वीर जी निमकेला
7: जोहार सर ना पेदड़ गुरविंदर वीर आंध नन्ना भारतीय नौसेना ते ऑफिसर मिंदेना आड़ नन्ना भारत ता सबड़क रोकते मिराना खेलते 100 मीटर दौड़ते 10.09 सेकंड ते मिर्री नेशनल रिकॉर्ड बना कितन और नन्ना पहला भारत तोन माने 10.1 बैरियर था अर्ड तीना मिरतान और नन्ना कोचिस किया मुंतन की नन्ना मिरना खेल तगा और वर्दी तगा वेंड देशम ता सेवा किंतन ना बाबो और तादो इडवीर वेंड खेल करसानोर मत्तोर मावा भारत संस्कृति में दे की बेंटिन वेंड बात है पंडू माता दीवाड़ पुना वेटसा अचूट ममा लोना ता सफाई की तुम अचूट नाना बाबूस ना सील्ड किन साफ किया नोना मेडल किन साफ सफाई किया नोन ना कि अनेक नेला लगे आयाना बेदेवेंड सील्ड तीन साफ किया न पे नाना पूछा किया नोन की बाबो ये सील्ड बेगती ना जिटतीन इद मेडल बेगा तीना जिटतीन अचूट वोर नाकिन केतानोर की नना इगा करसालय अंज मत्तन ईद नेशनल मेडल जिड़ताना इंजो नाकिन केतानोर अचूट नना वेंड ओनकिन केतानोन की इंजे नना वेंड बेदे खेल करसितान वोर नरकोम मिर्रालय दयानोर अचूट नना वेंड केतानोन की नना वेंड मिसंगे मिर्रालय वतान नना पेर के वोर नाकिन वेंड ओयानोर वोर नाकिन नेरसिकियानोर नाकिन वेंड नेकाय मनवत्ता नन्ना उसेन बोल्ट नद वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेम आया नद वेंड उड़तान इदनावा वेसुड मींदे नन्ना इंजे टीवी उड़सोर मत्तन यायो वासमंज टीवी बंद की सीता आड़ केतंद की पप्पा मोडेम आयान समय अत्ता निम्मा पोडेम अईम नन्ना केतनोन की निम्मा नाकिन टीवी उड़ाले इविन ओन दिना इले वेंड वाता की निम्मा नाकिन टीवी तगा उड़ीतीन और केती तीन की और गुरिंदर मिर्रा मुंतोर अचूट नाकिन वेंड ने कह वेड़ का आयानत की ना यायो नाकिन टीवी तड़ उड़ीता
5: वाह वाह वाह ने कह नलतर माटा केतीन भाई निम्मा
7: इंग सर मम्मा केन सुडला लोकिनम सर कोनीना बाबो वेंड बालीबाल करसानोर लोता तिपालकिन मैदे वोर तम्वा करसाना नान विडस्तोर ओना सपुन पूरा अईवा मत्ता वोरना लोपा उड़तोर की वेरना सपुन तीन पूरा किंतोर ओना संगे नना वेहतानोन खेंजानोन की मिल्खा सिंह बेचोर मेहनत कियानोर मत्तोर नना ओनकिन केतनोन की नना वेंड ओंड दिना नी सपुन पूरा किंतन और केतानोर की सपुन इले पूरा अयो अदेन मैदे नेकाय मेहनत किया न दाता मिल्खा सिंह नेतुर पोरसानोर उब्बमते मिरानोर पियाल पोड़द टेर्निंग नेरसानोर युमाटा नाकिन नेकाय सिखेम खित्ता की नना वेंड देसेमता मैदे इद मिराना खेलते मेडल तत्तितान और नन्ना 100 मीटर दौड़ मन कितांक सब्बे तोर केतानोर की 100 मीटर अंगडम 100 मीटर भारत तोरा खेल अयो भारत तोरा मेंदुल 100 मीटर दौड़ता मैदे बनेम अयो अचूटना बाबो केतानोर की इंजे गुरिंदर मन कितोर इंजे पेर के गुचानद अयो वोर केतोर की निम्मा इदेन किया पर दितिन ना कि नी पोर्रो भरोस मिंदे ना बाबो ना पोर्रो भरोस कितांक ओना भरोसा तीन हिम्मत बना किस नना आगे बढ़ेम अत्तन और नैन कोडे भारत तोर केत्ता मुंतोर की वाह निम्मा किस तोहतीन भारत पेदेर पोरो कितीन
5: उड़ाट मीर इडवीड नक्काय कमाल की सित्तीर और अचाम रेंड दीना लोपते ने मीर इडवीड मूंदाम नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा कितीर 100 मीटर ते मिर्रनाथ बाले गुरिंदर केत्तोर की कोंडेतोर केतितोर की भारत तोर मेंदुल इद खेल करसान लाय बने माइयो इंजोर इच्चोर मुश्किल ते वेन मीड इदेन कीस तोहतिर नन मीड ईडवेड संगे जाने माया वेहतितान की और मन की बात केंजनोर वेन पुंदान तियार मिंदेड की बाता जिदमत्ता बाले आलस्तीन और बाले इद कीस तोहतीन इद बेचोर मुश्किल मंता
7: इंगो सर नना गुरिंदर नना सुरुते सर नरगे तिपालतन नरगे दाम मनते वेंड वत्ता की नना सही किया मुंतन की गलत नना सही कितन बार इतके अटिकेन मम्मा जीडुम बेचुट बेचुट मम्मा सिखेम वेंड आतोम नना हारेम अतके अचोन लगे मया ना की नेंड नना नेल्ला करसोन मेंदुल तगा बेगाय वेंड देमा बाता अतके अचोन ना लेतोर ना की नेकाय संग यानोर और केतनोर की बाढ़ अयो नेटा दिनाम अंगड़ मत्ता इतके दिना रोज अंगड़ मन्नो सपुन उडानतान वीटसाना अयो अचूटना कोचवेंड नाकिन केतनोर की निमा इद किया परवोके बेनोडेंड किया परवोर अचूट नाकिन नेकिया बल्लाम दर रखता एरेतोर कोंडेतोर हौसला पेटसी कित्तोर अदेन के नन्ना इद किया पर्रतान
5: अनिमेश जी
6: सर नरगे तोर केतोर की अचूट नन्ना 2021 ते करसाना मोदुल किस मत्तान अचूट नाकिन केतोर की उड़ा इत पुना फील्ड मिंदे निम्मा किया पदिदिन की बाले अचूट नन्ना केतनोन की इंजे नन्ना इत बूता ते नेंगतान इत के इदेन किस तोहतितान नन्ना नन्ना बाबाल वेंडे अटे के नाकिन केतोर की निम्मा इत बूता ते अत्तीन इत के बेचुट वेंडे पेर के मल्स उड़मा बाड़ इत के आलसी तोर सुबे तोर कोनी अदेन किस तोहतानोर कमे मंतोर निम्मा इत फिल तगा निंगतिन इत के अध्ययन किस तोहताना मुन्ने पेरसना निकिंग बाताय वेंडे जरत मिंदे इत के ममा इन तोम निम्मा मेहनोम मेहनोम कीम और भारत किन तोहसीम की भारत तोर वेंडे इदेन किया परदितोर बार इत के नागिंग वेंडे नरगे तोर के तोर की भारत तोर इत करसा परवोर कोनी इंजे ममा इदवोम इत किस तोहतोम की मामा सुबे तोम किया परदितोम इसोन ता बाता वेंडे इल्ला की मामा किया परवोम मामा टेर्निंग सीखेम आयाना पाए मामा कम समय ते नेक्काय रोकते मिर्रा मुंतोम इदेन गुल्लाय देशेम तोर वेंडे उड़ा मुंतोर की मामा देशेम तोर वेंडे इदेन किया परदितोर और वेंडे मामा किस तोहचितोम सर इंजे मामो इडवीड चयन कॉमनवेल्थ गेम्स तगा वेंडे अत्ता अगा वेंडे मामा निलाय किस तो तोम
5: हाँ इंगो ना मंते वेंड ओंड आलसुड मिंदे और कोंडे तोर्क वेंड नन केंस्तान की मीड इडवीड नडमा दोस्ती वेंड मिंदे मीड इडवीड आलस्तीर की निम्मा ना रिकॉर्ड तोड़ा कित्तीन नन्ना नी रिकॉर्ड तोड़ा कीन तानी जाओ की बाले अल्ले अनिमेस निम्मा केला
6: सर जी मुन्ने इत की रिकॉर्ड 10.18 ता मत्ता अद नायद मत्ता ताना पेर के अध्ययन गुरविंदर दादाल सेमीफाइनल ते तोड़ा कित्तुर 10.17 सेकेंड ते ताना पेर के अध्ययन नन्ना वेंडे सेमीफाइनल 2:10.15 किस तोड़ा कित्तान अचूट नावा सेमीफाइनल अत्ता पेर के मम्मा इडवोम वेड़गते मत्तोम की अले नेंड रिकॉर्ड टूटेम अत्ता मम इडवोम तोड़ा कित्तोम बाड़ीत के अचूट नेकाय जोश ते मत्तोम मम्मा मामा सऊदी अरबेंडे अंज मत्तोम हारा जीता करसले अचूट मामा इडवोम अग्गा आस्तोम की माँ भारत तपेदेर तीन पुरो ओयाना अद मावा कैदगा मिंदे अद्दे बला माँ की नेंड पेदेर गर्सी किया मुंता
5: गुरिंदर वीर निम्मा बाता केते तीन
7: मामा इडवोम अलसतोम की मामा इडवोम नेकाय नेला मिरितोम बेचूड माकिन औरतुंग औरतीनद जरत मत के अचोन मम्मा संगे निल्स मत्तुम नना बना कित्ता रिकॉर्ड बना कित्तान तना पेर के अनिमेश बना कित्तोर मम्मा मिरालय तियार आसोम मत्तुम अचूट नना अनिमेश किन के तन की अनिमेश इंजे अद ब्लाक नेल्ला मिंदे अंदेनग अंजे उद्दा अग्गा तीने स्ट्राइड किम मम्मा तियारी इग्गा किया काल मम्मा इलेकेन औरतुर संग इतोम दोस्ती बैंड मंदे मती सर ममा ग्राउंड त बैदे मंदे करसाना तान बैदे मावा दोस्ती मिंदे ममा ग्राउंड बैल तगा अतके हरा जीता हिसाब ते मंतोम इले आता की नना वेनते रोकते मिरितान वोर केत्ती तोर की नना वेनते रोकते मिरितान
5: उड़ाट मीर जोन इत कित्तिर देशेम ता मान पड़सी कित्तिर देशेम ता वायान भविष्य ता मैदे कित्तिर और नन्ना कितितान की मियाद इत खेल भावना मिंदे और करसाना वेंड नकाय नला मिंदे और तुंक और तोर चुनौती वेंड इयनाद और तन पेर के मुन्ने पेर सलाय कोशिश वेंड कियनाद और मुन्ने पेर सलाय और तुंक और तीना संग वेंड इयनाद इत नकाय नला तत बूता मिंदे मीकी नायाकेट नरगे नरगाय शुभकामना बधाई मीड इलेकेन देशेम ता पेदेर पोर्रो एविकी मूट नाकिन पूरा भरोसा मिंदे की मीड इलेकेन मेहनत कीन तीर नरगे पेदेर गड़सी तीर नरगे नरगे शुभकामना
7: धन्यवाद सर
8: धन्यवाद
5: नरगे नरगे धन्यवाद नावा नेलोर देशेम तोरी इत सम्याते नरगे चेपाना के नकाय एद उबाम पेड़स्ता नरगे उबाम कास्ता वेड़ी ईसोन सम्याते अपना दियान तासना नकाय जरूरी मिंदे एर उंडोरेन मनुट एद एदते पेशनद मिंदित के केन संभले मासे पेशाट इदेन लय सरकार वेंड नरगे विभाग नग नियम जारी की सितो अदेन वेंड मार्गनत अयो संगतोरी मनग उबाम ते जूजना तरीका डोडा अटान खोलीता वेंड दुर्किता मीड वेंड उड़तीरे बने की बाले बाले उबाम पेड़सीता आले आले लोत्ता अटान खोलीता स्वाद वेंड बदले माता कुंडते एर मंता फालतग दही इंधनद मंता मरका मंता जावा मंता देसी जावा लेकुटाद मीड कौन पुत्तिडे मीड अगर उत्तर भारत के अतके मिकिन अगर दुर्किता मरका जोम्मा काया मरका नत सुवाद और उबाम ते सलवा वेन दुर्किता पंजाब हरियाणा ताके अतके लस्सी दुर्किता बढ़िया गिलास ते लस्सी दुर्किता राजस्थान आड़ गुजरात तगा छाछ ईंधन दुर्किता और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश तगा सत्तू ईंधन तानत शरबत अद नकाय नला मंता फोट्टा वेण निंदिता और बल्लाम वेण दुर्किता कोंकण और गोवा ते कोकम शरबत सोलकाड़ी ईंधन दुर्किता दक्षिण भारत ताके अतके पान काम मरका जोम्मा नीरमोर संभारम ईंधन आड़ उड़ीसा तगा बेलपाना ईंधन दुर्किता भारत अड़के अड़के चेपाना के रख रखता पारंपरिक हिसाब ते मिंदे अदेनगा एक भारत श्रेष्ठ भारत ता आलसुडबेंट तोपिता और उन माटा ता दियान पकाए तासा वाले इव सोब्बे दिनसी मनवा अट्टान खोली तिनाए दुर्किता मनवा वेड़ा तिनाए पेस्ताव मिंदे बेदे बढ़िया ब्रांडिंग आयो मती मुनेट हिसाब तद अनुभव अग कली मिंदे मीड़वेंड उबाम ता इत सम्याते इवेन उंज नकाय वेड़ का आईमुट संगतोरी डोय कालाम ते वेंडोन माटा सुबे लोह की नग केंजलाय मधुलाता अदबात इतके मरका मरका भारत तग बेदे वेंड ईसों ता जागा इल्ले किया गा मरका इल्ला इंजो कोंडे क्षेत्र ते मरका मिंदे तन सुवाद तन गब नकाय नला मंता महाराष्ट्र और कोंकण ता हापुस अल्फोंसो गुजरात ता केसर उत्तर प्रदेश ता दशहरी और कासिता लंगड़ा इंदान पेदेरता मरका मिंदे लंगड़ा इंदान पेदेरता मरका ता खास माटा मंता पंडत पेर के वेंड अदेनद रंग हरा मंता बिहार तद जर्दालू अदेनद गब इचोर नेल मंता की जुई तीन अदेनद पदेन पुंदलाय आता चौसा मालदा इव कोंडे पेदेरी ना आंबा संगे मानेरा सुरता जुड़े मास मिंदे दक्षिण भारत ता क्यानूट बंगानपल्ली तोतापुरी नीलम मलगोवा बंगाल तहिमसागर ओडिशा आड़ आंध्र प्रदेश तद सुवर्ण रेखा इतके जागा बदले माता मरका त रंग रूप वेंड बदले माता और अदेन स्वाद वेंड बदले माता और संगतोरी मरका त ईद यात्रा इंजे नार्थीना ग्लोबल आटोम तक वेंड नेंड मन की बात त संगे नन्ना मरका पुटिकियनोड किसानीर तमूर एलाडीर नकाय नल इंजो के तम तान मीड देशेम तक कृषि कमाई तलाय नकाय नल बूता की अम तीर इलेकेन बूता किशोर मन्नुट संगतोरी एद ता इत समय ते स्कूल न छुट्टी कोन मनताय मती नन्न उन ईसों तत क्लास ते माटा के तितान अदे नग मीड भर्ती अतके मन वेड़ का आता संगतोरी उन माटा तीन आलसाट उन ईसों त स्कूल मिंदे अग पेकोर वातोर लेयोर वातोर और सियानीड वेंड वातोर अग बेदे वेंड फीस लगे मयो बढ़िया बिल्डिंग वेंड मन्नो बेदे वेंड कक्षा मन्नो सो बेड़ वेड़ का ता माटा इद की अद खिलास कुयर तगा लगे माता संगतोरी ईदोन वेसुड अयो ईदोन निजाम त कोशिश बूता मिंदे केरलाम तद आलुआ तगा साजी वला सेरिल जी ईसों तदे उन एर तगा नारतानद कलब चलाकी अमतोर इंडियाना 15,000 ते दीबे मूल अगा नार्तना नेरस्तोर साजी जी दिव्यांग पेकोड किन वेंड एर तग नार्तना नेरसिकितोर इत कोशिश ता नडुम ओन नोपवेंड मिंजे मिंजी मिंदे चुडून वेडसा मुन्ने ओन ओडा मुंडी अगा नरगे छात्रालोर डुल्ली मत्तोर अद घटना ते साजी जी नरगे आलसी मत्तोर और आलस्तोर की अगर फेकोड़ की नार्तना द्वास मत क्या चोन नरगे फेकोर जीवा बचे मायर अचूट तिनाय मुदुलत्ता ओन इध अभियान संतोरी साजी वाला शेरिल जी नद बतकार माँ की नरगे माटा की निरसिकिंता सेवा किया लय न कह बढ़िया साधनता जरूरत मन्नो जरूरी मनता और नलत आलसुड और अटकेन किया न कोशिश बूता इवे न संगेन हजारों मानेरा बतकारते बदलाव आया परदिता नव नलोर देशेम तोरी अत्ताव दिनाते ना किन यूरोप ता नीदरलैंड तगा दायान मौका दुर्की मत्ता अगनना नरगे बैठका नगा काली मत्तान अचुटे ओन समय ईसोंता वत्ता अदेन उर्स कुंडे भारत तोरा मन वेड़का अत्ता नीदरलैंड तगा आसमत्तद ओन विशेष कार्यक्रम तगा चोला काल तद मुनेटा तांबाता पट्टी भारत किन मल सित्तोड़ अद कार्यक्रम तगा नीदरलैंड तोर प्रधानमंत्री वेंड वास मत्तोर इव तांबा तद पट्टी किन पोईस नाकिन देश विदेश तीना नरगे संदेशी दुर्गमता नरगे तोर वेड़का आयम तोर दुनिया मेंट तमिल कुटमा तोर वेंड इदेन संग नकाय वेड़का आयम तोर संग तोरी इद ताम्र पट्टी इंदन तीन पोईस नरगे तोर मनते सवाल वेंड मिंदे अदेन के नन्ना इवेन संगे जुड़े मत्ता चुडून माटा किन मिकिन केतितान इदे नगा 21 बढ़िया और मून सुडला पट्टी मिंदे यु मुख्य रूप ते राजा राजेंद्र चोला प्रथम ताकेट तम्व बाबो राजा राज राजा चोला न उन वचन तीन पूरा कियान संगे जुड़े मास मिंदे इदे नगा आनाई मंगलम नारकिन ओंडु बौद्ध विहार दान यलय केत्तद मिंदे इव ताम्र पट्टिका नगा चोला वंश त उपलब्धि नद माटा वेण मिंदे इवे न संगे पता चले मातकी चोला साम्राज्य त समुद्री ताकोत बेचोर दुर्समंत दक्षिण पूर्व एशिया त देशेम किन संगे ओर संबंध जानकारी वेण इवे नग दुर्किता चोला साम्राज्य त समृद्ध इतिहास और संस्कृति त पुर्रो माकिन कोंडे किन नकाय गर्व मिंदे संगतोरी माव सरकार भारत त ईसोंत नकाय अमूल्य धरोहर किन राका की स्तासलय नकाय कोशिश बूता कियम त इदे कमते ज्ञान भारतम अभियान ते छत्तीसगढ़ त मल्हार त गवेंड और नकाय नलक होजा कारी बूता अत्ता इगा मून तांबाता पट्टी दुर्कता औ पांडु वंशी राजवंश तोर महर्षि बालार्जुन त शासन काल ते जुड़े मत्तद इंजो माने मायम तोर खोजा कारिलोर केति तोर की इव छठवीं सातवीं सदी ताव मिंदे इतके 1400-1500 वर्षा मुनेटा इत ताम्र पट्टी मुनेटा ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा ते लिखा कित्ता मिंदे इदेन ते अद समय त शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति त नरगे जरूरी जानकारी दुर्किता संगतोरी मम भारत तोम खगोल विज्ञान तीन पोईस गट्टेकेन आलसी तोम माव देशेम तग नैनवेन नरगे वेडसा मुन्ने त दिनसी मिंदे दिशा आयीर पंचांग आयीर मनव पंडुम्क इव सोब्बे न संबंध मोयूल और ऊकासीन संगे मिंदे मन्नग खगोल विज्ञान ते कोंडे पीड़ितोरा नडुम आलसुड़ मिंदे नरगे लेयोडवेन इदेन नकाय मन कींतोर नेन्नाड मीडवेन उड़ायम तिड़की देश में तग खगोल क्लब नकाय जपेकेन पेदेरगढ़ समता बढ़िया शहर किन पोईस सुडला गुम्पी नगेवना स्कूल तिना पोईस पार्क नगेवना इव बूता तोपमता नाकिन बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ता जानकारी पता चले मत्ता इगा खगोलीय घटना की नत पुंदलाई कार्यक्रम आस मत्ता इत संस्था नाटेन क्षेत्र नगा खगोल विज्ञान किन पुंदिकियालय उन मिशन वन मोदूल कित्ता खगोल मंडल इदेन पेदेरत उन टीम 30 घंटा नद उन बढ़िया पूना लेकोटत कक्षा मोदूल कित्ता संगतोरी ई कारते ऊकास किन उड़ीत के नकै नर लगे माता एस्ट्रो केरला पेदेरतद ओन संस्था ई कारते उड़नद ओन कार्यक्रम चला कींता इग लेयोर टेलीस्कोप बना कियनद और उकासिन उड़नद सिके मातोर राजकोट तद बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब तोर गिरता गुप्पाती ना पैस कच्छ त रण त गय ना नरगे खगोल आयोजन की तोर ज्योतिर्विद्या परिसंस्था वेण खगोल विज्ञान तत् सोबेड पांतत संस्थान मिंदे हिग्गा सोब्य सुविधा त संगेन पुस्तकी लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी त सुविधा वेण मिंदे नन्ना आईसेक त माटाकिन वेण वेहतितान हिग ओण छात्र लोर चलाकियन राष्ट्रव्यापी नेटवर्क वेण मिंदे अद खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी किन तमाक जोड़ा किन संगतोरी अपना शोकिन बुतातलय समय टेंडनाद और अटकेन बाता चुडून पूर्ण सिकेम आयनाद नकह जरूरी मिंदे नन लेयोर किन संगी गुआर कियम तन की वोरु बेदेवेंट खगोल क्लब ते जरूर जुड़े माया वाले और यु छुट्टी नाद समय ते बेदेवेंट तारा मंडल तीन उड़लय पक्का अन्नूट संगतोरी मन की बात कार्यक्रम किन जोन लोर टीवी तक उड़म तोर और किन संगे नन के तम तान उन वीडियो जरूर उड़ाट इद वीडियो नीरे नकाय चर्चा ते मत्ता इदे नग चुडून तोर नकाय नल्ला नकाय जागरता ते उन गंगा डॉल्फिन की के किन बचा कियान कोशिश बुता कियम तोर मीकिन इद जाने मास मन नालसी तकी इद पूरा कोशिश बुता ते कम ते कम 13 घंटा लगे मत्ता और आखिर ते अद डॉल्फिन की के बचे मत संगतोरी इद बुताते सोबेड़ नेला काम की तोर भारत त पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस तद इद घटना उत्तर प्रदेश तद अगौन गंगा डॉल्फिन नहर तगा इरकी मत्ता अचूट नमामि गंगे अभियान तलय बने मत्ता एम्बुलेंस गाड़ी अदेन लय उम्मीद बने मास अदे नकाय नल बैदे तत्ता अदेन जांच कित्तोर तन पेर के अदेन इलोज कित्तोर और तन पेर के अदेन राप्ती कुयेड तगा ओसु विडस्तोर ओंड इसापते ओंड बतकाड तंब लोत्तगा मलसत्ता संगतोरी इद डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस गाड़ी नकाय खास मिंदे अदेन ओंड अस्पताल तले केन तियार कित्तद मिंदे अदेन अगा डॉल्फिन किन नला तासलाय जागा मिंदे ऑक्सीजन तत सुविधा मिंदे बचेम कियान सामान मिंदे इतके बेदेवन डॉल्फिन की के गायलत क्याचोन बेगा इरकीत क्याचोन अदेन तुरते मदद एवी किया पर दिता संगतोरी मम्मा गंगा डॉल्फिन बचा कित क्याचोन मम्मा सिरोप ओन विजतिन बचा की वोम मम्मा गंगा ता नर्गे जीवाल किन बचेम की तोम कुयेड ता पूरा जीवन तंत्र किन बचा की तोम आड़ मनवा वायान पीड़ित मैदे प्रकृति तत् ओन अमूल्य दरोहर किन बचेम की तोम नावा नलोर देशेम तोरी मीनाडुम तोर नरगे तोर कुयेर एरवी चुवत एरत जुड़े मत्ता माटा एजमिंदे बेने बेनोड किन एरवी नग नाड़तनत एजमिंदे बेन बेनो संग तोर संगे एरवी शाट करसनत अदेन तोड़दत गब्बन सुरताय मिंदे सुडला मंदान वेलत सुरता जीवन मेंटते एजमंत संगतोरी ईसोंतावे सुरता किन बचा कियलय ओन नकाय नरसिकियन वेसुड उत्तर प्रदेश त बस्ती जिला तगटिन केंजना आयमत बस्ती तोर आकाश गुप्ताल तंव नारत मनोरमा कुयेर किन उड्स नकाय दुका मायनोर भारत के बेद कुयेर तीन ओर सुडला वेरतिना साफ सुथरा उड़तोर सम्यता संगेन अत कुयेर तगा प्लास्टिक तोक जमा आयनद मदुलत नेकाय गंदा पेड़सनद मुदुलत्ता तिरुमाल आकाश आलस्तोर की शिकायत कीवोमा ओन पूनभूत मुदुल कीन तोमा शिकायत अयो शुरुआत मंत्र बने मत्ता और तम्व दोस्ती तोर संग पोईत्तोर सिरोप ओन वल्लाम मत्ता ओन मद्दाड़ मत्ता ओन कुच्चा मत्ता और सुबेर बिड़िया ताकोत मत्ता चुडून बदलेम कियान संकल्प मत्ता और ओन संग तोरा लेयोर कुयेर तग डिग्गी एर त पोदला किन टेंट तोर प्लास्टिक तोक तीन टेंट तोर नर्गे दाम ओन दीना ते 50-60 किलो तोक कुयर तीन टेंडनोर जम्मे जम्मे मनोरमा कुयर वेंडे साफ तोपन मोदुलत्ता एरे एरे तोर मानेड़ा दियान वेंड इत बुता तग अत्ता साफ सफाई तीन पोईस कोंडे तोर जागरता पेड़सता संगतोरी ईसोंता दे ओन बुता गोवा तीना वेंड केंजलाय दोरकमता गोवा तोर बालकृष्ण अय्याजी रिटायर अत्तोर गुर्जी मिंदेर मति समाज तमैदे काम कियले ओन वेड़का नेणवेन नकाय नल तोपित ओनकिन मड्डितोलो मड्डितोलाप एरिया ते एर तले नर्गे तिपाल मत्ता और अदे नल कियान लय काम बूता मोदुल कित्तोर बाल कृष्ण जी पाइप लाइन तारनत काम ते नकाय काम कित्तोर अदेन लय नर्गे लोना नगा एर एवत्ता जोन कुटमा तोर एर तमैदे नरगे तिपाल आयनोर और किन लय इंजे नेक्काय नेल्ला अत्ता संग तोरी अत्तद लेंजते नाकिन ओन नेक्काय नेल्लता जाने मायना दरकता अदेन संबंध मन की बात ते वन जुड़े मास मिंदे अदेन के नन्ना अदेन माटा किन मीकिन केतितान तमिलनाडु ता नागर कोयल तगा नन्ना और तोर गुर्जिन संग कलितान कम ते कम मून दशक त मुन्ने बढ़ ನನ್ನ ಓನ ಸಂಗೆ ಕಲಿ ಮತ್ತಾನ್ ನನ್ನ ವೆಹತಂ ತಾನ್ ಗಿರಿಜಾ ಅಮ್ಮಾಜಿನದ್ ಮಾಟ ಅದೇನ ಸಂಗೆ ಕಲಿತ್ತ ಸುಟೆ ಸುಡೂನ್ ಲೇಯೋರ್ ಪೊಡೆಮ್ ಆಯಾನ್ ಪೇಕೋರ್ವೆಂಡ್ ಅದೇನ ಸಂಗೆ ಮತ್ತೋರ್ ಸಂಕ್ತೋರಿ ಗಿರಿಜಾ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಕಮ್ತೆ ಕಮ್ ಪಂದ್ರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚಲಾಕೀತ ಅವೆನಗ ಚೆನ್ನೈತ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಗರೋಡಿಯಾ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಂದೆ ಅದನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಿತ ಆಲ್ಸೂಡ್ ಕೊಂಡೆ ಭಾರತ್ ತೋರ್ಕ್ ನೆರ್ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಲೆಕಟಾತ್ ಮಿಂದೆ ಅದ್ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ತೇ ಇದೇನ್ ನೆರ್ಸಿ ಮಂಜು ದೇಶೇಮ್ ತೋರ್ ನರ್ಗೆ ಸೈನಿಕ್ಲೋರ ಮೈದೆ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ತ ಅದೇನ್ ಲಯ್ ಅದ್ ತಂವ ಸೊಬ್ಬೆ ಇಸ್ಕೂಲ್ ನೋರ್ ಪೇಕೋರ್ ಪಿಕಿ ಕಿನ್ ವೆಂಡ್ ಕೆತ್ತ ಅದ್ ಪೇಕೋರ್ ಕಿನ್ ಕೆತ್ತ ಕಿ ವೀರ್ ಜವಾನ್ ಲೋರ್ ಕಿನ್ ಲಯ್ ದಿನಾಲ್ ಒನ್ ರೂಪ್ಯಾ ಇಸ್ ಸಂಗೀ ಮೂಟ್ ಇತ್ಕೆ ಒನ್ ವೆಡ್ಸಾತೆ ಛಾತ್ರ ಲೋರಾಕೆಟ್ ತಿನಾ 365 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಅತ್ತ ಈ ಸ್ವಂತ ಸುಡ್ಲ ಸುಡ್ಲ ಯೋಗದಾನ್ತೆ ಕಮ್ತೆ ಕಮ್ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಅತ್ತ ಗಿರಿಜಾ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಅದ್ ಕೊಂಡೆ ಪೈಸಾಕಿನ ಚೇಕ್ ನಾಕಿನ್ ಇತ್ತ ಅದೇನ ಸಂಗೆ ವೆಹತ್ತಾನ್ ಪಾಯ್ ನಾಕಿನ್ ಲಗೆ ಮತ್ತ ಕಿ ಮಾ ಭಾರತಿ ತಮೈದೆ ಅದೇನ ಆಲ್ಸೂಡ್ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ಬಿಡಿಯ ಮಿಂದೆ ನೀರೇ ಚೆನ್ನೈ ತತ್ ಪಹಲ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂವ 50 ವರ್ಷ ಪೂರ ಕಿತ್ತ ದೇಶೇಮ್ತ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೌರವ ಕಿನ್ ಮುನ್ನೆ ಪಡಿಸಿ ಕಿಯಲೇ ಇದ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನೆಕ್ಕಾಯ್ ನೆಲ್ಲ ಭೂತಾಕಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಇದೇನ್ ಸಂಗೆ ಜುಡೆ ಮತ್ತೋರ್ ಕೊಂಡೆ ಕಿನ್ ನರ್ಗೆ ನರ್ಗೆ ಬಧಾಯಿ ಅಂತಾನ್ ಆಡ್ ಓರ್ ಕೊಂಡೆ ಛಾತ್ರ ಲೋರ್ ಕಿನ್ ವೆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಾಯ್ ನೆಲ್ಲೆಂಜೋ ಕೆತ್ತಿತಾನ್ ಜೋನ್ ಲೋರ್ ತಂವ ವೀರ್ ಸೈನಿಕ್ ಲೋರ ಮೈದೆ ಸಂಗಿತ್ತೋರ್ ಸಂಗ್ತೋರಿ ಭಾರತ್ ಕೊಂಡೆ ನಾರ್ ನಗ್ಗ ಸೊಬ್ಬೆ ಸಹಾಡ್ ನಗ್ಗ ಬಾತಾಯ್ ವೆಂಡ್ ಬಾತ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಂತ ಅದ್ ಮಾಕಿನ್ ನೆರ್ಸಿ ಕಿಯಂತ ನರ್ಗೆದಾಮ್ ಈ ಸ್ವಂತ ಕೋಸಿಸ್ ಭೂತಾಕಿನದ್ ಮಾಟ ವೇಹೋರ್ ಮತಿ ಮಮ್ಮ ಓರ್ಕಿನ್ ಪುಂದಿತ್ಕೆ ಓರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವ್ರವೆಂಡ್ ಪೆಡ್ಸಿತ ಕಿ ದೇಶೇಮ್ ತೋರ ತಾಕೋತ್ತಮೈದೆ ದೇಶೇಮ್ ಮುನ್ನೆ ಪೆಡ್ಸಂತ ನಾಯದ್ ಮೀ ಸಂಗೆ ಗುಹಾರ್ ಮಿಂದೆ ಕಿ ಮೀವ ಏರೆ ಈ ಸ್ವಂತ ಕೋಸಿಸ್ ಭೂತಾಕಿನ್ ಜರೂರ್ ಊಡಾಟ್ ಜೋನ್ ಲೋರ್ ಸಮಾಜ್ ತಮೈದೆ ನೆಲ್ಲ ಭೂತಾಕಿ ಅಂತೋರ್ ಓರ್ಕಿನ್ ಸುರ್ತಾ ಕಿ ಮೂಟ್ ಓರ್ಕಿನ್ ನೆಲ್ಲ ಇಂಜೋ ಕೆಲ್ಲಾಟ್ ಓರ್ಕಿನ್ ಸಂಗೆ ಸಿಕೇಮ್ ಐ ಮೂಟ್ ಆಡ್ ಆಯಾ ಪರ್ತ್ ಕೆ ಅಚೋನ್ ಖುದ್ ವೆಂಡ್ ಬೆದಯ ನೆಲತಾದ್ ಭೂತಾತ್ ಸಂಗೆ ಜುಡೆ ಮೈಮುಟ್ ವಾಯಾನ್ ಲೇಂಜ್ತೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ತಗ್ಗ ಚುಡೂನ್ ಔರ್ ವೆಂಡ್ ಈಸೊಂತ ವೇಸುಡಿ ಸಂಗೆ ನನ್ನ ವೆಂಡೆ ಮೀ ಸಂಗೆ ಜುಡೆ ಮಾತಾನ್ ನರ್ಗೆ ನರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಜೋಹಾರ್
4: ಅಭಿ ಆಪ್ ಸುನ್ ರಹೆ ಥೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾ ಗೋಂಡಿ ಅನುವಾದ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾ ಯೇ जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
8: हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है।
9: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
10: और मैं तपस्या,
9: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
10: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
11: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रही।
9: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
12: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
13: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा।
12: छोड़ दो, देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। थाम पर बैठकर सवाल

0: छुट्टी नहीं दे सकती देवी, तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, अब मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
3: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
3: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
2: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्याल रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
3: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओ, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम चंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: सरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में सुनिए सुकलूराम पांडे और साथियों के गाए हल्बी जगार गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में अभी आप सुन रहे थे सुकलूराम पांडे और साथियों के गाए हल्बी जगार गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले. इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं.
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratanlal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party, NCP, 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi, MVA, had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। कल सुबह 5:51 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।